0: खुशी ते स्टेट लेवल वेरिफिकेशन ते एप्रुवल खलाइजाक नाय अक्टोबर तालनि साल नैथि नैसा नैथि दक इंग्रेजी बिसिनि बिसिंग कयमंगुलाय रनाय रक बरंनि एस टी सार्टिफिकेट फेमिली इनकाम सार्टिफिकेट रनानि नांनाय फेमिली इनकाम सार्टिफिकेट इस्यु खाइजाखांना नांनाय एस टी एम हायाखाबा डि सी एम हायाखाबा डि डब्लिउ ओ हायाखा एस डि डब्लिउ हायाखाबा डि सी नि तै दङ बरंनि मार्कशीट बरंनि लास्ट एकाडेमिक इयारनि सार्टिफिकेट आबनि स्केन खालायजा कपि रनानि नांनाय मार्कशीटनि तै रनानि नांनाय जे इन्स्टिट्युट बरित आ इन्स्टिट्युटनि कैसा एप्रुभल सार्टिफिकेट रनानि नांनाय तै हस्टेला रंनि बो सार्टिफिकेट रनानि नांनाय बरं इन्स्टिट्युटनि कयमंलाय रनानि मुचुंनाय र बरक अगस्त तालनि साल थामथिसानि बिसिंग बरक कयमंलाय रैमानु बिनि बागै पर्टल रोजाखा https://scholarship.gov.in वेबसाइट बरक हाबैनाय बरक नायमानु
1: लॉन्ग ट्राई विलियम चाहियो नेशा मुख भारत अभियान विकसित भारत की पहचान सिसारी मूंग कैम खलाइका मियानिसिमी चेंगेनाय अब हाथी बार्सा तंगनाय हकुतिसा गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम रंगनक मनुगत हायर सेकेंडरी रंगनक ते माधव चंद्रा हायर सेकेंडरी रंगनक ओकेम खलाइजाखा ते ओकेम कबांकुक रंगसरंगनाय रक सिख्ला सिख्लि रकनो फेक मूंग मानै नामानि हामियानो तैयै तै कक सा काहाम गोरों खालाय तङै थांनानै न तै वानसुगि संसार जाखा तै जुदा जुदा स्कुलनि प्रिन्सिपल्स फोरोंनाय रक तै लेखा खालायनाय रकबो अकेमो मानजाखा तै कक नारोखा
0: तै दङ आनि आगोबो तिकिसा दङ आबंखा त्रिपुरा ट्राइबेल एरिया अटोनमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल नि बखाक तै त्रिपुरा ट्राइबल फोक म्यूजिक कॉलेज खुमुलुंग नि बखाते असाक्लेम अब उनका डिप्लोमा कोर्स तलांग जाकनाय डिप्लोमा इन त्रिपुरा ट्राइबल फोक म्यूजिक बिशिक थामनि कोर्स स्ट्रीम तंग भोकल ते डांस ते खाम नि बेदेग तलांग जाकनाय रंगमारे सानजाखा माध्यमिक पास अंगनानि नांना हेगा बबाय बाक्सा ते अब गसिजा बोर्ड नि ओंनानै नांनाय कयमंबुलाय रोजाखनाय आबो साबमिशन खायनानै अजुन तालनि साल थामथिनि बिसिंग ते काउन्सिलिं ते सिलेक्शन टेस्ट ओंनाय जुलाइ तालनि साल नैयो ते सिलेक्शन माने यागुलो लिस्ट ओंखारजाखनाय जुलाइ दाननि साल थाम ते एडमिशन ओंनानि नांनाय जुलाइ दाननि साल ब्रैनिसिमि साल चारनि बिसिंग तेखेसा बेदगत लांजांनाय आबंखा डिग्री कर्स अभिषेक थामनि भोकल डान्स ते इन्स्ट्रुमेन्ट तलांजाखनाय आबनि बागै रोंमारि सानजाखा हायर सेकेन्डारि क्लास टुवेल्भ एबा डिप्ल'मा ओंनानि नांनाय मिउजिक न तैनाय साख्लायजाक बर्डनि बिसिं तै अबेदेगोबो अजुन तालनि साल थामथिनि बिसिंग एप्लिकेसन रोनानि नांनाय तै सालनैयाव जुलाइ तालनि सालनै हांखो बरंनि काउन्सिलिं ओंनाय तै बरंनि लिस्ट ओंखारजाखनाय जुलाइ तालनि साल थामो बरक बो एडमिशन ओंनानि नांनाय जुलाइ तालनि साल ब्रै ते साल चारनि बिसिंग बिनि बागै इमेल बर' जाखा TTFMCU HUM खुमुलुं TTFMC खुमुलुं 2010@gmail.com ओ वेबसाइट बरक थाङैनै ओ पोर्टालाव थाङैनै बरक बाय बरक मानजुइमान होनो साजाखा

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति की बैठक में लगभग 30,000 करोड़ रुपए की अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा की। टीबी उन्मूलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग और साइबर धोखाधड़ी रोकने के लिए मजबूत व्यवस्था पर जोर दिया। देश में आपातकाल के दौरान पीड़ित लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे से भारत चीन सीमा व्यापार 6 वर्ष बाद फिर शुरू होगा। 26 व्यापार पास जारी किए गए। अमरीकी संघीय न्यायाधीश ने डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन को मतदान के लिए नागरिकता प्रमाण अनिवार्य करने से रोका। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी अमरीका के साथ ईरान के प्रारंभिक शांति समझौते के तहत ईरान में निरीक्षण करेगी। और आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए मुकाबले में आशा मैनचेस्टर में भारत का सामना बांग्लादेश से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परियोजनाओं की समीक्षा के डिजिटल मंच प्रगति की 52वीं बैठक की कल नई दिल्ली में अध्यक्षता की। बैठक में सड़क, बिजली, औद्योगिक गलियारे और मेट्रो रेल क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए की 4 प्रमुख बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं की समीक्षा की गई। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री ने कहा है कि परियोजनाओं में देरी से लागत बढ़ती है और जनता को समय पर लाभ नहीं मिल पाता। उन्होंने मंत्रालयों और राज्य सरकारों को लंबित समस्याओं का शीघ्र समाधान करने तथा परियोजनाओं की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने तपेदिक उन्मूलन के लिए AI के उपयोग पर बल दिया तथा NCC कैडेटों और माय भारत स्वयंसेवकों को जन जागरूकता अभियान से जोड़ने का सुझाव दिया। श्री मोदी ने साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी से जुड़ी शिकायतों की भी समीक्षा की। उन्होंने साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम, शिकायतों के त्वरित निपटारे और एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर देते हुए राज्यों से E0 FIR व्यवस्था लागू करने की दिशा में कार्य करने का आह्वान किया। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नास।
0: आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की याद दिलाता है, जब देश में संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्य गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। ये दिन उस सभी लोगों को श्रद्धांजलि देने का अवसर भी है जिन्होंने आपातकाल के दौरान दमन, उत्पीड़न और कठिन परिस्थितियों का सामना किया। इस अवसर पर देशभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
2: आज ही के दिन वर्ष 1975 में तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आंतरिक अशांति से उत्पन्न खतरों का हवाला देते हुए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी। आपातकाल लागू होने के बाद कार्यपालिका को व्यापक अधिकार प्राप्त हो गए और राज्यों पर केंद्र का नियंत्रण अधिक मजबूत हो गया। अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों, जिनमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा करने और देश में स्वतंत्र रूप से आवागमन करने का अधिकार शामिल था, पर प्रतिबंध लगा दिया गया। नागरिकों को इन अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध न्यायालय की शरण लेने के अधिकार से भी वंचित कर दिया गया। समाचार पत्रों पर पूर्व सेंसरशिप लागू कर दी गई और प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए स्थापित वैधानिक संस्था प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को भी समाप्त कर दिया गया। आपातकाल लागू किए जाने के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में संस्कृति मंत्रालय आज नई दिल्ली में वर्ष भर चलने वाले कार्यक्रमों के समापन समारोह का आयोजन कर रहा है। इस अवसर पर संविधान हत्या दिवस तथा लॉन्ग लिव डेमोक्रेसी प्रदर्शनी के साथ साथ संविधान हत्या दिवस विषय पर आधारित लघु फिल्म का प्रदर्शन भी किया जाएगा। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पंजाब में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की शुरुआत आज से होगी। ये अभियान 24 जुलाई तक चलेगा। राज्य की मुख्य चुनाव अधिकारी अनन्ता मित्रा ने बताया कि अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 1 अक्टूबर को जारी की जाएगी। इधर दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए घर घर जाकर गणना 30 जून से शुरू होगी। इस संबंध में मुख्य चुनाव अधिकारी ने कल राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सहित विभिन्न दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। ग्रामीण विकास विभाग आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। कार्यक्रम में नीति निर्माता, विशेषज्ञ, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, स्टार्टअप्स और शिक्षाविद भाग लेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता के तारातला इलाके में निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने की घटना की जांच के लिए विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया है। इस मामले में भवन पर्यवेक्षक और दो श्रमिक आपूर्तिकर्ताओं सहित तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 5 हो गई है, जबकि 20 लोग घायल हुए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित लिपुलेख दर्रे से भारत चीन सीमा व्यापार 6 वर्ष बाद फिर शुरू होने जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि कल 26 भारतीय व्यापारियों का पहला दल तिब्बत क्षेत्र में प्रवेश करेगा।
3: धारचूला के उप जिलाधिकारी एवं व्यापार अधिकारी आशीष जोशी ने बताया कि पहले चरण में 26 व्यापार पास जारी किए गए हैं, जिनमें 17 व्यापारी और 9 सहायक शामिल हैं। व्यापार को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए गुंजी में सीमा शुल्क कार्यालय भी स्थापित किया गया है। व्यापारियों ने अपना सामान लिपुलेख दर्रे के निकट स्थित गोदाम तक पहुँचा दिया है। 103 से अधिक व्यापारियों ने व्यापार पास के लिए आवेदन किया। दूसरे चरण में 25 अन्य व्यापारियों को भी अनुमति दी जाएगी। सामान को लिपुलेख दर्रे तक पहुँचने के लिए नाभिडांग से निकट घोड़े खच्चरों की व्यवस्था भी गई है।
4: गुंजी में जितनी भी हमारी व्यवस्थाएं थी वो अभी सुचारू हैं। बुधवार तक वहाँ पे कस्टम्स का पूरा स्टाफ नियुक्त हो जाएगा और जो घोड़े खच्चरों को लेके पड़ाव था उसमें एक संयुक्त बैठक हुई ITBP, आर्मी, व्यापारी और प्रशासन की। उसमें भी एक आपसी सहमति से नाभिडांग के समीप भी एक पड़ाव चयनित किया गया है।
3: गौरतलब है कि भारत चीन सीमा व्यापार वर्ष 2019-20 में COVID-19 महामारी के कारण बंद हो गया था। अब इसके दोबारा शुरू होने से सीमांत क्षेत्र के व्यापारियों और स्थानीय लोगों में उत्साह है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर ब्रिटेन जा रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया है कि ये यात्रा 15 जुलाई को भारत ब्रिटेन के बीच होने वाले ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा सामाजिक सुरक्षा से जुड़े दोहरे अंशदान समझौते के लागू होने से पहले हो रही है। एक रिपोर्ट।
5: इस दौरान श्री गोयल ब्रिटेन के व्यापार और वाणिज्य मंत्री पीटर कायल के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इसमें व्यापार समझौते के कार्यान्वयन की तैयारियों पर चर्चा होगी। मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्ष दोहरे अंशदान समझौते को लागू करने की कार्य योजना की भी समीक्षा करेंगे, जिससे दोनों देशों के बीच पेशेवरों और व्यवसायों की आवाजाही में वृद्धि होने की उम्मीद है। श्री गोयल लंदन में आयोजित इंडिया ग्लोबल फोरम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे, जिसका विषय है पूंजी नवाचार और ब्रिटेन भारत मोमेंट। वे उद्योग जगत के नेताओं और निवेशकों के साथ सरकार से व्यापार संबंधी कई बैठकों में भाग लेंगे। समाचार कक्ष से अमीशा।
0: भारत आज से ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के अंतर्गत हरियाणा के गुरुग्राम में 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। ये बैठक कल तक चलेगी। बैठक में 3 प्रमुख प्राथमिकताओं पर चर्चा की जाएगी, जिनमें ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता, ऊर्जा का उपयोग और समानता तथा प्रौद्योगिकी और नवाचार शामिल हैं। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव संबंधी कार्यकारी आदेश के अधिकांश प्रावधानों पर स्थायी रोक लगा दी है। बोस्टन की अमेरिकी जिला न्यायालय की न्यायाधीश डेनिस कैस्पर ने कहा है कि अमेरिकी संविधान चुनावों के नियमन का अधिकार राज्यों और संसद को देता है तथा ट्रंप के प्रस्तावित प्रावधान शक्तियों के पृथककरण के सिद्धांत का उल्लंघन करते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश में मतदाता पंजीकरण के लिए नागरिकता का दस्तावेजी प्रमाण अनिवार्य करने, चुनाव के बाद प्राप्त डाक मतपत्रों की गिनती रोकने तथा नियमों का पालन न करने वाले राज्यों के लिए संघीय धनराशि रोकने जैसे प्रावधान शामिल थे। वेनेजुएला और जापान में आज सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। वेनेजुएला के याराकोए के युमारे शहर में 7.5 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया। अमरीकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार इससे ठीक 39 सेकंड पहले वेनेजुएला के सैन फेलिप में भी 7.2 तीव्रता का भूकंप आया। इस दौरान कई इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं जापान के उत्तरी भाग में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसकी तीव्रता 6.9 थी। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने कहा है कि वह अमरीका और ईरान के बीच हुए प्रारंभिक शांति समझौते के तहत ईरान में परमाणु निरीक्षण करेगी। एक रिपोर्ट।
6: IAEA के महानिदेशक राफेल ग्रोसी ने जापान में पत्रकारों को बताया कि निरीक्षण जल्द ही शुरू होंगे और इसकी तारीखों तथा प्रक्रियाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले सप्ताह हुए समझौते में ईरान के उच्च स्तर पर संवर्धित यूरेनियम को कम करने की प्रक्रिया IAEA की निगरानी में किए जाने का प्रावधान है। हालांकि ईरान के उप विदेश मंत्री ने कहा कि क्षतिग्रस्त परमाणु प्रतिष्ठानों और परमाणु सामग्री तक पहुंच का मुद्दा अमेरिका के साथ अंतिम समझौते के दायरे में ही तय किया जाएगा। इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की। इसके बाद वे समझौते पर चर्चा के लिए कुवैत और बहरीन की यात्रा पर रवाना हो गए। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: और अब खेल के मैदान की खबरों के साथ हैं सिद्धार्थ सिंह।
7: ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में ग्रुप ए के मुकाबले में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से मैनचेस्टर में खेला जाएगा। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली भारतीय टीम ग्रुप ए में 3 में से 2 मैच जीतकर दूसरे स्थान पर है, वहीं बांग्लादेश चौथे स्थान पर है। दूसरी ओर भारत ए और श्रीलंका ए के बीच 2 मैचों की मल्टी डे क्रिकेट श्रृंखला आज से शुरू हो रही है। मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 10 बजे से श्रीलंका के गाले अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। श्रृंखला के दोनों 4 दिवसीय मैच इसी मैदान पर खेले जाएंगे। भारत ए टीम की अगुवाई ध्रुव जुरेल करेंगे। अब बात फुटबॉल की, जहां फीफा विश्व कप में मोरक्को ने हैती को 4-2 से हराकर नॉकआउट में प्रवेश कर लिया है। मोरक्को के अशरफ हकीमी को 1 गोल और 1 असिस्ट के लिए मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। वहीं विनिसियस जूनियर के 2 गोलों की बदौलत ब्राजील ने स्कॉटलैंड को 3-0 से हराया। इस जीत के साथ ब्राजील ग्रुप सी में शीर्ष पर रहते हुए नॉकआउट दौर में पहुंच गया है। एक अन्य मुकाबले में बोस्निया हर्जेगोविना ने कतर को 3-1 से हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया, जबकि स्विट्जरलैंड ने कनाडा को 2-1 से मात देकर ग्रुप बी में शीर्ष स्थान हासिल किया। इसके साथ ही कनाडा भी पहली बार विश्व कप के नॉकआउट चरण में पहुंचने में सफल रहा है।
0: मौसम विभाग ने आज कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों, झारखंड, कोंकण और गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। बिहार, झारखंड, पश्चिम मध्य प्रदेश, पश्चिम राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में तेज आंधी और गरज के साथ बारिश हो सकती है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
8: धन्यवाद प्रियंका। भारत अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते से जुड़ी वार्ता को जनसत्ता सहित कई अखबारों ने प्रमुखता दी है। अमर उजाला ने लिखा है, टैरिफ की समय सीमा करीब पर अंतरिम समझौते पर असमंजस, अब रोकनी ही होगी जंग, शीर्षक से दैनिक भास्कर ने लिखा है, अमरीकी संसद में ईरान युद्ध रोकने के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विरुद्ध वोटिंग, 53 साल में पहली बार संसद में हारे राष्ट्रपति, देश बंधु की खबर है, कच्चे तेल की कीमत 4 महीने के निचले स्तर पर, अमरीका ईरान के बीच शांति वार्ता से आपूर्ति श्रृंखला में सुधार। दैनिक जागरण ने लिखा है, क्रूड के दाम में नरमी से सेंसेक्स 790 अंक चढ़ा, -269 डिग्री पर धड़का भारत का क्वांटम सपना। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, अमरावती वैली की उपलब्धि, अब देश में ही क्वांटम तकनीक की पड़ताल। पत्र ने बताया है कि उस भविष्य की तैयारी है जहां ताकत का पैमाना चिप्स, डेटा सेंटर या सुपर कंप्यूटर नहीं बल्कि क्वांटम कंप्यूटर हो गई। भगौड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को बैंक ऑफ इंडिया को $1,15,00,000 चुकाने के लंदन हाईकोर्ट के फैसले को दैनिक ट्रिब्यून सहित कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। अब झमाझम बारिश का दौर शीर्षक से दैनिक भास्कर ने लिखा है, मध्य प्रदेश पहुंचा मानसून, 3 दिन बाद रफ्तार पकड़ेगा, फिर 5 दिन पूरे देश में बरसेगा। अमर उजाला ने अपने संपादकीय में लिखा है, भारत के कुछ हिस्सों में हाल के दिनों में हुई बारिश ने भीषण गर्मी से फौरी तौर पर राहत बेशक दिलाई हो, लेकिन दुनिया भर में बढ़ता तापमान इशारा करता है कि जलवायु परिवर्तन अब सिर्फ एक देश या महाद्वीप की समस्या नहीं रह गया।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति की बैठक में लगभग 30,000 करोड़ रुपए की अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा की। टीबी उन्मूलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग और साइबर धोखाधड़ी रोकने के लिए मजबूत व्यवस्था पर जोर दिया। देश में आपातकाल के दौरान पीड़ित लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे से भारत चीन सीमा व्यापार 6 वर्ष बाद फिर शुरू होगा। वेनेजुएला में 7.5 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप, कई इमारतें क्षतिग्रस्त और आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए मुकाबले में आज भारत का सामना बांग्लादेश से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
9: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi reviews infrastructure projects worth around 30,000 crore rupees at Pragati.
10: অনুষ্ঠান শুনছেন 103.7 মেগাহার্জ ফ্রিকোয়েন্সি মডুলেশন প্রচার তরঙ্গে আকাশবাণী বিলোনিয়া। এখন শুনুন ছায়াগীতি অনুষ্ঠানে বাংলা ছায়াছবির গান।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परियोजनाओं की समीक्षा के डिजिटल मंच प्रगति की 52वीं बैठक की कल नई दिल्ली में अध्यक्षता की। बैठक में सड़क, बिजली, औद्योगिक गलियारे और मेट्रो रेल क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए की चार प्रमुख बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं की समीक्षा की गई। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री ने कहा है कि परियोजनाओं में देरी से लागत बढ़ती है और जनता को समय पर लाभ नहीं मिल पाता। उन्होंने मंत्रालयों और राज्य सरकारों को लंबित समस्याओं का शीघ्र समाधान करने तथा परियोजनाओं की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने तपेदिक उन्मूलन के लिए AI के उपयोग पर बल दिया तथा NCC कैडेटों और माय भारत स्वयंसेवकों को जन जागरूकता अभियान से जोड़ने का सुझाव दिया। श्री मोदी ने साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी से जुड़ी शिकायतों की भी समीक्षा की। उन्होंने साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम, शिकायतों के त्वरित निपटारे और एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर देते हुए राज्यों से E0 FIR व्यवस्था लागू करने की दिशा में कार्य करने का आह्वान किया। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की याद दिलाता है, जब देश में संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्य गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। एक रिपोर्ट।
2: आज ही के दिन वर्ष 1975 में तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आंतरिक अशांति से उत्पन्न खतरों का हवाला देते हुए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी। अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों, जिनमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा करने और देश में स्वतंत्र रूप से आवागमन करने का अधिकार शामिल था, पर प्रतिबंध लगा दिया गया। नागरिकों को इन अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध न्यायालय की शरण लेने के अधिकार से भी वंचित कर दिया गया। समाचार पत्रों पर पूर्व सेंसरशिप लागू कर दी गई और प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए स्थापित वैधानिक संस्था प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को भी समाप्त कर दिया गया। आपातकाल लागू किए जाने के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में संस्कृति मंत्रालय आज नई दिल्ली में वर्ष भर चलने वाले कार्यक्रमों के समापन समारोह का आयोजन कर रहा है। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पंजाब में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान आज से शुरू हो रहा है। ये 24 जुलाई तक चलेगा। राज्य की मुख्य चुनाव अधिकारी अनंदिता मित्रा ने बताया कि अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 1 अक्टूबर को जारी की जाएगी। इधर दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए घर घर जाकर गणना 30 जून से शुरू होगी। इस संबंध में मुख्य चुनाव अधिकारी ने कल राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सहित विभिन्न दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर ब्रिटेन जा रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया है कि ये यात्रा 15 जुलाई को भारत ब्रिटेन के बीच होने वाले ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा सामाजिक सुरक्षा से जुड़े दोहरे अंशदान समझौते के लागू होने से पहले हो रही है। भारत आज से ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के अंतर्गत हरियाणा के गुरुग्राम में 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। ये बैठक कल तक चलेगी। बैठक में 3 प्रमुख प्राथमिकताओं पर चर्चा की जाएगी, जिनमें ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता, ऊर्जा का उपयोग और समानता तथा प्रौद्योगिकी और नवाचार शामिल हैं। वेनेजुएला में आज 7.2 और 7.5 तीव्रता के लगातार 2 शक्तिशाली भूकंप आने के बाद देश में आपातकाल घोषित कर दिया गया है। भूकंप के कारण राजधानी काराकास और आसपास के क्षेत्रों में कई इमारतें ढह गई हैं और बड़े स्तर पर जान माल का नुकसान हुआ है। राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिक्स ने विद्यार्थियों की कक्षाएं और गैर जरूरी गतिविधियां अगले आदेश तक स्थगित करने की घोषणा की है। प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को भी सक्रिय दिया गया है। ICC महिला T20 विश्व कप के ग्रुप ए मुकाबले में भारत आज मैनचेस्टर में बांग्लादेश के साथ खेलेगा। मैच एमिरेट्स ओल्ड ट्रेफर्ड स्टेडियम में भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे शुरू होगा। फीफा विश्व कप फुटबॉल में मोरक्को ने हैती को 4-2 से हराकर नॉकआउट चरण में प्रवेश कर लिया है। वहीं वेनेसिस जूनियर के 2 गोलों की बदौलत ब्राजील ने स्कॉटलैंड को 3-0 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

पता नहीं क्यों, अनजान जानते हुए भी मैं हर बार आकाश से मिलने पहुंच जाती हूँ, शायद दिल के हाथों मजबूर होके। एक महीने पहले इसी रेस्टोरेंट में मेरी आकाश से मुलाकात हुई थी। यकीन नहीं होता इतने से वक्त में वो मेरे इतने करीब आ गया है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परियोजनाओं की समीक्षा के लिए डिजिटल मंच प्रगति की 52वीं बैठक की कल नई दिल्ली में अध्यक्षता की। बैठक में सड़क, बिजली, औद्योगिक गलियारे और मेट्रो रेल क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए की 4 प्रमुख बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं की समीक्षा की गई। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री ने कहा है कि परियोजनाओं में देरी से लागत बढ़ती है और जनता को समय पर लाभ नहीं मिल पाता। उन्होंने मंत्रालयों और राज्य सरकारों को लंबित समस्याओं का शीघ्र समाधान करने तथा परियोजनाओं की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने तपेदिक उन्मूलन के लिए AI के उपयोग पर बल दिया तथा NCC कैडेटों और माई भारत स्वयंसेवकों को जन जागरूकता अभियान से जोड़ने का सुझाव दिया। श्री मोदी ने साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी से जुड़ी शिकायतों की भी समीक्षा की। उन्होंने साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम, शिकायतों के त्वरित निपटारे और एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर देते हुए राज्यों से E0 FIR व्यवस्था लागू करने की दिशा में कार्य करने का आह्वान किया। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: आज संविधान हत्या दिवस है। ये दिवस 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की याद दिलाता है, जब देश में संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्य गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। देश भर में आज इससे जुड़े कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पंजाब में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की शुरुआत आज से होगी। यह अभियान 24 जुलाई तक चलेगा। राज्य की मुख्य चुनाव अधिकारी अनिंदिता मित्रा ने बताया कि अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 1 अक्टूबर को जारी की जाएगी। इधर दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए घर घर जाकर गणना 30 जून से शुरू होगी। इस संबंध में मुख्य चुनाव अधिकारी ने कल राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सहित विभिन्न दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर ब्रिटेन जा रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि ये यात्रा 15 जुलाई को भारत ब्रिटेन के बीच होने वाले ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा सामाजिक सुरक्षा से जुड़े दोहरे अंशदान समझौते के लागू होने से पहले हो रही है। भारत आज से ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के अंतर्गत हरियाणा के गुरुग्राम में 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। ये बैठक कल तक चलेगी। बैठक में 3 प्रमुख प्राथमिकताओं पर चर्चा की जाएगी, जिनमें ऊर्जा सुरक्षा, स्थिरता और ऊर्जा का उपयोग तथा समानता और प्रौद्योगिकी और नवाचार शामिल हैं। वेनेजुएला में आज 7.2 और 7.5 तीव्रता के लगातार 2 शक्तिशाली भूकंप आने के बाद देश में आपातकाल घोषित कर दिया गया है। भूकंप के कारण राजधानी कराकास और आसपास के क्षेत्रों में कई इमारतें ढह गई हैं और बड़े स्तर पर जानमाल का नुकसान हुआ है। राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने विद्यार्थियों की कक्षाएं और गैर जरूरी गतिविधियां अगले आदेश तक स्थगित करने की घोषणा की है। प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को भी सक्रिय कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने वेनेजुएला सरकार और वहां के लोगों, विशेषकर अपनों को खोने वाले परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की। उन्होंने कहा कि भारत सभी प्रभावित लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है और हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। खेलों में ICC महिला T20 विश्व कप के ग्रुप ए के मुकाबले में भारत आज मैनचेस्टर में बांग्लादेश के साथ खेलेगा। मैच एमिरेट्स ओल्ड ट्रैफर्ड स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से खेला जाएगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने आज सुबह मॉन्टेरी में दक्षिण कोरिया पर 1-0 से जीत हासिल करके पहली बार प्रतियोगिता के नॉकआउट चरण में प्रवेश कर लिया है। ग्रुप ए के इस मैच में थापेलो मासेको ने दक्षिण अफ्रीका के लिए एकमात्र गोल किया। इससे पहले आज सुबह मेक्सिको ने चेक गणराज्य को 3-0 से हराकर अपने विश्व कप समूह चरण के 3 मैच जीते। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: অনুষ্ঠান শুনছেন 103.7 মেগাহার্জে ফ্রিকোয়েন্সি মডিউলেশন প্রচার তরঙ্গে। স্টুডিওর ঘুরিতে এখন সময় সকাল 10:05 হয়ে 28 সেকেন্ড। এখন শুনুন দেশবন্ধন অনুষ্ঠানে দেশাত্মবোধক গান বিভিন্ন শিল্পী কণ্ঠে।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। आज संविधान हत्या दिवस है। यह दिवस 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की याद दिलाता है, जब देश में संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्य गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। देशभर में आज इससे जुड़े कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा

0: के लिए दृढ़ संकल्पित रहे लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आपातकाल संविधान पर सीधा हमला था। उन्होंने कहा कि इस दौरान नागरिक स्वतंत्रता निलंबित की गई, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया गया और राजनीतिक नेताओं, पत्रकारों तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दौरान लोकतांत्रिक संस्थाएं भी निशाने पर रहीं। गृहमंत्री अमित शाह ने भी आपातकाल के खिलाफ संघर्ष करने वाले लोकतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में गृहमंत्री ने कहा कि 25 जून 1975 भारतीय लोकतंत्र का एक काला अध्याय था, जब तत्कालीन सरकार ने संविधान, प्रेस की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आजादी को कमजोर करने का प्रयास किया था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आपातकाल भारत के इतिहास का एक कठिन दौर था, जब संविधान के मूल्यों की कड़ी परीक्षा हुई थी। उन्होंने कहा कि उस समय नागरिकों के कई अधिकार सीमित कर दिए गए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लगाई गई और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर भी असर पड़ा। भारत आज से हरियाणा के गुरुग्राम में 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। 2 दिन की बैठक में ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता, ऊर्जा का उपयोग और समानता तथा प्रौद्योगिकी और नवाचार विषयों पर चर्चा की जाएगी। पंजाब में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की शुरुआत आज से होगी। ये अभियान 24 जुलाई तक चलेगा। राज्य की मुख्य चुनाव अधिकारी अनिंदिता मित्रा ने बताया कि अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 1 अक्टूबर को जारी की जाएगी। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए घर घर जाकर गणना 30 जून से शुरू होगी। इस संबंध में मुख्य चुनाव अधिकारी ने कल राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से पहली इजी कनेक्ट उड़ान का उद्घाटन किया। दिल्ली के रास्ते वाराणसी को दुनिया से जोड़ने वाली ये पहली हब एंड स्पोक उड़ान भारत को दुनिया से निर्बाध रूप से जोड़ने के उद्देश्य से शुरू की गई है। ये एयर इंडिया द्वारा संचालित पहली इजी कनेक्ट सेवा है। ये सेवा आज वाराणसी से रवाना होगी। इजी कनेक्ट मॉडल के तहत यात्री अपने अंतिम अंतर्राष्ट्रीय गंतव्य के लिए चेक इन अपने शुरुआती हवाई अड्डे पर ही पूरा कर सकते हैं। आव्रजन संबंधी औपचारिकताएं भी प्रस्थान बिंदु पर ही पूरी कर ली जाएंगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 3 दिन की ब्रिटेन यात्रा पर जाएंगे। इस दौरान वे भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा उससे संबद्ध दोहरे अंशदान समझौते के कार्यान्वयन की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। ये समझौते अगले महीने की 15 तारीख से लागू होने वाले हैं। यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को नई गति मिलने की उम्मीद है। वेनेजुएला की राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भूकंप के कारण देश में आपातकाल की घोषणा की है। आज सुबह काराकस और आसपास के इलाकों में आए लगातार 7.2 और 7.5 तीव्रता के भूकंप के कारण कई इमारतें ढह गईं। राष्ट्रपति ने कक्षाएं और गैर आवश्यक गतिविधियों को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है। उन्होंने सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य नेटवर्क को भी सक्रिय कर दिया है। इस बीच कई जगहों पर बचाव अभियान जारी है। राष्ट्रपति ने कहा कि शक्तिशाली भूकंपों में 32 लोगों की मौत हो गई है और 700 से अधिक लोग घायल हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने वेनेजुएला सरकार और वहां के लोगों, विशेषकर अपनों को खोने वाले परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज शुरुआती कारोबार में वृद्धि के साथ खुले। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स लगभग 400 अंक की उछाल से 77,391 पर, जबकि निफ्टी 100 अंक से अधिक की वृद्धि के साथ 24,125 के आसपास कारोबार कर रहा था। फीफा फुटबॉल विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने आज सुबह मॉन्टेरी में दक्षिण कोरिया पर 1-0 से जीत हासिल कर पहली बार विश्व कप के नॉकआउट चरण में प्रवेश कर लिया। इससे पहले आज मेक्सिको ने चेक गणराज्य को 3-0 से हराकर अपने ग्रुप के सभी तीनों मैच जीत लिए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: जिनी बलों हालों माइक रंजा रजाब मूंग ओ पांडा कैसा विशेंगे जिन खाना सेब मानो अब बागे जो दाखुते बहु संग नरकन सेलरिया कारी तई खालगी ओ पांडा नो खाना दिखने आं खाख नरकन कय जतनों तो पाइलेया जानी जा सामूंग জানি জাকলাই থাইও জং পাইলে আংনি টংনানি অবুন জতনি সেই নাংমানি তামহকে এরং ইরং টংমানি বিশিংতে চিনি যে বিশিং রং মানি টংমানি আমরক বক কমাউই থাং আবনি বাগিন জং চিনি রংমানি ন চিনি সিমানি ন জং খলাইমান মানি ন জং পাইলে আখলাই আবুন জং খলাই টংকা হংকাই চিনি লংমাও সেলের মুং ফাইগলাক চিনি লংমাও কেচেন মুং ফাইগলাক জং কপলাইং ইমান নাই জেসা সামুং ফানো

hơi gió ngày tê hơi hơi hơi hơi ơi gió

定。内波音，嘿呀，嘿，嘿，嘿。

खोनाथ थक रेसाब मूंग जंखनाखा शांति चेरान नि खरांगो गारु बसंग नि रेसाब मूंग और रेसाब मूंग यागलो ताबु खाइन हाइ चिंते तंग से रेसाब मूंग खनालायानो अबो खाइ कायपिंग बसंग नि मयाल शांति कायपिंग नि खरांगो

นังก็ให้กับป่า

là ca rồi ngân.

ให้จะปาเย่ตระบาไปรันเด้อ

Vai aí, não mata aí. Vou voltar. Então, alá, copa aí.

aduh.

một trăm kia đưa ta hiền

thế thì bắt thế tới đây mong có phải chẳng thế ra ta hay

사랑 하라 또한 와토데

0: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो?
1: Yes,
0: इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स हैं। आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
2: मैम, मेरे वाले में तो HIV से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं
3: और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।
4: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है
5: और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से HIV हो सकता है।
6: मल्टीपल पार्टनर्स मतलब HIV का ज्यादा रिस्क।
0: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं। तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ, ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
7: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री AIDS हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

kapu pigdeu.

Hosanna, Omar, Omar.

हेलो हेलो आं गाबोन खरां खोनाया आं दंखा हेलो खोनाया थेवैसो नों साखथारनाय गोदै दाखुक दांखा बुखुक दांखा सायमालि आं किसे फालो खरां खोनाया नाखारदि तेसा साक्षात दे तेसा करंगन बागे

बोला हाय फनो आलमनो खाविशी हमरा भी चंगो छाना बमु चंगो साखे बा तुमा बहनो नंग तो ते कशा बुरिनो से हमरा के तुम आनी वांछुक मानो

0: आज संविधान हत्या दिवस है। इस अवसर पर देशभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ये दिवस 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की याद दिलाता है, जब देश में संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्य गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने आज संविधान हत्या दिवस पर आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित रहे लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आपातकाल भारत के इतिहास का एक कठिन दौर था, जब संविधान के मूल्यों की कड़ी परीक्षा हुई थी। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आपातकाल संविधान पर सीधा हमला था। श्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा रचित एक कविता की पंक्तियां पढ़ी। प्रधानमंत्री ने कविता साझा करते हुए लोगों से भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की संवेदनाओं से जन्मी इन पंक्तियों को सुनने का आग्रह किया, जो आज भी आपातकाल के उस काले अध्याय को बयां करती हैं।
1: जब आपातकाल को एक वर्ष हो गया तो अटल जी ने एक कविता लिखी और उन्होंने उस समय की मनस्थिति का वर्णन अपनी कविता में किया है। झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, सिसकी भरते सावन का अंतर्गत रीत गया, एक बरस बीत गया।
2: सीख चौ में सिमटा जग किंतु विकल प्राण विहग, धरती से अंबर तक गुजा मुक्ति गीत गया, एक बरस गया, एक बरस।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि 25 जून 1975 भारतीय लोकतंत्र का एक काला अध्याय था, जब तत्कालीन सरकार ने संविधान, प्रेस की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आजादी को कमजोर करने का प्रयास किया था। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया में हथियारों के बढ़ते उपयोग, जोखिम लेने की प्रवृत्ति में वृद्धि और सोशल मीडिया से प्रभावित राजनीति देखने को मिल रही है। दक्षिण कोरिया में शांति और समृद्धि पर जेजू द्वीप में आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉ जयशंकर ने ये बात कही। डॉ जयशंकर ने अधिक सहयोगात्मक विश्व व्यवस्था के निर्माण के लिए भारत के वसुधैव कुटुंबकम के मार्गदर्शक सिद्धांत का उल्लेख करते हुए वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए और अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया।
3: The global south should be enabled.
4: वैश्विक दक्षिण को अधिक क्षमता और अधिक अवसर दिए जाने चाहिए। इससे वैश्विक विकास के नए अवसर पैदा होंगे और साझा प्रयासों से पूरी दुनिया को लाभ मिलेगा। हम केवल कुछ देशों पर नियमों और मानकों को बनाए रखने के लिए निर्भर नहीं रह सकते। दुनिया को अपने भविष्य पर अधिक नियंत्रण रखना होगा।

0: ओवर इट्स ओन फ्यूचर।
1: ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि भारत ऊर्जा प्रणालियों के निर्माण की दिशा में ब्रिक्स सहयोग को मजबूत करना चाहता है। आज गुरुग्राम में ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की 11वीं बैठक का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि विकास की आकांक्षाओं और सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किफायती, विश्वसनीय और टिकाऊ ऊर्जा अपरिहार्य है। कोलकाता के तारातला इलाके में हुए हादसे में मृतकों की संख्या 9 हो गई है। 29 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिनमें से 20 लोगों का इलाज अभी भी चल रहा है। विधानसभा में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख रुपए अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल SIT का गठन किया गया है। इस मामले में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना के मृतकों के परिजनों के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। वेनेजुएला की राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भूकंप के कारण देश में आपातकाल की घोषणा की है। आज सुबह काराकस और आसपास के इलाकों में आए लगातार 7.2 और 7.5 तीव्रता के भूकंप के कारण कई इमारतें ढह गईं। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। ICC महिला T20 विश्व कप में ग्रुप ए के मुकाबले में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। मैच भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से खेला जाएगा। फीफा विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने आज सुबह मॉन्टेरी में दक्षिण कोरिया पर 1-0 से जीत हासिल करके पहली बार नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। इससे पहले मैक्सिको सिटी में आज सुबह हुए मुकाबले में मैक्सिको ने चेक गणराज्य को 3-0 से हराकर विश्व ग्रुप चरण में अपने तीनों मैच में पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: जरूरी कर दिया है और जगह जगह पर उनकी टीम काम करती है, नदियों में जाती रहती है कि कहीं ऐसी दुर्घटना हो तो उन्हें बचाया जा सके।
1: तो इससे जुड़े कोई अगर अनुभव है हमारे सुनने वालों के तो वो हमें लिखकर अवश्य भेजें। इसके अलावा आज जिन विषयों पर बातचीत हम करने वाले हैं, हम बता दें कि अगर आपने घर में कुछ पौधे लगाने के आप शौकीन हैं या आप कोई खेती भी करते हैं, तो कीट जो लग जाते हैं, जो कुछ कीड़े हैं ना जो लग जाते हैं, जो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, आपके घरेलू पौधों को भी नुकसान पहुंचाते हैं, तो आज तो हम सिर्फ घरेलू पौधों के बारे में बात करने वाले हैं। आपने घर में अपने गार्डन छोटा सा बगीचा बनाया, छत पर एक बगिया बनाई है, तो उनको बचाने के लिए क्या घरेलू उपाय कर सकते हैं, इसके बारे में हमारे सुनने वाले जरूर हमसे साझा करें। और शादी ब्याह एक ऐसा बहाना होता है जब बहुत सारे सगे संबंधियों से मुलाकात हो जाती है हमारी। कई बार तो हमें शादी में जाते ही इसलिए हैं कि अरे वो मौसी आएंगी, वो मामा आएंगे, वो ताऊ आएंगे, या उनके बच्चों से मुलाकात नहीं हुई होती है तो उनसे मिलना जुलना भी हो
0: और
1: जाएगा।
0: बहुत सारे दोस्त मित्र मिलेंगे तो चलते हैं, और वो जो इकट्ठे टीम बना के दल
1: जी
0: बना के जाना वो एक अलग अनुभव होता है, क्योंकि अमूमन अकेले अकेले ही जाना होता है। लेकिन शादी ब्याह में कई टीम बन जाती है भाई, दफ्तरों से भी जब लोग किसी की
1: जी
0: शादी में जाते हैं तो कहाँ मिले, फला जगह पे मिलते हैं और सब झुंड बना के जाते हैं, तो उसका एक अलग अनुभव होता है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे श्रोताओं के इस मामले में क्या अनुभव है कि वो जब शादी ब्याह में जाते हैं तो उन्हें किस तरह की फीलिंग होती है, कौन सा एहसास होता है, उन एहसासात को यहाँ पर साझा करें विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर।
1: और आज होगी कहानी पद्मश्री की। इसके अंतर्गत जिनका परिचय हम करा रहे हैं ये हैं रमीला बेन राय सिंह भाई। तो बातें विस्तार से होंगी लेकिन ममता जी एक गीत पहले सुन लेते हैं।
0: सुनते हैं ये गाना।

0: ममता जी, आज हम जिनकी कहानी की बात कर रहे हैं पद्मश्री के अंतर्गत, ये हैं रमीला बेन राय सिंह भाई, जिनको साल 2022 में भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से नवाजा जा चुका है और शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और स्वच्छता के क्षेत्र में लगातार बिना स्वार्थ के ये अपनी सेवाएं देती आ रही हैं।
1: और बता दें कि सामाजिक कार्यों में उन्होंने उल्लेखनीय योगदान दिया और पहली जून 1969 को गुजरात में उनका जन्म हुआ था। उनकी शिक्षा 10वीं कक्षा के आगे तो नहीं हो पाई और उनका जहां जन्म हुआ था समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए तो लोग जाने जाते हैं वहां के, लेकिन संसाधनों तक उसकी पहुंच सीमित है, इसलिए उनकी औपचारिक शिक्षा जल्दी ही समाप्त हो गई। ऐसा समुदाय जहां लड़कियों के लिए शिक्षा अक्सर घरेलू जिम्मेदारियों और कृषि कार्यों के आगे उपेक्षित थी।
0: बिल्कुल, और रमीला बेन ज्ञान की प्यास उनमें थी और कुछ कर दिखाने का जुनून ये भी उनका कम नहीं हुआ। मतलब जिस जहां वो जन्मी पली बड़ी, माहौल चाहे जैसा भी था, लेकिन उनके जुनून को वो रोक नहीं पाया और इसी बात ने उनके जीवन को उद्देश्य दिया और दिशा भी थी। भले ही वो उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाई थी, लेकिन उनके जीवन के जो अनुभव थे उन्होंने उन्हें एक सर्वश्रेष्ठ शिक्षक बनाया, एक दयालु और दृढ़ निश्चय और परिवर्तन लाने वाली महिला के रूप में उन्हें ढाल दिया। रमीला बेन के जीवन जो था वो बहुत सारी बाधाओं से भरा हुआ था। उनके गाँव में उचित शौचालयों का अभाव था, खुले में शौच करने जाना दैनिक जीवन की एक वास्तविकता थी और खासतौर पर अगर महिलाओं की बात करें तो बच्चों के लिए भी बात करें, जो छोटी बच्चियां थीं उनके लिए गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा हो सकते थे इस चीज से। महिलाओं को शौच के लिए रात होने का इंतजार करना पड़ता था और इससे उनकी सुरक्षा और गरिमा ये भी खतरे में पड़ जाती थी।
1: और इसके अलावा भी बहुत सारी समस्याएं थी ग्रामीणों को, जो सदियों पुरानी प्रथाओं को छोड़ने के लिए मनाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो प्रथाओं में इतने जकड़े होते हैं कि उसे निकालना मुश्किल काम होता है। सबके विरोध का सामना करते हुए उन्हें एक एक परिवार का विश्वास भी जीतना था। उस पर उनकी आर्थिक तंगी ने उनकी चुनौतियों को और बढ़ा दिया, जिससे सामग्री जुटाना और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना उनके लिए बहुत मुश्किल

0: रहा था जो कि वो कर रही थी।
1: और वो अपने इस काम के लिए सरकारी सहायता भी चाहती थी, लेकिन यहाँ भी बहुत सारी बाधाएं आ रही थी, क्योंकि कुछ लोग कई बार ऐसे होते हैं ना जो नहीं चाहते हैं कि ये महिला काम करे। और ये सारी जटिलताएं, इनसे निपटने के लिए बहुत सारा धैर्य और दृढ़ता की जरूरत उन्हें थी। कितनी भी उनकी यात्रा जो चल रही थी उसमें बाधाएं आती गई, लेकिन वो अडिग रही और अपने अटूट हौसले के साथ में आगे बढ़ती रही।
0: और रमीला बेन के गांव में परिवर्तन लाने के लक्ष्य की शुरुआत हो चुकी थी। अपने गांव के लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए उन्होंने सबसे पहले स्वच्छता की समस्या को सुलझाने का प्रयास शुरू किया। अपनी कोशिशों से उन्होंने लोगों को एकजुट किया और 700 से ज्यादा स्वच्छता इकाइयां बनवाई, जिससे कुछ गाँव खुले में शौच मुक्त हो गए।
1: लेकिन उन्हें बुनियादी ढांचा तैयार करने के साथ साथ लोगों में जागरूकता भी बढ़ाने दी। जैसा आपने कहा ना कि भाई अपनी पुरानी जो प्रथाएं या रूढ़ियां हैं, लोग उनको छोड़ने को तैयार नहीं होते, तो उन्हें खुले में शौच के संबंध में जो जोखिम होते हैं उन पर प्रकाश डालने के लिए बहुत सारे शैक्षिक अभियान उन्होंने चलाए, जिनमें बहुत सरल और प्रभावशाली संदेश होते थे, जिनके जरिए वो ग्रामीणों को समझाती थी तो बात उनके समझ में भी आ जाती थी।
0: और यही नहीं, उन्होंने सामुदायिक बैठकें आयोजित की, स्थानीय नेताओं से संपर्क किया और घर घर जाकर लोगों से निजी तौर पर बातचीत की इस संदर्भ में। और उनका काम केवल स्वच्छता तक ही सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण में आर्थिक स्वतंत्रता की शक्ति को पहचानते हुए बहुत से स्वयं सहायता समूह स्थापित किए, जिनमें महिलाओं को एक साथ लाकर सामूहिक रूप से बचत करने और छोटे छोटे ऋण लेने और छोटे व्यवसाय शुरू करने में सहायता दी। और ये सहायता समूह ग्रामीण आबादी और सरकारी योजनाओं को सीधे पहुंचाने का माध्यम भी बने।
1: इन सहायता समूहों ने महिलाओं को सिलाई और हस्तशिल्प से लेकर लघु कृषि तक सूक्ष्म उद्योग चलाने के ज्ञान भी दिया। और रमीला बेन ने विधवा कल्याण के लिए भी बहुत सारा काम किया, जिससे महिलाओं को सहायता मिली और वित्तीय सहायता भी मिलती रही। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाकर उन्होंने घरेलू आय में सुधार किया और महिलाओं में आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता को भाव, जो ये भाव था उसको बढ़ावा दिया।
0: रमीला बेन के प्रयास से गांव में जो स्वच्छता की कमी थी, स्वच्छता की ओर लोग जागरूक हुए और जिससे स्वास्थ्य समस्याएं जो बहुत ज्यादा थी कम हुई, और जो धन का अभाव था वो भी बढ़ा, क्योंकि निजी रूप से उन्होंने आर्थिक संपन्नता की ओर उन्मुख किया लोगों को, ग्रामीण लोगों को। और उनके अथक प्रयास के से आसपास के गांव भी जैसे खुले शौच में जाने की जो प्रथा थी उससे मुक्त हुए, और जो बीमारियां थी निश्चित रूप से उससे कमतर हुई बीमारियां, और महिलाओं को सम्मान और निजता का अधिकार भी वापस मिला, क्योंकि अब उन्हें अंधेरे में खेतों में जाने की जरूरत नहीं थी।
1: और पहले घरेलू भूमिकाओं तक सीमित रहने वाली जो महिलाएं थी, अब वो खुद को स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से उद्यमी और वित्तीय निर्णय लेने वाली वो बन रही थी। सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ रही थी, परिवारों तक उनके लाभ भी पहुंचने लगे थे। ये वो लाभ थे जो पहले इनके बारे में जानकारी भी नहीं थी उन लोगों को। और इन गांवों में नए सिरे से सम्मान और आशा की भावना जागृत हुई। इन गांवों के बच्चे, खासतौर पर लड़कियां, अब बिना डर के अपनी शिक्षा पर भी ध्यान केंद्रित कर पा रही थी।
0: बिल्कुल सही बात है। रमीला बेन गुजरात में एक समाज सेविका के रूप में उभरी और उनका कहना था कि मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है, और उनकी सेवा भाव और मेहनत को देखते हुए उन्हें बहुत सारे पुरस्कार भी मिले। 2002 में पद्मश्री के अलावा उन्हें स्वच्छ भारत अभियान में उत्कृष्ट योगदान के लिए,
1: ममता जी मैं यहाँ करेक्शन करना चाहूंगी, 2022 में उन्हें मिला।
0: 2022, बिल्कुल सही कहा आपने। और 2017 में भी उन्हें पुरस्कृत किया गया स्वच्छ शक्ति पुरस्कार से, और महिला सशक्तिकरण में उनके योगदान को देखते हुए उन्हें नारी तू नारायणी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया, और उनका नाम दृढ़ता और बदलाव का पर्याय बन गया।
1: और उनकी ये जो कहानी थी, जो कार्य उन्होंने किए, वो बहुत सारी महिलाओं को के लिए

0: चंचल जी, देखिए शादी ब्याह केवल दो लोगों का मिलना नहीं होता, मिलन नहीं होता, बल्कि बिछड़े हुए रिश्तों और परिवारों को फिर से जोड़ने का सुंदर अवसर भी होता है। कहा जाता है कि समाज के दो परिवार का मिलन होता है। घर में जब शादी का माहौल होता है तो चारों तरफ रोशनी, संगीत और खुशियों की गूंज छाई रहती है। ऐसे में जब रिश्तेदारों का आगमन होता है, जब झुंड के झुंड रिश्तेदार आते हैं कि वो फलाने वाली बुआ आ रही हैं, फलानी चाची आ रही हैं, फलानी जगह
1: कोई मत वाला आया मेरे द्वारे ही तो होता है।
0: और ये भी कहा जाता है कि वो जैसे मड़वा वाली भाभी, पुरवा वाली भाभी और वो प्रतापगढ़ वाली, ऐसे ऐसे जगह जयपुर वाली, तो ये बड़ा
1: जयपुर वाली चाची, आगरा वाले ताऊ जी।
0: कई बार तो भाभी और चाची कर वो न कह के बल्कि सीधे सीधे वो जयपुर वाली आ रही है, देखिए ना राजस्थान वाली आ रही है, तो उससे भी क्लियर हो जाता है कि कौन आ रहे हैं। तो ये जो शादी ब्याह में जमावड़ा होता है, इसी का आनंद अलग होता है।
1: और एक बात और ममता जी, आजकल सिर्फ शादी ब्याह ही रह गए हैं जहां हम अपने पुराने रिश्तेदारों से मिलते हैं। यूं ऑनलाइन बात करना, फोन पर बात करना, और एक जब इस तरह से हम मिलते हैं बहुत लंबे समय के बाद, आमने सामने से एक दूसरे को देखते हैं, तब उस मुलाकात का मजा बहुत कहते हैं कि अलग होता है। और इसके अलावा पहले हम अपने बहुत दूर दूर के रिश्तेदारों को भी जाना करते थे, लेकिन आजकल

0: ये चीजें बड़ी संकुचित होती जा रही है। हमारे बच्चे कई बार तो हमारी जो हमारी सगे बहनों को तो जानेंगे, लेकिन अगर मेरी चाचा की लड़की है या मेरे ताऊजी के लड़के हैं तो वो उनको नहीं पहचानते, क्योंकि उनका मिलना जुलना ही बहुत सीमित हो गया है। जब कोई शादी भी हमें जाने की बात आती है तो हम भाई बच्चों की परीक्षाएं हैं, अभी उनके स्कूल हैं, कॉलेज हैं, उनका असाइनमेंट है, इनके चलते बच्चे जा ही नहीं पाते, या बच्चों का भी सोच जिस तरह से हो रही है वो एडजस्ट करना नहीं चाहते हैं। जिस तरह से बड़े लोग हर माहौल में एकजुट होकर रह जाते हैं, बच्चे इस बहाने से भी जाना थोड़ा सा,
1: उनको अपना कमरा चाहिए, उनको अपना बाथरूम चाहिए, और उनको अपने खाने पीने की जो टाइमिंग्स है उसी टाइम पे नाश्ता चाहिए। वही दायरा, उसी दायरे में सिमट कर रह गए, और बच्चे पूछते भी हैं कि कौन से वाले मामा, कौन सी वाली मामी, कौन सी वाली चाची, कौन सी वाली बुआ। तो उनको पता ही नहीं है कि फोन पर क्योंकि बात होती है, मिलना जुलना हो ही नहीं पाता। तो शादी के बहाने बच्चों को भी ले जाना चाहिए शादी समारोह में। और पढ़ाई की जहां तक बात है कि पढ़ाई पे विघ्न आता तो किताब कॉपी लेकर जा सकते हैं अगर दूसरे शहर में शादी
0: अगर
1: है
0: कोई
1: तो।
0: बहुत जरूरी ही ऐसा है कि परीक्षाएं ही चल रही हैं जिन्हें आप बिल्कुल अनसुना अनदेखा नहीं कर सकते हैं, तब आप नहीं ले जा रहे हैं बच्चों को तो कोई बात नहीं, लेकिन कोई बात नहीं है फिर भी अपनी सहूलियत या सुविधाओं के वजह से बच्चे मना कर रहे हैं तो थोड़ा जिद करके बच्चों को जरूर लेकर जाना चाहिए, क्योंकि एक समय पर आकर बच्चे रिश्तेदारों को पहचानेंगे ही नहीं और वो रिश्ते कहीं आकर सिमट कर रह जाएंगे। उनके लिए रिश्ते का मतलब होगा सिर्फ उनके स्कूल कॉलेज के दोस्त या जहां उनके सहकर्मी हैं वो।
1: अच्छा, अब जरा ये देख लें कि हमारे श्रोता क्या कह रहे हैं इस बारे में। एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि शादी ब्याह त्योहार किसी पारिवारिक आयोजन के बहाने सगे संबंधियों से मुलाकात का अवसर मिलता है। ऐसी मुलाकातें रिश्तों में अपनापन और मधुरता बढ़ाती हैं। परिवार के लोग एक दूसरे का हालचाल जान पाते हैं, सुख दुख साझा करते हैं और पुराने दिनों की यादें ताजा करते हैं। आज की व्यस्त जीवन शैली में जब सभी अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं तब ऐसे अवसर रिश्तों को मजबूत बनाने का काम करते हैं। जब इकट्ठे होते हैं फोन पर वो चर्चा कैसे हो सकती है? हालांकि कई बार ये होता है कि एक साथ कन्वर्सेशन के लिए कई लोग फोन, मतलब कई फोन एक साथ मिला लिए जाते हैं और बात करते हैं, ग्रुप कॉल होता है, लेकिन उसमें वो आनंद नहीं आता जो आमने सामने बैठ के छेड़छाड़ करके एक दूसरे को धक्का मुक्की करते हैं, धौल धप्पा करते हैं। उसमें जो आनंद आता है पुरानी बातें ताजा करते हैं कि फलानी भाभी ने एक बार ये कहा था, और फिर उस पे जो ठहाके लगते हैं जोरदार, और वो ठहाके कमरे में नहीं आंगन तक, बरांडे तक गूंजते हैं।
0: बिल्कुल, उसकी बात छेड़छाड़ होती है और बहुत लंबे लंबे समय के बाद जब अब पुराने रिश्तेदारों से हमारी मुलाकात होती है और जब हम उनसे मिलते हैं ना, तो एक बात तो बड़ी कॉमन सी होती है जो हर कोई कहेगा, अरे तुम तो बड़े दिन बाद मिले हो, कितना छोटा सा देखा था तुमको, कितने बड़े हो गए,
1: बड़ा हो गया हमारा बेटा, बड़ी हो गई हमारी बिटिया। तो ये सब होता है और समय का अंतराल कई बार कुछ चीजों को विस्मृत कर देता है जो जब आप मेलजोल के साथ वो बातें ताजा हो।
0: कई बार कुछ कटाक्ष भी होते हैं, अरे बड़ी दुबली हो गई हो, क्या ससुराल वाले खाने को नहीं देते, अगर थोड़ा वजन बढ़ गया कितना खाती हो भाई, ज्यादा खिलाते हैं ससुराल वाले, तो इस तरह के कटाक्ष,
1: ज्यादा अमीर हो गई हो, ये भी होता है। अब ज्यादा बातें ना हो जाए इसका ख्याल रखते हैं, एक गाना सुनवाते हैं।

0: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है। फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
3: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीजें अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
2: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
3: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना भी काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
2: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती पर यह कार्यक्रम सखी सहेली और श्रोताओं की टिप्पणियां बहुत सारी आ रही हैं। क्या था विषय की शादी के बहाने सगे संबंधियों से मुलाकात, और चंचल जी भी ढूंढ रही हैं, लेकिन ये जो टिप्पणी आई है वो मैं श्रोताओं तक पहुंचा रही हूं, जो हंसी मजाक वाली बात है। एक श्रोता ने लिखा है कि

0: किसी कोने में चाचा पुरानी बातें सुना रहे होते हैं, कहीं मामा हंसी मजाक में सबको हंसा रहे होते हैं, तो कहीं बरसों बाद मिले भाई बहन बचपन की यादों में खो जाते हैं। ऐसे मौकों पर लगता है कि रिश्ते कभी पुराने नहीं होते, बस मुलाकात का इंतजार करते हैं। और फिर शादी बीत जाती है, लेकिन मन में एक मीठी सी तसल्ली रह जाती है कि इस उत्सव ने कुछ घंटों के लिए ही सही पूरे परिवार को फिर से एक साथ मुस्कुराने का अवसर दे दिया। और कई बार जो मन की गांठें हैं वो भी खुलती हैं कि नाराजगी होती है कि फलानी बुआ नाराज है, वो फोन नहीं कर रही है, बात नहीं कर रही है, फलानी दीदी नाराज है कि वो फोन नहीं आएंगे शादी में, और आ जाती हैं जैसे तैसे, फिर रोना धोना मचता है, उसके बाद बिल्कुल माहौल हल्का।
1: अब इसी बात पर देखिए अगला कमेंट है कि शादियों में मिलना जुलना भी होता है और कुछ पुराने गड़े मुर्दे भी खड़ा करते हैं, थोड़ी सी नोकझोंक भी होती है, उसके बाद मुंह फुलाना, बाद में मान मनोबल, और फिर सब एक ही जगह मिलकर बैठकर हंसी ठहाके में लगाकर बड़ा एंजॉय करते हैं।
0: एक श्रोता ने लिखा है कि पिछले महीने ही हमारे परिवार में विवाह था, हम सब ने तय कर लिया था कि सभी आएंगे, मई में शादी इसलिए रखी थी कि बच्चे भी फ्री हो जाएंगे, सभी एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हुए, बचपन की यादें ताजा हो गईं, संगीत में भी सब जमकर नाचे, बहुत मस्ती हुई, बच्चों को भी अपने चचेरे ममेरे भाई बहनों से मिलने और समझने का मौका मिला, और बुजुर्ग तो भावुक ही हो गए सबसे मिलकर, कई रिश्तेदारों से तो बरसों बाद मिलना हुआ। सबसे ज्यादा आनंद तो इसमें लेडीज संगीत का जो होता है और रात को जो महलूल होता है, अगर बेटे की शादी है तो उसमें सबसे ज्यादा आनंद घर वालों को आता है, क्योंकि लेडीज संगीत में सारे मिलकर, कहने नाम तो लेडीज संगीत है लेकिन उसमें पुरुष भी शामिल होते हैं, जेंट्स भी, और खूब मस्ती करते हैं नाच गान के साथ।
1: लेकिन जब नहीं पहुंच पाते हैं उनका दुख बयान करते हुए हमारे एक संदेश में लिखा गया है कि सगे संबंधियों के बहाने हमने भतीजे का हाल सुना, बहुत बहाना क्या करें, बच्चों की परीक्षा है और श्रीमान जी की तबीयत खराब है, नौकरी से उन्हें छुट्टी नहीं मिलेगी, शादी के बहाने मिल तो लेते लेकिन जिन्होंने भी बहाने किए हैं वो सभी शादियां पधारें। पता नहीं क्या लिखना चाहती है, कुछ साफ साफ नहीं है।
0: इनका कहने का आशय ये है कि हम लोग बहाने करते हैं कि नौकरी से छुट्टी नहीं मिली, बच्चों के इम्तिहान है, दरअसल उसके पीछे मंतव्य ये होता है कि कौन जाए इतना खर्च बर्च करने के लिए, ठीक है उतने पैसों की बचत कर लेंगे, लेकिन वो जो पैसे खर्च करके आप जो खुशी ले आते हैं उसकी कोई सानी नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर बचत ना करें।
1: हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि मैं बताना चाहूंगा कि अभी आपने कहा था ना पुरुष शामिल होते हैं, तो हमारे सखी सहेली कार्यक्रम में बहुत सारे पुरुष होता है शामिल होते हैं, तो ये बताना चाहते हैं कि आज शाम को ही रिश्तेदारी में अजमेर में एक शादी है, बड़े बुजुर्ग और छोटे रिश्तेदार सबसे मुलाकात होगी, जहाँ हम अपने बड़ों के साथ चरण स्पर्श करके आशीर्वाद भी प्राप्त करेंगे।
0: और एक श्रोता ने लिखा है कि बहुत पुरानी बात है, मेरे घर में शादी चल रही थी, बारात आ गई थी और सभी नाश्ता पानी करके अपनी अपनी जगह पर बैठे हुए थे, सर्दी के दिन थे इसलिए लोग घर के रूम में ही बैठे हुए थे, रिश्तेदारी में आई एक सदस्य बाहर से आए किसी मेहमान का मजाक उड़ा रही थी, वहां पर हम सभी बैठे हुए उनकी बात में हाँ मिलाते हुए हंस रहे थे, और तब तक अचानक जनरेटर बंद होने से लाइट चली गई थी, 5 मिनट के अंदर ही लाइट तो आ गई, और जब लाइट आई तो जिनका मजाक उड़ाया जा रहा था वो सामने एक चेयर पर बैठी थी, अब बोलने वाली का चेहरा देखने लायक था, किसी को कुछ बोलते नहीं बना, मैंने उसी समय से उनकी बात को संभाल लिया कि अपनी किसी सहेली के बारे में बोल रही है, पर वे मुस्कुरा कर रह गईं और सभी शादी विवाह का विधि विधान देखने के बहाने धीरे धीरे वहां से खिसक गए, आज भी हम सब जुटते हैं तो उस समय की वो बात याद करके खूब हंसते हैं, वैसे वो दोनों रिश्तेदार थी और उन लोगों में आपस में बनती नहीं थी। और कई बार चंचल जी ये भी होता है कि खाने पीने के मामले में भी लोग नाराज हो जाते हैं, कि हमें देखा वो फलानी को तो चाय हाथ में पकड़ा दी और हमें चाय पूछा तक नहीं, और हमें तो वो पता है कि हमें लड्डू पसंद है और लड्डू ने दे के हमें तो गुलाब जामुन दे दिया, मतलब बिना बात के भी लोग शिकायत करते हैं।
1: इस तरह की शिकायतें भी होती हैं कि देखो उनकी शादी में गए थे, वहां कितना अच्छा इंतजाम था, हाथों में नाश्ता आता था, समय पर चाय पानी हो जाया करती थी, यहाँ तो 11 बज गए नाश्ते का ही इंतजाम नहीं है। तो कई बार हम जिनके यहाँ जाते हैं उनकी समस्या भी समझ लेनी चाहिए कि हो सकता है हलवाई के आने में देर हुई हो या जो मैनेजमेंट देख रहे हैं वहां कुछ दिक्कत हुई हो, जिन्होंने आपको बुलाया है, जो आप आतिथ्य जो कर रहे हैं वो नहीं चाहते कि आपके आतिथ्य में कोई कमी रहे, लेकिन थोड़ा समझकर हमें भी चलना
0: है। पर रिश्तेदार जो जाते हैं मुझे लगता है कि वो कहीं घर से जुड़े हुए हैं तो सीधे रसोई घर में जाके वो कमान संभाल सकते हैं, क्योंकि जो घर वाले लोग होते हैं उन पर भी बहुत बड़ा बोझ होता है सबकी आवभगत करना और शादी की

0: तैयारियां करना, शॉपिंग, कितना सारा तामझाम होता है और सारे रस्म व रिवाज का ख्याल रखना। तो जो रिश्तेदार जाते हैं उनको सिर्फ बैठ के आलोचना करने की बजाय शामिल हो जाना चाहिए कि लाओ हम एक जिम्मेदारी उठा लेते हैं, खाने पीने का, नाश्ते का इंतजाम हम कर लेते हैं कि हम सबके हाथों में नाश्ता पहुँचाएंगे, तो कितना अच्छा लगता है।
1: और इसके बाद जब शादी ब्याह के बाद सारे मेहमान चले जाएंगे तो पूरा जो पसरा हुआ घर है या जितने भी चीजें फैली हुई हैं उनको समेटते समेटते भी उनको एक हफ्ता 10 दिन लग जाता है। कई बार तो जो घर के लोग होते हैं उनकी तबीयत भी खराब हो जाती है।
0: अमूमन ऐसा होता है।
1: चलिए फिलहाल हम एक आनंद की बात कर रहे हैं, शादी ब्याह के मजे की बात चल रही है, तो गाने सुन ले,
0: सुनते हैं।

0: भाई ममता जी, शादी ब्याह की बात चल रही थी और एक कमेंट में देखिए क्या लिखा गया है। सालों से दूर रहे कजिन्स, चाचा, ताऊ, मौसा, मौसी एक छत के नीचे आ जाते हैं, जिससे बहुत सारी पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। ढोल, नगाड़े, संगीत, हंसी मजाक के बीच लोग अपनी रोजमर्रा की चिंताओं को बिल्कुल भूल जाते हैं। नई पीढ़ी का परिवार के सदस्यों से, यानी कि बच्चों और बहुओं के साथ पूरे कुनबे से मिलना हो जाता है, अपनी संस्कृति को समझने का मौका मिलता है। दुख में भले ही लोग दूरी बना लें, लेकिन शादी की खुशी हर किसी की कड़वाहट को भुलाकर गले मिलने का अवसर देती है।
1: हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि बहुत सारी बातें कॉमन है, कई श्रोताओं ने लिखी, तो वो एडिट करते हुए मैं

0: आगे पढ़ रही हूँ, लिखा है कि इस शादी वाले घर में सभी व्यस्त होते हैं शादी, और उसे व्यस्तता में अपने चचेरे, ममेरे, फुफेरे, भाई बहन, बुआ चाचा, मामा का परिवार सभी से मिलना जुलना होता है और सबसे मजा आता है। संगत में पत्तल में बैठ कर खाना खाना और एक दूसरे की खिंचाई करना, और रात में एक रूम में सभी मिलकर गीत गवाई, आधी रात तक गप्पे लड़ाना, फलाने की बेटी और फलाने की बहू और तुम्हारी वो सहेली और तुम्हारा वो दोस्त, आज इस विषय प्रसंग ने परिवार में हुई कितनी शादियों की यादें ताजा कर दी।
1: हमारे श्रोता लिखते हैं कि शादी ब्याह के रंग बिरंगे समारोह केवल उत्सव नहीं होते, बल्कि रिश्तों की डोर को मजबूत करने वाले ऐसे अवसर होते हैं जो हम शादी में जाते हैं इसलिए कि सारे रिश्तेदारों से मुलाकात हो जाए। शादी एक ऐसा माहौल भी होता है जहां पर अपनापन दिखाई देता है। हंसी मजाक में साथ बैठकर भोजन करने का आनंद ही होता है। मेहंदी लगवाना, ढोलक की थापर, बन्ना बन्नी के संगीत की महफिल रिश्तों को मजबूत बना देती है। तो कई बार समारोहों में नई पीढ़ी का परिचय भी अन्य सदस्यों से हो जाता है, जिससे पारिवारिक जुड़ाव बना रहता है।
0: हमारे एक श्रोता ने टिप्पणी भेजी है, लिखा है कि बात कुछ साल पुरानी है। हम एक शादी में गए थे, हमारे बगल में एक कपल बैठे हुए थे, उनसे औपचारिक बातें हो रही थी। मेरी बड़ी बहन आई और कहा भाई बहन में दोस्ती हो गई। मैंने पूछा भाई बहन, तब उसने बताया कि ये तो हमारे भाई भाभी हैं, मैं परिवार में छोटी हूँ, मेरी मुलाकात उनसे ना के बराबर हुई और मेरी पढ़ाई हॉस्टल में हुई, तो मेरे बचपन का चेहरा और आज का चेहरा, चेहरे में बहुत फर्क आ गया है, इसलिए भाई ने भी मुझे नहीं पहचाना। फिर तो बातों का सिलसिला जारी रहा कि बस ये मुलाकात यादगार बन गई। भाई आज अगर सगे भाई बहन एक दूसरे को नहीं पहचान रहे, ये तो बड़ी हैरत की बात है, क्योंकि अब तो मोबाइल का भी जमाना है। अगर आपको फुर्सत नहीं तो कम से कम वीडियो कॉल पर एक दूसरे को देख लें।
1: और कई बार ऐसा होता है कि जिन रिश्तेदारों को हमने बहुत सालों से नहीं देखा, या जो नई बहू आई है, नए जवाई घर में आए हैं, जिनसे हम नहीं मिले हैं, लेकिन ऑनलाइन हमने उनके चेहरे देखे हुए होते हैं, तो जब हम मिलते हैं सालों के बाद भी, तो कम से कम उन चेहरों को पहचान लेते हैं। एक अन्य संदेश में लिखा गया है कि आज की भागदौड़ भरे जिंदगी में किसी के पास इतना समय ही नहीं है कि लोग अलग से समय निकालकर एक दूसरे से मिल सकें और उनका हालचाल बताएं या दूसरों की सुने। शादी एक ऐसा समारोह है जिसमें सब मिलकर एक दूसरे का हालचाल पूछ लेते हैं, अपनी व्यस्तता को भी बता देते हैं। शादी एक बहाना बन जाती है जो सालों से नहीं मिले होते हैं उनको मिला देती है।
0: और एक श्रोता ने लिखा है कि बिल्कुल अभी हमने जो बात कही थी कि किसी को चाय दे दी गई, उसके जवाब में लिखा है, अभी भी ये टिप्पणी आई है 6 मिनट पहले, इन्होंने लिखा है कि आपने किसी एक को पहले चाय दे दी तो तुरंत दूसरे का मुंह फूल जाता था और उसका बहुत ज्यादा उसकी इज्जत हो रही तो मेरी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा, ये भी लोग कहते हैं। और बेटे की जब बारात चली जाती थी तो घर की औरतें रात जागरण करती हैं और मड़वे में हर तरह का स्वांग रच के डोमकच जलवा करती हैं, उसको बहुत जगहों पर महलूल भी कहते हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि सही कहा, सब बहनों का मिलना, प्यारी सी मस्ती, थोड़ी सी लड़ाई, बताया नहीं तू ये पहनने वाली है, हमारे पास भी ऐसा ही था, हम भी पहन लेते, या फिर सबका एक कलर के कपड़े लेना और फिर किसी का कुछ घर में छूट जाना, सब कुछ बहुत मजेदार होता था। और एक श्रोता ने लिखा है कि हमारे शहर जयपुर में तो सखी सहेली की मौसम की बात हुई, और एक श्रोता लिख रहे हैं कि भाई बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने ये मुद्दा उठाया, आज मुझे तो झपकी सी आ गई थी लेकिन अचानक नींद खुली और ये बातें सुनी तो बहुत अच्छा लगा और बातें हम सुनने लगे। एक श्रोता ने लिखा है कि फरवरी में मेरी भतीजी की शादी थी, हम काका पापा के 8 भाई और 8 बहनों में बड़े भाई की लड़की की शादी थी, मतलब हमारी पीढ़ी की पहली शादी। कई साल बाद सब इकट्ठा हुए, बहुत मजे किए, डांस किया, बाद में फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया पर सब ने इतने फोटो वीडियो शेयर किए कि सब बोलने लगे आजकल तो आपका परिवार फेसबुक पर छाया हुआ है।
1: इसी तरह से आज ये विषय ऐसा है कि इसके कमेंट भी बहुत सारे छाए हुए हैं। हमने कोशिश की हम बहुत सारे संदेशों को शामिल कर सकें, लेकिन जिनके नहीं हो सके उनसे माफी मांगते हुए अब सुन लेते हैं ये गीत।

0: ये प्यार की डोरी हमें ना भुलाना, हमें ना भुलाना। और बहुत सारे रिश्तेदार भी ये बात कहते हैं, जब शादी विवाह के रंग बिरंगे समारोह केवल उत्सव नहीं होते, ये हमारी एक सखी ने लिख भेजा है, बल्कि रिश्तों की डोर को मजबूत करने वाले ऐसे अवसर होते हैं जहाँ जाने पर सारे रिश्तेदारों से मुलाकात हो जाती है। और भी बहुत सारी बातें लिखी हैं, बहुत सारे श्रोताओं ने इस तरह की बातें लिखी हैं।
1: और अब हम बात करते हैं कि अगर आपने घर में कुछ छोटी सी बगिया बनाई है और उस पौधों पर कीट लग जाते हैं तो उन्हें बचाने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं। इस पर हमारे श्रोता ने बड़े अच्छे उपाय बताए हैं कि बारिश के मौसम में ये होता ही है। इसके लिए कुछ उपाय इस तरह से हैं कि नीम के तेल की 3-4 बूंदें में 3-4 बूंदें शैम्पू की भी डाल लें और अब इसे पानी में घुल जाए इस तरह से इसका घोल बना लें और ये मिक्सर शाम के समय पूरे पौधों पर हर तरफ से स्प्रे कर दीजिए। खासतौर पर पत्तों के नीचे वाले हिस्से पर करना है क्योंकि कीट और अंडे वहीं पर ज्यादा पनपते हैं। और अगर नीम का तेल ना मिले तो हल्दी के पानी को भी इस मिलाकर

उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जली हुई लकड़ी की जो राख होती है उसे अगर पत्तों पर छिड़का जाए तो उससे भी कीड़े नहीं आते हैं। नीम के हरे पत्तों को चलाकर उसका धुआं करने से भी कीड़ों से बचाव हो जाता है। बाजार में या ऑनलाइन इस तरह की गम कीबोर्ड मिलते हैं, दो चार वो कई किसी जगह पर टांग देने से कीड़े उस पर चिपक जाते हैं, लेकिन कई लोग कीट को मारना नहीं चाहते तो वो इस उपाय को ना करें।

0: करने से रोकने के लिए महीन जाली का उपयोग किया जाता है। चिपचिपे जाल, पीले रंग के चिपचिपे पौधे,
1: पीली स्टिकी ट्रैप लगाएं,
0: हाँ,
1: मेरे ख्याल से ये कहना चाहते हैं, ताकि
0: ये
1: वो जैसे मक्खी है, मधुमक्खी है, तो जो उड़ने वाले कीट को आकर्षित करने के लिए किया जाता है, ताकि वो पकड़ने में मदद मिले।
0: इसके अलावा पेस्टिसाइड का उपयोग भी कर सकते हैं या कीटनाशक जिसे हम कहते हैं। ये हमारे श्रोताओं ने हम तक सलाह पहुंचाई है। और हम अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस की अगर बात करें ममता जी, तो 2010 में इसकी शुरुआत की गई थी और पहला अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस 25 जून 2011 को मनाया गया था। दुनिया का लगभग 80-90% जो भी व्यापार होता है वो समुद्र के रास्ते से ही होता है। नाविक बहुत लंबे समय तक अपने परिवारों से दूर रहकर बहुत कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं और जो सप्लाई चेन है, जिसे हम वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला कहते हैं, वो सुचारू रूप से चलती रहे, इसमें इन नाविकों का बहुत बड़ा योगदान होता है। और हमारे दैनिक जीवन में जितनी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, ख़ासतौर पर जो भी वस्तुएँ हैं, भोजन है, ईंधन है, वो सब हमें इन्हीं समुद्री रास्तों से नाविकों के द्वारा पहुँचाया जाता है।
1: बिल्कुल, और समुद्र में तेल की खोज की जाती है, वो उनमें भी इनकी अहम भूमिका होती है। और कई बार समुद्र में जब तूफान आता है, सीरफ जिसे कहते हैं, तो कई नाविक दूर दूर तक समुद्र के बीचों बीच चले जाते हैं, तो उनकी जान को भी बहुत खतरा होता है। वो मुसीबत से लड़ते हुए कई बार घर वालों को पता नहीं चलता है, कोई नेटवर्क नहीं होता है, मोबाइल फोन वहां तक नहीं पहुंचता है, तो उस समय घर वालों की चिंता देखते ही बनती है। तीन तीन चार चार दिन, कई बार महीनों तक वो तूफान में फंसे रहते हैं, लेकिन जब वो घर लौट आते हैं तो घर वालों की चिंता खत्म होती है।
0: बिल्कुल, इसीलिए उनके क्या अधिकार हैं, उनकी सुरक्षा किस तरह हो, उनका कल किस तरह से बेहतर किया जाए, इसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इस तरह के जो भी खास दिन हैं वो आयोजित किए जाते हैं। और इस दिन का उद्देश्य भी यही है कि नाविकों के योगदान के लिए उन्हें समाज में सम्मान और आभार व्यक्त करने के लिए और समुद्री उद्योग को बेहतर हो सके, इसे बढ़ावा देने के लिए ये दिन हम मना रहे हैं।
1: और अब सुनते हैं प्रोग्राम का ये आखिरी गाना।

0: ये था आरजू फिल्म का गाना, लता मंगेशकर की आवाज थी। और अब बिल्कुल वक्त नहीं कि हम कुछ बोलें बतियाएं या गाना सुनवाएं, तो लेते हैं सखियों और सखाओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह
1: और चंचल वर्मा का नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम के प्रोड्यूसर अनुश्री पाठक।

0: फरमाइश कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हेलो फरमाइश कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम जिसमें आप श्रोता कॉल के माध्यम से हमसे जुड़ते हैं और अपने विचार रखते हैं। आज भी कुछ ऐसे ही विचार आप श्रोताओं के द्वारा विविध भारती को लेकर, विविध भारती के कार्यक्रमों को लेकर। तो सुनते हैं आज का हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती
1: जी। नमस्कार दीदी।
0: नमस्कार नमस्कार, अपना नाम बताइए।
1: मेरा नाम है जी कल्लू मनियार, चिड़ी वाला।
0: कल्लू जी कहाँ से बोल रहे हैं?
1: रामपुर मनियारा और जी जिला सहारनपुर उत्तर प्रदेश।
0: अच्छी बात है, अपने बारे में बताइए, कैसे हैं आप?
1: जी बढ़िया, शुक्र है मालिक का, आपकी दुआएं हैं। मेरा चूड़ी का काम है, मैं चूड़ी जो है साइकिल पे ले जाता हूँ।
0: अच्छा, साइकिल पर चूड़ियाँ लगा के आप बेचने जाते हैं?
1: जी हाँ, गाँव में जो रामपुर के चारों तरफ गाँव है ना, उनमें जाता हूँ।
0: तो कैसे बांधते हैं चूड़ियों को साइकिल पे? गिरने का डर नहीं रहता है? चूड़ियाँ टूट जाएंगी तो?
1: अजी बांध के ले जाता हूँ मैं चूड़ी को बहुत अच्छी तरीके से।
0: अच्छा, फिर घर घर फेरी लगाते हैं?
1: अजी फिर मैं गाँव में जाता हूँ, फिर बच्चे खुद ही बता दे कल्लू ताऊ जी आ रहे हैं, चूड़ी पहन लो, घर वाले बुला ले रहे हैं फिर।
0: अरे वाह, यानी आप बहुत फेमस हैं कल्लू ताऊ जी के नाम से ना?
1: जी।
0: अच्छी बात है।
1: चूड़ी बेचता हूँ कांच की।
0: कांच की चूड़ियाँ बेचते हैं, तो महिलाएं किस तरह की चूड़ियाँ ज्यादा पसंद करती, कौन सा रंग ज्यादा लेती हैं?
1: मैरून रंग ज्यादा पसंद करती हैं जी।
0: मैरून रंग पसंद करती हैं, चमकदार।
1: हाँ जी, मैरून रंग ज्यादा पसंद करती हैं, और रंग भी तो काफी हैं वैसे, बाकी ज्यादातर मैरून चलता है।
0: बहुत अच्छी बात है।
1: और कांच की चूड़ी है, शुभ मानते हैं इसको, कांच को?
0: बिल्कुल, हमारे यहाँ सुहाग का प्रतीक मानते हैं चूड़ियों को, कांच की चूड़ियों को पहना जाता है।
1: जब मैं चूड़ी पहना देता हूँ तो नचकारती है फिर चूड़ी, फिर नचकारती है मेरा औरतें, ये सुहाग की चीज है ना
0: जी। तो एक चूड़ी ज्यादा देते हैं आप?
1: हाँ बिल्कुल, दो देता हूँ जी मैं तो।
0: अच्छा, दो दे देते हैं आप?
1: दो जो देता हूँ, जोड़ाई भगवान तुम्हारा बनाओ रखे, जोड़ाई मैं दे रहा।
0: अरे वाह, चलिए कल्लू जी बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, बताइए अपनी पसंद का गाना।
1: फिल्म का नाम है जी आपकी परछाइयाँ, और आवाज है रफी की, गाने के बोले ये है तमन्ना तेरे घर के सामने।
0: बहुत सुंदर, चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: जी मैं जीतन यादव बड़ा गांव जिला गुना मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ मैम।
0: स्वागत है आपका, कैसे हैं आप?
1: मैं अच्छा हूँ, दुकान पे बैठा हूँ, आपके नंबर मिला रहा था।
0: अच्छा, क्या दुकान है आपकी, किस तरह की?
1: किराने की दुकान है मैम।
0: अच्छा, सभी सामान रखते हैं?
1: जी मैम।
0: तो सुबह खुल जाती होगी कितने बजे, 8 बजे या 10 बजे?
1: 7 बजे खुल जाती है, रात के 10 बजे तक चलती है।
0: तो लंच में घर जाते होंगे या खाना साथ लेके आते हैं?
1: नहीं मैम, मैं दुकान घर पे ही है और घर पे ही बैठा रहता हूँ, घर पे ही रेडियो है, विविध भारती का साथ है।
0: अरे वाह, फिर तो आपके मजे हैं कि जब हुआ एक बार घर के अंदर चले गए, खाना वाना खाया, पानी वानी पी, चाय वाय पी और आ गए, है ना?
1: जी।
0: मतलब घर के अंदर ही है तो और भी आराम हो गया है, घर के अन्य लोग भी आकर दुकान को संभाल लेते होंगे।
1: जी, और आने लोग आते हैं और विविध भारती को सुनते हैं और खासकर हेलो फरमाइश सुनते हैं तो बहुत आनंद आता है।
0: आपकी दुकान पे आके सुनते हैं श्रोता?
1: जी।
0: तो उन्हें बताइए कि मोबाइल पे न्यूज ऑन AIR ऐप जो है डाउनलोड कर ले और सुने।
1: जी मोबाइल पे सुनते हैं, पहले दुकान पे ग्राहक आते हैं भी सुन के जाते हैं।
0: अच्छा लगता है हम लोगों को कि हमारे श्रोता इतनी शिद्दत के साथ हमें सुनते हैं। कैसा लगता है आप सबको हेलो फरमाइश कार्यक्रम?
1: अच्छा लगता है।
0: क्या अच्छा लगता है इसमें?
1: दोस्तों को श्रोतन को मौका मिल जाता है बातचीत करने का और गाने अच्छे लगते हैं सुनने, बड़ी बात।
0: बिल्कुल सही कहा, बातचीत का मौका मिलता है और आपकी पसंद के गाने भी इसमें आते हैं, है ना? तो चलिए आज आपकी पसंद का गाना बताइए, कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: आज मजबूर असलम का गीत सुनना चाहता हूँ, रिम जिम बरसता ये बाहर पानी अंदर ये आग लगी है। मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल की आवाज में गीत है।
0: चलिए तो सुनते हैं आपकी पसंद का ये झमाझम गीत।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: जी नमस्कार मंदाकिनी
0: नमस्कार। अरे, आपको पता है मंदाकिनी है इधर?
1: जी। जी मैम आपकी आवाज भी पहचान जाते हैं।
0: अरे, तो हमारे कार्यक्रम बहुत शिद्दत से सुनते हैं, गहराई से सुनते हैं, है ना?
1: जी मैम
0: नाम बताइए अपना।
1: मैं सुनील कुमार बोल रहा हूँ, जिला महोबा उत्तर प्रदेश से।
0: कैसे हैं सुनील जी?
1: बहुत बढ़िया मैम, आप
0: अच्छा,
1: कैसे हो?
0: मैं भी अच्छी हूँ। अपने बारे में बताइए, क्या करते हैं आप सुनील जी?
1: जी मैम अभी तो हम भट्टों में काम करते थे राजस्थान में।
0: अच्छा, राजस्थान में कहाँ?
1: जी भरतपुर में करते थे मैम।
0: और आप क्या कर रहे हैं इन दिनों?
1: जी अभी मैम छुट्टी हुई तो अभी घर आए, 2-4 दिन हुए घर आए हुए अभी।
0: अच्छा, तो भरतपुर में कैसा लगता है आपको? कैसा माहौल है वहाँ का?
1: जी मैम बढ़िया माहौल है, अच्छा लगता है वहाँ पे रहना, काफी साल हो गए हमें जाते जाते।
0: तो आपका परिवार कहाँ रहता है? महुआ में?
1: जी मैम
0: तो आते जाते रहते होंगे ना, दिक्कत तो होती होगी अप डाउन करने
1: जी
0: से।
1: मैम दिक्कत तो होती है, अब ऐसा है कि 8 महीनों के लिए चले जाते हैं, तो 8 महीना वहाँ पे लगातार काम करना होता है भट्टों पे, तो 8 महीने। अब फिर आपके प्रोग्राम तो हम 1 बजे रास्ते ही सुनना चालू कर देते थे।
0: अच्छा, आपको टाइम मिल
1: जी
0: जाता
1: आप
0: था?
1: टाइम तो इतना रहता है कि हमको 1 बजे रात को उठना पड़ता था काम के लिए, तो आपका एक प्रोग्राम 1 बजे रास्ते ही चालू हो जाता, फिर सुबह 11 बजे तक, फिर यहाँ पर 4 बजे से आपका प्रोग्राम चालू रहता था करीब 10 बजे तक रात को।
0: क्या बात है ना, प्यार है आपको विविध भारती से कि रात को 1 बजे से कार्यक्रम सुनना शुरू कर देते हैं।
1: जी मैम आपका सखी सहेली का टेलीकास्ट दोबारा होता है ना 3 बजे रात को, तो
0: हाँ बिल्कुल,
1: रात में सुनना बहुत अच्छा लगता है आपका सखी सहेली कार्यक्रम।
0: अच्छी बात है, आप लोग कार्यक्रम सुनते हैं। लेकिन ये जो काम आप करते हैं भट्टों का, ये बहुत मुश्किल काम नहीं है क्या?
1: जी मैम ये तो मुश्किल काम है, इसमें मेहनत बहुत है।
0: बहुत मेहनत है इसमें तो, और आपको बिल्कुल एक तरह से अपने आप को खपाए रखना पड़ता होगा,
1: जी मैम उसमें मेहनत काम ज्यादा पड़ता है।
0: और उसमें से भी आप समय
1: हाँ
0: निकालकर विविध भारती सुनते हैं और खुश रहते हैं, बहुत अच्छी बात
1: नहीं वो
0: है।
1: तो ऐसा है कि काम चलता रहता है, विविध भारती जी में चलता रहता है, उसके बगैर तो मन ही नहीं लगता हमारा। जो इस सुबह हुआ कि हम सीधा विविध भारती चालू कर देते हैं, पहले
0: अच्छी बात है।
1: सभी लोग सुनते हैं, फिर हम तो ऐसा है कि रात में बिजली रहती, काम बिजली में करना होता है रात को, तो एम्पलीफायर में लगा के रखते हैं, फिर जब बिजली चली जाती तो फिर ब्लूटूथ स्पीकर में लगा के रखते हैं।
0: इतनी व्यवस्था कर रखी है आप लोगों ने, बहुत अच्छा लगा। हमारे ऐसे जो दीवानगी वाले श्रोता हैं, दीवानगी की हद तक विविध भारती को प्रेम करते हैं, उनसे बात करके हमें अच्छा लगता है। बताइए सुनील जी, आज कौन सा गाना सुनेंगे आप?
1: हेमा तरीके का है, गाना है भीगा भीगा मौसम आया बरसे घटा घनघोर।
0: बहुत सुंदर, चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: हेलो फरमाइश
0: हेलो,
1: मंदाकिनी दीदी, नमस्कार।
0: नमस्कार नमस्कार, नाम बताइए अपना।
1: मंदाकिनी दीदी, मैं बोल रहा हूँ राम बाबू मालवीय, कोलार रोड भोपाल से।
0: स्वागत है आपका राम बाबू जी, कैसे हैं आप?
1: मैं एकदम बढ़िया हूँ दीदी, आप सुनाओ, आप कैसे हो और हमारे विविध भारती की संपूर्ण टीम कैसी, क्या है?
0: सब अच्छे हैं, बताइए अपने बारे में राम बाबू जी।
1: अपनी ड्राई क्लीनिंग का काम है, लॉन्ड्री का, और वो काम वाम करते हैं और अपने परिवार के साथ में जो भी है जो दाल रोटी के लिए कमाते खाते हैं और बढ़िया आनंद मंगल से जितना

0: परमात्मा ऊपर वाले देते हैं उसी में खुश रहते हैं और विविध भारती सुनते रहते हैं।
1: बहुत अच्छी बात है, और वैसे भी इंसान को संतुष्ट तो रहना ही होगा एक हद तक, है ना। अगर हमारी
0: जी जी
1: महत्वाकांक्षाएं इतनी बढ़ जाएंगी कि हम असंतुष्ट रहेंगे तो फिर जिंदगी तो खराब ही होनी है, हमारा वर्तमान खराब ही
0: जी
1: होना
0: जी
1: है। बहुत अच्छा लगा
0: और
1: आपसे बात करके। बताइए कौन सा गाना सुनवाए आपको।
0: आज गाना सुनना चाहेंगे, फिल्म का नाम है पापा कहते हैं, उसमें गाना है की आवाज में, घर से निकलते ही कुछ दूर
1: चलते
0: चलते ही।
1: ही बहुत सुंदर गाना सुनना चाहते हैं आप।
0: वैसे दीदी आपके यहाँ के प्रोग्राम जो आपने नए शुरू किए वो भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, हमने चिट्ठियां भी भेजी है मन चाहेगी
1: अच्छा चलिए सुने आपकी
0: में।
1: पसंद का गीत।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: जी नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन जनाब फरमा रहे हैं?
1: संदीप कुमार मक्कड़, पींगा वाला चौक, गोरैया, पंजाब डिस्ट्रिक्ट जलंधर से आपका निमिष होता।
0: जी स्वागत है आपका संदीप जी, कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छे हैं, आपका साथ है तो अच्छा, ना हो तो
0: और भी अच्छा।
1: जी हाँ जी हाँ,
0: बताइए क्या करते हैं संदीप जी आप?
1: मेरा वैसे फोटो फ्रेम और लेमिनेशन का काम है, इसके अलावा मैं गाता भी हूँ और लिखता भी हूँ।
0: अरे क्या गाते हैं और क्या लिखते हैं बताइए।
1: मैंने अपना हिंदी सॉन्ग रिकॉर्ड करवाया है, मैं लिखता भी हूँ, हिंदी सॉन्ग लिखता हूँ और मैं सूफी सॉन्ग भी लिखता हूँ। गाने के कुछ बोल हैं वो सुनाना चाहूंगा।
0: गा के सुनाइए।
1: चलती ट्रेन में चलती चाय पीले पीले, तू मेरा हिंदू तो मुस्लिम भाई, पीले पीले आएगी सुस्ती मड़ेगी सुस्ती, प्याली पीले भाई पीले पीले, ओ सब मुसाफिर दिल के अच्छे, सब मुसाफिर दिल के अच्छे, कान कहाँ पर उतरेगा भाई पीले, ओ चाहे मेरी गरम मसाला, पिएगा कोई किस्मत वाला, गोरा हो या बिल्कुल काला, खुल जाएगा दिल का ताला, कहता रहेगा कहने वाला, चलता रहेगा चलने वाला, सुन दे भाई सुन दे लाला, आगे मेरे फौजी भाई, तेरे पे कुर्बान में भाई, तुम हो सबकी जान हो भाई, बैठो तुम भी चाय है आई, बैठो तुम भी चाय है आई। ये है मेरे गाने के
0: क्या बात
1: और
0: है।
1: अंतरा सुनाया।
0: अच्छा जो
1: जी
0: लिखते
1: हाँ,
0: हैं कैसी सूफियाना कविताएं लिखते हैं?
1: सूफियाना जैसे मैं सूफियाना भी सुनाना चाहूंगा। सब सियाने मिलते ने, सब सियाने मिलते ने, ते कमला कोई कोई, ओ बोलण वाले मिलते ने चुप कोई कोई, ਤਾਂਦਾ ਮੇਲਾ ਮੰਦਾ ਮੇਲਾ, ਤਾਂਦਾ ਮੇਲਾ ਮੰਦਾ ਮੇਲਾ, ਤੇ ਸਮਝੇ ਕੋਈ ਕੋਈ, ਉਹ ਸਭ ਸਿਆਣੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਮਲਾ ਕੋਈ ਕੋਈ।
0: बहुत अच्छा लगा संदीप जी, अपने शौक को आगे बढ़ाइए, लिखते रहिए और इसी तरह गाते रहिए। अगली मुलाकात में फिर आपसे कोई नया गीत सुनेंगे, बताइए।
1: तो मेरी 30 तारीख को मैरिज एनिवर्सरी भी है, मेरी वाइफ ज्योति है उसके लिए डेडिकेशन है, उनको सुनाना चाहूंगा। फिल्म है बीवी हो तो ऐसी, गाना है फूल गुलाब का, लाखों में हजारों में एक चेहरा जनाब।
0: क्या बात है, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। तो आपको ढेरों ढेरों शुभकामनाएं और सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: परम आदमी विदेश, नमस्कार।
0: नमस्कार, अपना नाम बताइए।
1: जी, मैं आपका जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति श्री राधा सिटी मध्य उत्तर प्रदेश से वार्तालाप कर रहा हूँ।
0: जी स्वागत है आपका, बहुत पहले आपसे बात हुई भी है।
1: जी जी बिल्कुल, आपने सही पहचाना, मैं आपका वही जाना पहचाना श्रोता हूँ।
0: अच्छा, आपका नाम है शारदा
1: जी,
0: तो आपका ये नाम किसने रखा?
1: मेरे पिताजी ने रखा है, और मैं बसंत पंचमी के आसपास माँ शारदा की कृपा से प्राप्त हुआ था माता पिता को। तो मैं एक लाइन बोलना चाहूँगा, न छल न कपट न प्रमाद हूँ, न छल न कपट न प्रमाद हूँ, मैहर की देवी माँ शारदा का प्रसाद हूँ।
0: बिल्कुल, वही हमने जानना चाहा कि ये जो नाम है महिलाओं का ज्यादा होता है शारदा, पुरुषों में बहुत कम ऐसे नाम सुनाई देते हैं, तो जानने की हमारी इच्छा हुई कि शारदा नाम क्यों रखा गया, कैसे रखा गया, तो आपने बता दिया है।
1: मेरे बहुत लंबे लंबे बाल भी हुआ करते थे लड़कियों जैसे, और मैं कॉलेज तक मैं यूं ही लंबे बाल रखा करता था। मेरा किच्चा रंग था मेरा, और भोला सा चेहरा मासूम था, तो बहुत से लड़के मुझे तो लड़की समझ के लिए दोस्ती करते थे कि ये लड़की जरूर होगी।
0: हाँ,
1: लड़के की भेष में रहती है।
0: वाह, बहुत अच्छा लगा। देखिए, एक नाम के पीछे कितनी चीजें छुपी होती हैं ना, और अब कैसा लगता है आपको, अब लोग जानते हैं कि भाई ये तो शारदा प्रसाद जी हैं, शारदा कुमारी नहीं है।
1: सब लोग जानने लगे हैं शारदा प्रसाद प्रजापति हैं, और अब तो दाढ़ी मूछें सब हो गई हैं, तो लोग बात जानते हैं।
0: क्या करते हैं शारदा जी?
1: मैं घर पर रहता हूँ, और बच्चों के साथ में आनंद पूर्वक आकाशवाणी और विविध भारती से जुड़ा रहता हूँ। रेडियो सुनना ही मेरा शौक है, दीवानगी है, जुनून है, और जब आकाशवाणी विविध भारती में हमारा फोन लगता है, सुरीली हर दिल की धड़कन, तो बस हृदय प्रफुल्लित गदगद हो जाता है। इतनी खुशी, इतनी प्रसन्नता होती है कि हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं, बस ये तो महसूस करने वाली बातचीत होती है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, और हम भी महसूस करते हैं अपने श्रोताओं की दीवानगी को। बताइए, कौन सा गाना सुनवाएं आपको?
1: आज आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, फिल्म का नाम है विरासत है, कुमार सानू और चित्रा जी ने गीत गाया है, जावेद साहब ने लिखा है, और अनु मल्लिक का संगीत है। गीत बोल है, पायले चुनमुन चुनमुन, झांझरे रुनझुन रुनझुन,

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: हाँ जी दीदी नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: मंदाकिनी जी बोल रही है?
0: हाँ जी हाँ जी
1: जी जी गजराज ज्योति बात कर रहा था, रेलाई राजगढ़ द्यावरा मध्य प्रदेश से।
0: अरे स्वागत है आपका गजराज जी, कैसे हैं?
1: दीदी बहुत अच्छे हैं, मुझे आपकी जो आवाज है ना बहुत प्रिय लगती है।
0: क्या बात, ये तो आप लोगों का प्यार
1: और शायद
0: और
1: मैंने दीदी आपको बीकानेर से भी सुना है।
0: बिल्कुल सुना होगा, आप लोग तो वैसे भी दीवाने हैं आकाशवाणी के, रेडियो के, और हमारे श्रोताओं की वजह से ही तो देखिए ना आज आकाशवाणी कितना आगे निकल गया है।
1: जी जी जी
0: बताइए गजराज जी, आप क्या करते हैं, अपने बारे में थोड़ा बताइए।
1: मैं खेती किसानी का काम करता हूँ, और इसके अलावा जो समरसिबल रहते हैं खेतों के लिए पंप, उनकी रिपेयरिंग भी होती है हमारे यहाँ।
0: आपके पास मतलब शॉप है?
1: जी
0: अच्छा, आप करते हैं?
1: जी
0: अरे वाह क्या बात है, तो फिर एक पन दो काज हो गया, खेत भी संभाल लिया और ये काम भी कर लिया।
1: और साथ साथ रेडियो तो हमको मिलता ही रहता है विविध भारती तो।
0: वो तो आपकी खुराक में शामिल है ना, हो सकता है एक रोटी कम खा लेते होंगे लेकिन विविध भारती सुनना नहीं भूलते आप श्रोता लोग।
1: नहीं भूलते हैं। जी जी जी जी
0: बहुत अच्छा लगता है हमें। तो गजराज जी आज कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे आप?
1: सौदागर मूवी का है, इमली का बूटा बेरी का पेड़।
0: क्या बात है, बहुत सुंदर गीत है, सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: मंदाकिनी जी नमस्कार।
0: नमस्कार,
1: मैं बहापुर बिजनौर उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। मैं
0: बोलिए, नाम बताइए।
1: नाम एम ताहिर है, यानी मोहम्मद ताहिर।
0: मोहम्मद ताहिर साहब, स्वागत है आपका। कैसे हैं?
1: शुक्रिया मैम, बहुत बढ़िया, आपकी दुआएं हैं।
0: देखिए, ऐसा है कि आप अच्छे हैं तो अपने अच्छे कार्यों से अच्छे हैं आप, और ईश्वर की आप पर जो है अति कृपा है, अल्लाह की है ना।
1: जी जी, सब ऊपर वाले के कर्म से सब सही है।
0: क्या करते हैं ताहिर जी आप?
1: मैडम जी, मैं एक शॉपकीपर हूँ, पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है।
0: अच्छा, किस विषय पर?
1: जी मैंने बाई इकोनॉमिक्स किया था।
0: तो आपने अपनी दुकान संभाल रखी है या अपने पिता की?
1: जी, पापा बैठते थे, उसके बाद मैं बैठता हूँ, बस अब उन्होंने फिलहाल रेस्ट के लिए।
0: किस तरह की दुकान है
1: ये? लेडीज की है, आपसे ही मुतालिक सारे सामान है इसमें, जैसे गिफ्ट होते हैं, बैंगल्स होती है और कॉस्मेटिक्स वगैरह।
0: तो आपने एमए इकोनॉमिक्स में किया, तो आगे कुछ और एग्जाम्स वगैरह नहीं दिए? या आपका उद्देश्य यही था कि पिता के व्यवसाय को संभालना है?
1: बात ये थी कि उसके लिए कहीं जाना पड़ता और पापा जी को मुझे अकेला कहीं भेजना मंजूर नहीं था।
0: अच्छा, हाँ, ये हमारे माता पिता का जो अति मोह है संतान के प्रति ना, उसमें वैसे अच्छी बात है कि हम ताउम्र माता पिता का साथ दे पाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ छूट भी जाता है जिंदगी में। हालांकि कहते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ठीक है, आप खुश है तो सब अच्छा है।
1: बहुत बढ़िया जी।
0: तो बताइए, गाना कौन सा सुनेंगे?
1: कन्यादान से मेरी जिंदगी में आते रफी साहब की आवाज।
0: क्या बात है, तो कुछ और बात होती।
1: जी जी,
0: कोई खास मकसद इस गाने को सुनने का?
1: नहीं मैम, अल्फाज सही है, आवाज तो कोई कहने के दो राय है ही नहीं इसमें।
0: सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
2: उनके जुल्फे उनके चेहरे।

छुपा सकता नहीं। कितनी दिलकश है मोहब्बत की जवान,

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम।
1: हेलो मैम, नमस्कार
0: नमस्कार, नाम बताइए।
1: जी। मैं जलंधर सिटी पंजाब से सोनू बात कर रहा हूँ जी।
0: सोनू जी, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप?
1: अच्छे हैं जी। आप मीनाक्षी जोशी जी बात कर रहे हैं?
0: हाँ जी
1: हाँ जी मैडम जी, प्यार भी नमस्कार आपको जी।
0: सुनते हैं हमारे
1: जी
0: कार्यक्रम।
1: मैं तो रेगुलर आपसे जुड़ता रहता हूँ फेसबुक के माध्यम से। हाँ
0: क्या बात है।
1: जी, बस एक क्या होता है ना, कभी कभी इबारत कुछ समझ में नहीं आती, फिर आप दो क्वेश्चन भी पूछते हैं।
0: आप जवाब देती हैं उसका?
1: हाँ जी, मैं जरूर पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं जवाब दूँ आपको और मेरा नाम जुड़ा रहे अपनी भारती के साथ में।
0: तो सवाल तो बिल्कुल सीधे सादे होते हैं और एक कार्यक्रम को थोड़ा सा लाइवनेस बनाने के लिए करना पड़ता है, नहीं तो कार्यक्रम
1: देखिए,
0: बिल्कुल उबाऊ हो जाएगा।
1: और विविध भारती का प्रोग्राम, लेकिन जब से स्टार्ट हुआ है विविध भारती का, तब से मेरे ग्रैंडफादर, फादर मेरे और मैं, वो कभी भी बोझ महसूस नहीं हुई। इतने बढ़िया प्रोग्राम होते हैं विविध भारती के।
0: मतलब आपके दादा की विरासत को आपके पापा ने संभाला और अब आप संभाल रहे हैं, है ना? जैसे हम
1: हाँ जी
0: उनके
1: हाँ जी
0: कामों को संभालते हैं कि भाई हमारे दादा की ये बिजनेस था और उनके बाद पिता ने और पुत्र ने संभाला, तो विविध भारती सुनने की भी आप लोगों ने ये एक ले रखा है प्रण कि हमारे दादाजी की सुनने की आदत को हम भी सुनने में डाल लेंगे।
1: उन्होंने कहा था ना, चैनल वो सुना जाए जिसमें अच्छी ज्ञानवर्धक बातें हों। और रेडियो ऐसा माध्यम है कि कभी इसमें गलत जानकारी मिलती नहीं, सही मिलती है हमेशा।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। और आप लोग इतने प्यार और ईमानदारी से सुनते हैं, सबसे बड़ी बात ये है, हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है जब हम लोग कार्यक्रम
1: जी
0: पेश
1: जी
0: करते हैं और आप लोग इतनी संजीदगी के साथ अपनी बात कहते हैं।
1: जी मैडम जी, देखिए आप जितने भी वीडियो पोस्ट करते हैं ना फेसबुक पर, वो सभी मैं देखता रहता हूँ और सभी मैं लाइक भी करता हूँ। तो आपने
0: हमारे
1: 90 साल का जो जश्न मनाया वो भी मैंने देखा।
0: चलिए तो आप बताइए कौन सा गीत सुनवाए आपको।
1: मैंने गाना सुना है जी दोस्ताना मूवी का, किशोर दा और आशा जी की आवाज में, बहुत खूबसूरत गीत है। दिल लगी ने
0: दी
1: दी
0: हवा,
1: हवा
0: थोड़ा सा धुआं उठा और आग जल गई।
1: और आगे जल पड़ी।
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: मैं संतोष जी हाड़ा बोल रहा हूँ, ग्राम चिड़ा संजय डेरा देवास जिले से।
0: स्वागत है संतोष जी, कैसे हैं आप?
1: जी बढ़िया है, ट्यूट हो गया आपको।
0: अरे
1: सुनते रहते हैं आपका प्रोग्राम, बचपन से सुन रहे हैं जी। आज 44 साल की उम्र हो गई हमारी, और रेडियो समय से सुन रहे, जो सेल वाले शुरू स्टार्ट हुए थे।
0: कैसा लगता है रेडियो सुनने से, जिंदगी संवर गई आपकी?
1: रेडियो दीदी, हम है ना, हमारे फार्म हाउस पे मस्त सुना करते हैं, मजदूर काम किया करते हैं, और आपकी वीर भारती पूरी टीम को हम बधाई देना चाहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। हमारे लिए इतने सुंदर सुंदर कार्यक्रम लाते हो, फोन इन कार्यक्रम लाते हो, और गाने पुराने सदाबहार जो सुनाते हो, बहुत बहुत अच्छा लगता है।
0: चलिए बहुत अच्छा लगा, आप इतने गहराई से हमारे कार्यक्रम सुनते हैं और उनके बारे में अपने विचार भी रखते हैं। वैसे आप खुद क्या करते हैं संतोष जी?
1: जी खेती गृहस्थी का काम है, खेती गृहस्थी का।
0: तो अभी क्या है आपके खेत में?
1: जी अभी खाली पड़ा है, बस वर्षा दीदी का इंतजार है, जैसे पानी गिरता है तो हम सोयाबीन लगाएंगे दीदी।
0: तो सोयाबीन की खेती में कितनी मेहनत मशक्कत हो जाती है, कितना ध्यान रखना पड़ता है?
1: दीदी जो अब जो सोयाबीन की फसल है बिल्कुल बेकार हो चुकी है, सिर्फ ये मेहनत फसल है, जैसे पानी का इंतजार रहता है, खेतों में चारा उगवाता है तो दवाई का इंतजार रहता है, डोरे लगाना पड़ता है, बेलों का समय रहा नहीं, ट्रैक्टरों से लगाते हैं और फिर भी चारा नहीं मचता, फिर डबल दवाई उड़ाते हैं, बिल्ली की दवाई उड़ाना पर बहुत कठिन का काम है ये सोयाबीन पैदा करना। उसके बाद भी फिर मौसम सहयोग नहीं देता है तो फिर बैठक भी बहुत कम होती है हम किसानों को, सोयाबीन की फसल में तो बहुत घाटा है।
0: सही कहा आपने, बहुत मेहनत करनी पड़ती होगी। तो फिर सोयाबीन की फसल को बार बार फिर क्यों बोते हैं, कोई कारण है खास?
1: मेहनत का तो है, फिर भी क्या है इसमें नुकसान चीज नहीं होती। अभी हम मक्का लगाते हैं तो जंगली सुअर खा जाते हैं, मूंगफली लगाते हैं जंगली सुअर खा जाते हैं, रतालू की फसल करे तो वो भी जंगली सुअर खा जाते हैं, उड़द दाल वगैरह पैदा करते हैं तो हिरन खा जाती, हिरन भी बहुत है हमारे इधर।
0: अच्छा तो बड़ा ध्यान रखना पड़ता होगा आपको, तो ये तो 24 घंटे की निगरानी हो गई।
1: जी ये क्या है, सोयाबीन में निगरानी नहीं रखना पड़ता है, दूसरी जो फसल है उसमें बरोबर निगरानी रखना पड़ता है।
0: तो इसलिए आप सोयाबीन को थोड़ा सा इम्पोर्टेंस देते हैं ना, कि सोयाबीन की फसल लग जाए। अपने गाँव के बारे में बताइए थोड़ा सा, कैसा है आपका गाँव?
1: हमारा गांव बहुत सुंदर है, ऐसे तो हमारे गांव के पोहे और समोसे कचौड़ी बड़े फेमस है।
0: क्या बात है, पोहे और समोसे?
1: यस,
0: मुंह में पानी आ गया हमारे। देखिए अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, आपने हमें एक नई जानकारी दी है सोयाबीन की खेती के बारे में। तो संतोष जी आप गाना बता दीजिए।

0: आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम जिन श्रोताओं की कॉल आज लगी है उनसे हमारा करबद्ध अनुरोध कि आगामी 2 माह तक हमें कॉल न करें ताकि हम अन्य श्रोताओं को इस कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर दे सकें। हेलो फरमाइश कार्यक्रम के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं प्रत्येक सोमवार दिन में 11 बजे से। इसके लिए हमारे फोन नंबर नोट कर लें। हमारे फोन नंबर हैं 0222867 0288। दूसरा नंबर 0224002462। चलते चलाते हम आपको ये भी बता दें कि आज का सफर आपने तय किया अपने दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ। रिकॉर्डिंग इंजीनियर अनुश्री गुप्ता, संपादन सहयोग सुशीला वेंगुरलेकर और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। और अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: हेलो फरमाइश।

0: उनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है उस घुटन को दरबारी के गंधार।
2: এতক্ষণ বিবিধ ভারতীর অনুষ্ঠান রিলে করে শোনানো হল আকাশবাণী মিলনে।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। आज संविधान हत्या दिवस है। इस अवसर पर देशभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ये दिवस 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की याद दिलाता है, जब देश में संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्य गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने संविधान हत्या दिवस पर आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित रहे लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आपातकाल भारत के इतिहास का एक कठिन दौर था, जब संविधान के मूल्यों की कड़ी परीक्षा हुई थी। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आपातकाल संविधान पर सीधा हमला था। श्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा रचित एक कविता को साझा करते हुए उनकी संवेदनाओं से जन्मी इन पंक्तियों को सुनने का आग्रह किया, जो आज भी आपातकाल के उस काले अध्याय को बयां करती हैं।
1: जब आपातकाल को एक वर्ष हो गया तो अटल जी ने एक कविता लिखी और उन्होंने उस समय की मनस्थिति का वर्णन अपनी कविता में किया है। झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, सिसकी भरते सावन का अंतर्गत रीत गया, एक बरस बीत गया।
2: सीख चौ में सिमटा जग किंतु विकल प्राण विहग, धरती से अंबर तक बुझा मुक्ति गीत गया, एक बरस गया।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेवा पर्व और आजादी का अमृत महोत्सव जैसी सरकारी पहले संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करती हैं। श्री मोदी ने सोशल मीडिया में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का एक लेख साझा करते हुए ये बात कही। श्री शेखावत ने अपने लेख में आपातकाल के दौर और उनके दौरान लोगों की स्वतंत्रता तथा आकांक्षाओं पर पड़े प्रभाव का उल्लेख किया है। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आज संसद भवन में राज्यसभा के 10 नवनिर्वाचित और पुनर्निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। शपथ लेने वालों में आंध्र प्रदेश से तेलुगु देशम पार्टी के सना सतीश बाबू, विजय चिंतकायला और बश्यम रामकृष्ण तथा जनसेना पार्टी के लिंग मनेनी रमेश शामिल हैं। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश से भाजपा के ताई तादक, ओडिशा से भाजपा के देवाशीष सामंतराय, तमिलनाडु से कांग्रेस के प्रवीण चक्रवर्ती और गुजरात से भाजपा के राजेश परमानंद शुक्ल ने भी शपथ ली। झारखंड से झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैद्यनाथ राम और निर्दलीय सदस्य परिमल नथवानी ने भी राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि तकनीक आधारित युद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा की परिभाषा बदल रहे हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य की राष्ट्रीय सुरक्षा एआई, क्वांटम तकनीक, जैव प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष क्षमताओं के मेल से तय होगी। नई दिल्ली में राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों और प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे अधिकारियों को संबोधित करते हुए डॉ. सिंह ने कहा कि उभरती सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने और देश के रणनीतिक हितों की रक्षा के लिए भारत को नई तकनीक में आगे रहना होगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने तेलंगाना, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति, गुणवत्ता, रखरखाव की समीक्षा की है। नई दिल्ली में समीक्षा बैठक के दौरान श्री गडकरी ने गुणवत्ता जवाबदेही बनाए रखते हुए परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने पर जोर दिया। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया में हथियारों के बढ़ते उपयोग, जोखिम लेने की प्रवृत्ति में वृद्धि और सोशल मीडिया से प्रभावित राजनीति देखने को मिल रही है। दक्षिण कोरिया में शांति और समृद्धि पर जेजू द्वीप में आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉ. जयशंकर ने ये बात कही। डॉ. जयशंकर ने अधिक सहयोगात्मक विश्व व्यवस्था के निर्माण के लिए भारत के वसुधैव कुटुम्बकम के मार्गदर्शक सिद्धांत का

0: इस पिच पर अनुमान यही है कि गेंद थोड़ी सी रुक कर आएगी, अनइवन बाउंस भी देखने को मिल सकता है, और अभी तक इस ओवर में परेशानी हुई है बांग्लादेश के दोनों सलामी बल्लेबाजों को। डिलारा नॉन स्ट्राइकर एंड पर हैं 3 रन बनाकर, और इस समय फिरदौस ने इस गेंद को खेला कवर की तरफ, कोई रन नहीं, और इसके साथ ही पहले ओवर की समाप्ति। पहले ओवर में बांग्लादेश ने बनाए 3 रन बगैर किसी नुकसान के।
1: 3 विदाउट लॉस, टाइडी स्टार्ट, एंड शेफाली वर्मा जस्ट गेटिंग अ कपल ऑफ बॉल्स टू स्पिन, विच विल बी एनकरेजिंग न्यूज नॉट जस्ट फॉर द इंडियन स्पिनर्स बट ऑल्सो फॉर द बांग्लादेश स्पिनर्स देमसेल्व्स। अ लिटिल बिट अबाउट द टू ओपनर्स फॉर बांग्लादेश, दिलारा अख्तर 22 ईयर्स ऑफ एज, जुआरिया फरदौस 20 ईयर्स ऑफ एज, बोथ राइट हैंडेड बैटर्स एंड प्लेयर्स हु हैव अ स्लाइटली बेटर स्ट्राइक रेट इन टर्म्स ऑफ देयर करियर्स। दिलारा अख्तर, दिस इज हर 41st मैच, ही हैज अ स्ट्राइक रेट ऑफ 115, एंड फरदौस इन हर 18th मैच ऑल्सो पोजेसेस अ स्ट्राइक रेट ऑफ 113, विच इज रिलेटिवली बेटर than many of their teammates, and that's why they have formed this combination. And in early June, Dilara actually scored 50 of 22 balls in a match against the Netherlands, which is the fastest 50 for Bangladesh in women's T20Is. They'll be hoping for that kind of explosive start if possible, but in that first over we did see some tidy bowling from Shefali, just looking to attack the stumps. The odd ball turned a little, the odd ball also bounced a little, and the very first one just left the batter after pitching. Dilara Akhtar was beaten all ends up, and for the second ball skipper Harmanpreet Kaur actually brought in a slip. Now Renuka Singh Thakur with her first over of this entire World Cup, her first match in fact, little short of a length, pulled away on the onside by Dilara, and she picks up a single to move along to 4 and takes the Bangladesh score along to 4 as well without loss. Second over in progress, Renuka Thakur making her first appearance in this World Cup. India have had a little bit of a merry-go-round with their seamers. They have played Nandini Sharma pretty much throughout, but they have alternated between Kranti Gaur. They also brought Arundhati Reddy in the previous match. So never really completely sure about where they want the exact combination to fall. This time it's back of a length and it's been pulled away. There's a fielder in the deep though, deep backward square leg, where N. Sri Charani does the cleanup. It's the first runs for Firdaus, takes her off the mark and takes Bangladesh along to 5 for no loss in 1.2 overs. And it's turning out to be a good tidy start. Just a little struggling in terms of finding her right length here, Renuka Singh. And that's why it's just provided easy pickings. Also staying onto the pads. Naturally has this ability to curl the ball in, and that's what she'll be hoping to do. Yet again down the leg side, this time beats the outside edge, or the inside edge will be called a wide. So the first extras in this particular match going the way against Renuka Singh Thakur. She's sometimes been guilty of doing this, just straying down the leg side. And if she doesn't find her range, then it can lead to some scoring opportunities for Bangladesh. Bangladesh, having won the toss, elected to bat. But interestingly, the two more recent or the two more high-profile occasions out of 3 that they have beaten India were when they were chasing. Two of them coming in the Women's Asia Cup. Yet again down the leg side, yet again a good take almost on the full by Richa Ghosh, but called wide, not surprisingly. This time Dilara not even throwing her bat at it. So this will be a slightly long over. 4 balls already, only 2 of them legal. 1.2 was delivered. Bangladesh 7 without loss. Bangladesh and India, both of them with almost identical figures thus far in the tournament. 3 matches played, 2 matches won. Both have beaten the same teams, Pakistan and Netherlands. India lost to South Africa. Bangladesh lost to Australia. As Renuka comes in once again, this time hits her on the pad, but probably just sliding down leg side. It's a very loud appeal from behind the stumps, especially from Richa Ghosh. Harmanpreet's walking over, but don't think that she will be considering going in for the DRS timer, seeing as the fact that Renuka did bowl from quite wide of the crease, Dharmendra.
0: Yes, and this time, puri tarah se chook gayi thi line ko. Uchhal bhi gend achhi khasi thi, aur isi wajah se shayad umpire ne is appeal par zyada dhyan diya nahi.
1: Renuka comes in once again, and it is Dilara on strike, goes for the scoop and almost nails it completely as well. There is short fine in position, and that's why it's not even resulted in a single. It's a lot of risk at the moment for no reward, but that's what exactly she was trying to do. Perhaps use the pace of Renuka and just play it over the fielder at short fine. However, not able to score a run from that. Bangladesh stay at 7 without loss. 1.4 overs completed. 4 for Dilara, who's on strike. 6 balls faced. Firdaus is on 1 from 4, and there have been 2 wides in this over, both of the bowling of Renuka. Comes in outside off stump this time, throws her bat at it, has a bit of a hack, but ends up missing it quite completely, and the ball also keeping just a tad low. The ball which had pitched was definitely missing, going down leg side, the previous one which had struck the pad. After that, the batter trying a few innovative things, trying to play the lap sweep, not being able to nail that. Then looking to go straight down the ground to the ball, just keeping a tad bit low. So some signs of a little bit of variable bounce, which could be worrisome if this match rolls over and Bangladesh post a substantial enough score with India chasing. Renuka comes in for the last ball of this over, yet again down the leg side, yet again it should be called a wide, and it is. Three wides, three extras in this over alone. Renuka's over costing India 5 runs thus far from 5 balls, 8 without loss. The first over from Shefali Verma, only 3 runs conceded of it, all 3 by Dilara. And in this over we have seen a couple of singles for Dilara and Firdaus, and we have then subsequently seen 3 wide balls. Dilara Akhtar facing up once again, 4 from 7 balls, standing well inside the crease with Richa Ghosh standing up to the stumps, which she often does. This time back of a length, pulled away, fielded in the deep, it is taken. N. Sri Charani takes the catch, India strike with their very first wicket, and Dilara, in going for the big hike this time, plays it a bit too nicely and it carries all the way to deep square leg. First blood for India, and it's Renuka in her return match to the World Cup striking in a very first over. That'll do her confidence a world of good.
0: Bilkul, ye pehla match Vishw Cup ka Renuka ke liye, aur ye gend thodi choti dali thi, jaan bujh kar fielder us jagah par lagaya tha. Gend ko pull kiya, seedhe haathon mein ye aasan sa catch, pehla wicket gawaya hai Bangladesh ne. बांग्लादेश की टीम की कोशिश यही थी कि जो रन रेट इस समय है वो थोड़ा सा परेशानी का कारण, दो ओवर हो गए सिर्फ 8 रन स्कोर बोर्ड पर, उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाने का प्रयास, उसमें गति देने का प्रयास, और उस गति को दे नहीं सकी इस मौके पर बल्लेबाज. और अख्तर आउट होने वाली बल्लेबाज वापस पवेलियन में गई है. रेणुका सिंह ठाकुर ने अपने पहले ओवर में भारत को पहली कामयाबी दिला दी है. बहुत महत्वपूर्ण मुकाबला. देवायन जैसा कह रहे थे कि दोनों टीमों ने अभी तक जो मुकाबले खेले दोनों को दो दो जीत मिली है, और पॉइंट टेबल में अंकों के लिहाज से दोनों टीमें बराबरी पर हैं. नेट रन रेट में भारत जरूर बांग्लादेश से ऊपर है. फिलहाल बांग्लादेश की टीम चौथे स्थान पर है नेट रन रेट के लिहाज से, भारत दूसरे स्थान पर है. तीसरे स्थान पर दक्षिण अफ्रीका की टीम है, नेट रन रेट में वो भारत से पीछे है. अंक इन तीनों टीमों के बराबर हैं. ऑस्ट्रेलिया की टीम ग्रुप ए में 4 में 4 जीत के साथ टॉप पर है. और अब नए ओवर की शुरुआत हुई है, पहली गेंद, और इस गेंद को सुरक्षात्मक तरीके से खेला पॉइंट की तरफ. बैकवर्ड पॉइंट पर गेंद को फील्ड किया गया. श्री चढ़नी आई हैं परिवर्तन के तौर पर शेफाली वर्मा की जगह. शेफाली ने भी पहला ओवर अच्छा डाला था, रन उन्होंने ज्यादा दिए नहीं थे, 3 रन दिए थे, लेकिन श्री चढ़नी सबसे भरोसेमंद गेंदबाज इस समय भारत के लिए. इस बार गेंद को ऑन साइड में खेलना चाहती थी, बल्ले का बाहरी किनारा लिया, गेंद ने थर्ड मैन की तरफ जा रही है, फील्डर भाग रही है, 1 रन लिया, दूसरे के लिए पलटी है, और 2 रन आए जरूर हैं लेकिन आत्मविश्वास भरे ये रन निश्चित रूप से नहीं है.
1: एब्सोल्युटली अ लिटिल बिट ऑफ अक्रॉस द लाइन हाइक फ्रॉम फिरदौस, बट जस्ट शोज द टेंटेटिवनेस और द एक्साइटमेंट, द एंग्जाइटी दैट द बांग्लादेश बैटर्स आर फीलिंग बिकॉज ऑफ दिस टाइट स्टार्ट बाय द इंडियन बॉलर्स.
0: और अपने इस ओवर को आगे बढ़ाते हुए श्री चढ़नी, उनकी ये गेंद इस बार ऑफ स्टंप पर खेल दिया सुरक्षित तरीके से. गेंद की उछाल बल्लेबाजों को परेशान कर रही है, इस बात में कोई संदेह नहीं है. थोड़ा बहुत टर्न भी देखने को मिला है, हालांकि बहुत ज्यादा टर्न अभी नहीं दिखा है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि जैसे जैसे पारी आगे बढ़ेगी स्पिनर्स के लिए और भी मददगार होती जाएगी ये पिच. मैनचेस्टर की अगली गेंद को इस बार फिर से सुरक्षात्मक तरीके से खेला, कोई रन नहीं. दबाव लगातार बनता हुआ बांग्लादेश के लिए, और उसी दबाव में पहला विकेट भी बांग्लादेश ने गंवाया क्योंकि रन नहीं आ रहे थे. अभी तक कोई चौका बांग्लादेश की तरफ से लगा नहीं है, तीसरा ओवर चल रहा है.
1: एब्सोल्युटली नो बाउंड्रीज एंड नो बाउंड्री बॉल्स, इवन द फील्डिंग हैज बीन क्वाइट टाइडी दिस फार फ्रॉम इंडिया.
0: और क्षेत्ररक्षण की बात भारत की हो भी रही थी, पिछले मुकाबले में 2 कैच छूटे थे और वहां से भारत मैच गंवाया था. हवा में इस बार गेंद, पीछे फील्डर, नीचे फील्डर, लेकिन ये मौका भारत के हाथ से जाता हुआ, 1 कैच छूटता हुआ, और फील्डर
1: यस्तिका
0: भाटिया, उन्होंने गेंद का पीछा किया था. विकेटकीपर खुद इस गेंद तक जाना चाहती थी लेकिन गेंद तक पहुंची नहीं, इस बार पुल करने का प्रयास था. पीछे फील्डर भागी तेज रफ्तार के साथ, विकेट कीपर और एक फील्डर के बीच थोड़ी सी बातचीत, लेकिन कैच वो पकड़ा नहीं जा सका. 12 इस समय बांग्लादेश के स्कोर 2-1 विकेट के नुकसान पर. अगली गेंद इस बार ऑफ स्टंप के बाहर, श्री चढ़नी की थोड़ी सी टर्न लेती हुई गेंद, और इसके साथ ही ओवर की समाप्ति. 3 ओवरों के बाद बांग्लादेश का स्कोर 12 रन एक विकेट के नुकसान पर।
1: या टाइडी स्टार्ट बाय द वर्ल्ड नंबर वन रैंक्ड वुमेन्स T20I बोलर रिसेंटली क्राउंड एन श्री चरणी ऑल्सो द मोस्ट विकेट्स दस फार इन दिस T20 वर्ल्ड कप 10 विकेट्स शुड हैव बीन 11 रियली बट यास्तिका भाटिया मेकिंग अ मील ऑफ दैट चांस हरसेल्फ अ फील्डर और रादर हरसेल्फ अ कीपर नॉर्मली मे बी दैट्स व्हाट प्लेड अ रोल इन हर ऑप्टिंग टू गो फॉर दैट कैच शी वॉज फील्डिंग एट स्क्वायर लेग एंड हेंस वॉज क्लोजर टू द बॉल बट इन द एंड डिडंट रियली जज इट टू परफेक्शन एट ऑल इन चेजिंग इट डाउन And Richa Ghosh went with her gloves. Maybe she would have been the better option to go on for that catch. But anyway, that chance has been missed. Juwaria Firdaus getting that lifeline at three. Now, Shobana Mustari has walked in at number three. She's an experienced player, 24 years of age. 65th match for her as she faces up to Renuka. The very first ball glided away on the onside. That single incidentally takes her along to 996 career T20I runs. If she gets four more, then she'll become the third Bangladeshi batter after her captain Nigar Sultana Jyoti and Farhana Hawk, who will also go across the 1000 mark. Renuka coming in for a second over. The first over was slightly wavered at times. Three wides in that, five runs in all, but also picked up a wicket. So that will definitely do her confidence a lot of good. 13 for one Bangladesh. As again she strays way down the leg side, Firdaus looking to whip it away but misses out entirely. It leads to yet another extra run, 14 for 1, as Renuka now concedes 7 from 1.1 overs. And Shobana Mustari, as I was mentioning, just about 4 runs away. She's had a bit of a lean run in this tournament, 4-4 and 22 not out in the previous match, but has that experience behind her. Has a highest score of 59 in T20Is, and she's come in ahead of the likes of Sharmeen Akhtar as well as the skipper Nigar Sultana, who's widely considered one of their best batters. This is driven down the ground, and this could go for the very first boundary. It is 4 runs.
2: Ye laga, aadha ka chauka.
1: Renuka having strayed in her line a few times, this time just pitching it up a little bit, and that's what allows Firdaus to just punch it way down the ground and pick up the first boundary, Dharmendra.
0: Yeah, bahut badhiya chauka. Seedhe balle se khela gaya samne ki taraf aur fielder ne prayas bhi kiya lekin pahunch nahi saki koi bhi fielder. Badhiya chauka aata hua Bangladesh ke liye.
1: 18 for 1 as Firdaus reaches 9 from 11 balls. Not always looked at her most comfortable. Also given a lifeline, of course, in the last over. But she has the potential to bother this Indian bowling lineup. Next ball, just back of a length, punched it straight towards covers, where it's fielded by Smriti Mandana, who's got herself in that position. So in this over, thus far, one wide, four, and then a dot ball. Renuka Singh coming back into the Indian 11 after a little bit of a hiatus. Hasn't played too many matches. If I recall correctly, last probably played against South Africa in April of this year when India had toured there. And because of that, she has been left out of the 11. But they've just gone back to her experience. The next ball again swinging in, just seaming in off the pitch. And then driven very nicely straight down the ground, but fielded by Shefali Verma. In fact, a bit too well because it went so fast to Shefali Verma at mid-on that there was no possibility of a run at all. So yet another dot ball, 3.4 overs completed, 18 for 1. Bangladesh winning the toss, electing to bat in this significant encounter for both teams. On a significant date, may I remind all the viewers, 25th June, synonymous with Indian cricket on two counts. We'll come back to that after the next ball. Again driven in the same direction, goes straight towards Shefali Verma. 1932, 25th June, of course, India's first ever test match, which was played in England. And then 1983, 25th June. That's a date that we cannot forget, Dharmendra.
0: Ji haan, aur aaj ka din bhi bada hai Bharat ke liye, to Bharat ke haath jeet aaye.
1: Absolutely. The last shot, in fact, just taking a little bit of a deflection of the non-striker Shobana, and that's what made it go a little quicker and faster straight towards Shefali. May well have found the gap otherwise. Three dot balls. Renuka will be looking to finish this over tightly. The next one is thwarted away but played on the onside, dropped by Radha Yadav. It goes for four.
2: Ye laga, aadha ka chauka.
1: India are being very, very generous with Firdaus. Dropped on 3 and now on 9 as Radha Yadav shells a pretty simple one at deep mid-wicket and it leads to a boundary. And that finishes the over at 22 for 1.
0: Yeah, this is a moment from Radha Yadav. If you remember the last match against Dakshin Africa, there were two catches from Radha Yadav and two important catches. उसकी वजह से उस मुकाबले में भारत को शिकस्त का सामना करना पड़ा था ये कैच छोड़ना भारत के लिए कितना भारी पड़ेगा ये जरूर देखना होगा राधा यादव थोड़े से मानसिक दबाव में निश्चित रूप से दिखाई दे रही हैं पिछले मुकाबले में वो अतिरिक्त खिलाड़ी के रूप में मैदान पर थी इस मैच में वो 11 में शामिल हैं उनको गेंदबाजी भी करनी है, लेकिन ये कैच भारत के लिए थोड़ा सा मुश्किल बढ़ा सकता है। दो कैच अभी तक भारत के छूट चुके हैं इस मुकाबले में। नए ओवर की शुरुआत, पहली गेंद और अर्शी चरणी की पहली गेंद को सुरक्षित तरीके से शॉर्ट कवर की तरफ खेला, कोई रन नहीं। बहुत हड़बड़ाहट में बांग्लादेश की टीम है नहीं, लेकिन मौके निश्चित रूप से दो दिए हैं, और अगर आप मौकों को लपकेंगे नहीं तो फिर आपके लिए मुसीबत बढ़ सकती है, मुश्किलें आपके लिए और ज्यादा हो सकती हैं। अगली गेंद को इस बार बाहर निकलकर ड्राइव करने का प्रयास, कवर में गई थी गेंद, हवा में थी थोड़ी देर के लिए, क्या ये मौका भी छूटा है? जी हाँ, एक और कैच छूटता हुआ, फील्डर वहां पर फिर से, अगर हम कहें तो एक रन जरूर लिया है। ये दी इस बार इस कैच को हवा में खेला था, सीधा एक आसान सा कैच था, मुश्किल ज्यादा नहीं थी, और एक और कैच जमीन पर टपकता हुआ।
1: आई थिंक दिस वन मे हैव बीन नंदिनी शर्मा एट कवर्स।
0: अगली गेंद इस बार ऑन साइड में खेलने का प्रयास, फिर से हवा में गेंद, फिर से कैच छूटा, एक और कैच छूटता हुआ भारत के लिए, चौथा ये मौका जब भारत ने कैच छोड़ा है, भारत के खिलाड़ियों ने कैच छोड़ा है, नंदिनी से यह कैच छूटा है।
1: Second successive ball and second successive catch which has gone to Nandini, and the ball is following around because she's been moved now to short third, and that's exactly where the ball went off the outside edge, and she made a good effort this time actually getting across to it, and having got there she'll be disappointed that it came out.
0: Ji haan, Bharatiya dressing room ke chehre bhi mayus, kyunki is tarah ke mauke nahi chhode ja sakte. Agli gend is baar long on ki taraf khela, challenge ke liye.
2: Ye laga abha ka choka.
0: फुल टॉस गेंद थी, उसका पूरा फायदा उठाया फिरदौस ने, और सीधे बल्ले से अपने सामने की तरफ खेला, सुरक्षित स्ट्रोक, कोई फील्डर वहां पर थी नहीं, और यह चौका एक और आता हुआ बांग्लादेश के लिए। स्कोर बढ़ता हुआ 27 एक विकेट के नुकसान पर। पांचवा ओवर चल रहा है, दो गेंदें अभी भी बची हुई हैं, और इस ओवर में दो मौके भारतीय फील्डर नंदिनी के हाथ से फिसले हैं। अगली गेंद इस बार स्वीप करने का प्रयास कामयाब हुई है, फील्डर हालांकि डीप में है, एक रन से ज्यादा मिलेगा नहीं, इस एक रन से स्कोर में और इजाफा होता हुआ बांग्लादेश के लिए, और स्कोर बढ़ता हुआ 28 एक विकेट के नुकसान पर। अगर चारों कैच पकड़ लिए गए होते अभी तक तो क्या स्थिति होती बांग्लादेश की।
1: Yeah, and especially the three in succession which have come after the last couple of overs, including two of them off Shree Chavani's over.
0: Agli gend is baar hawa mein phir se khela, halanki fielder ko beat karne mein kamyab hue hain, gend ja rahi hai third man boundary ki taraf challenge ke liye.
2: Ye laga abha ka chauka.
0: To is tarah se chauke ke sath 5th over ki samapti, aur is samay Bangladesh ka score 32 run ek wicket ke nuksan par.
1: Yes, for the first time, I think, in this innings, Bangladesh and their run rate going over 6 runs per over. So that's a little bit of a danger sign from the Indian perspective, because they've still got some batting up firepower to come. The likes of Sharmeen Akhtar, they've got the skipper, Nigar Sultana, they've got Ritu Moni, Shorna Akhtar, who can whack the ball around as well. Then some of the all-rounders, Rabia Khan, who can also wield the long handle. So India need to start taking those catches to begin with. Lots of chances shelled. Juwaria Firdaus will believe that she can go and buy a lottery ticket tonight, because she's been dropped 3 times by India. Dropped on 3 by Yastika Bhatia, dropped on 9 by Radha Yadav, and dropped on 13 by Nandini Sharma. Nandini Sharma also letting Shobhana Mustari get away when she was on 1 herself. So this partnership also beginning to look a little bit threatening. 24 runs realized between the two of them. And more importantly, over the last couple of overs, we are seeing the boundaries beginning to come. Some chances taken, especially by Firdaus, the way that she's going across the line, trying to exploit the gaps on the onside. We are still inside the power play. One more over of the power play to come. Only two fielders allowed outside the inner ring. And the Bangladeshi batters are looking to maximize those scoring opportunities as much as possible. India desperate for wickets. Who do they turn to? They have Deepti Sharma. But for the moment, they've gone back to Shefali Verma. And Shefali Verma, the very first ball is played away on the offside of the outside edge, and it will fetch a couple of runs for Firdaus, who moves along now to a personal tally of 20, and the Bangladesh score moves along to 34 in effect. Three bowlers used thus far. Shefali Verma in a second over, none for 5 at the moment. Renuka Singh Thakur, 2 overs, 1 for 14. And Shree Charani, 1 for 15, beg your pardon. And Shree Charani with none for 14. The next ball, outside off stump, smacked away, straight past the bowler for 4.
2: Ye laga, abha ka choka.
1: just outside off stump, and she was very quick to latch onto it. It was overpitched a little bit, and that's why she was very strong in smacking the straight down the ground. And with the mid-off inside the circle, it proved to be a safe shot, Dharmendra.
0: जी हाँ, निश्चित रूप से बहुत बढ़िया ये शॉट खेला था बिल्कुल खाली जगह में.
1: The next ball just outside off stump, looking to cut it away, very close to the outside edge as it is consumed by the gloves of Richa Ghosh. Richa thus far has done a good job, has come up with an indifferent performance in this tournament. Every now and then she plucks out some great catches, some terrific stumpings, but also tends to miss a few chances. And today, India don't want that to happen because they're already getting a lot of those from the outfielders. Straight on the stumps, this time played away on the offside, looking for a quick single, but very quick to pounce on the ball was Jemima Rodrigues, coming in from point and getting a little bit of support along with one of her teammates as well. Shefali Verma operating with two fielders on the onside. Deep mid-wicket is Radha Yadav and Smriti Mandana is fielding at long on. The next ball worked away on the onside. Deep mid-wicket should come into play. It's been played quite nicely, so it will only result in one. Firdaus was pushing hard, but Mustari was very quick to turn her down and tell her that let's keep it down to one. One ball left in the power play. It's been a tidy performance from Bangladesh, although India have missed so many chances, and that's proved to be their undoing in a sense. However, considering all of that, 39 for 1 is a good score. 7 runs already of this over. How do they try to finish off this final over in the power play? Shefali Verma just looking to make a few adjustments in the field, possibly a strong offside ring. There's a mid-off, there's a cover, there's a point as well as a backward point. This time pulled away on the onside, but there is a fielder in the deep. It goes straight towards Radha Yadav. Only a single conceded. 6 overs done. 40 for 1. The power play is over with Shefali's over producing 8 runs.
0: The power play Bangladesh ke liye kul milakar acha raha hai. एक विकेट सिर्फ गवाए हैं. 40 रन इन 6 ओवरों में बनाए हैं बांग्लादेश ने. हालांकि मौके अगर भारत ने भुनाए होते तो निश्चित रूप से स्थिति बांग्लादेश के लिए मुश्किलों भरी हो सकती थी, लेकिन फिरदौस ने जीवनदान का भरपूर फायदा उठाया. उन्होंने अभी तक 23 गेंदों में 25 रन बनाए हैं, 4 चौके लगाए हैं. बांग्लादेश की तरफ से अभी तक कोई छक्का आया नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर अच्छी बल्लेबाजी और अच्छी शुरुआत कही जा सकती है बांग्लादेश के लिए. शेफाली वर्मा का ये दूसरा ओवर था. कुल मिलाकर अभी तक उन्होंने 2 ओवर किए हैं, 11 रन खर्च किए हैं, 5.50 की औसत से रन दिए हैं, किफायती रही हैं. श्रीचरणी ने 2 ओवरों में 14 रन दिए. क्या उस छोर से गेंदबाजी में कोई परिवर्तन होगा जहां से श्रीचरणी अभी तक गेंदबाजी कर रही थी? उनका पिछला ओवर काफी अच्छा रहा था, जिसमें 2 मौके भारत के पास आए थे, हालांकि दोनों फिसल गए थे नंदिनी के हाथों से. नए ओवर की शुरुआत होने जा रही है. ये मुकाबला काफी अहम है दोनों ही टीमों के लिए. अगर बांग्लादेश की टीम इस मैच को जीतती है तो सेमीफाइनल में रेस उसका भी बना रहेगा, और अगर भारत की टीम इस मैच को जीतने में कामयाब होती है तो उसके 6 अंक हो जाएंगे और सेमीफाइनल की रेस में मजबूती से बनी रहेगी भारतीय टीम. दक्षिण अफ्रीका का भी आज मुकाबला होना है भारतीय समय के अनुसार रात 11 बजे से नीदरलैंड के साथ, और उस मैच में ऐसा माना जा रहा है कि फेवरेट है दक्षिण अफ्रीका की टीम. आसानी से वो मैच जीत सकती है और अंक तालिका में अपनी स्थिति और मजबूत कर सकती है. दिबायन
1: Absolutely, and for India, one believes that perhaps the crunch game will be the Sunday at Lord's when they face the Australians. And one thing's for sure, while Australia are a mighty team, history has shown that one team which has upset them a few times has been the Indians. So India need to perhaps just play a slightly braver brand of cricket. Thus far, they've seemed a little confused about the ideal 11, even today 2 changes. So if that continues, then that gives a little bit of an advantage to Australia. But I personally believe if they can rope in one more bowling option, that can do them a world of good. At the moment, they're playing an extra batter. In the initial matches, it was Bharti Fulmali. Since then, they've gone back to Yastika Bhatia. But if they drop one of those or both of those and play a bowler instead or a bowling all-rounder, then that just enables them to play Jemima Rodrigues at 3, Harmanpreet at 4, and then maybe go from there. Maybe have a Deepti Sharma or a Richa Ghosh at 5 and 6 respectively. And then the bowlers, all-rounders and the rest of them can get the runs.
0: Shayad ballebazon ki taraf se aatmavishwas abhi tak team management ko mila nahi hai. Agar hum मिडिल ऑर्डर की बात करें या उससे नीचे की बात करें तो उतना सफल अभी तक भारत का सफर रहा नहीं है. टॉप ऑर्डर ने अगर बल्लेबाजी की है तो भारत ने अच्छे स्कोर खड़े किए हैं, भारत को जीत मिली है, तो आत्मविश्वास कहीं ना कहीं इस मैच से भारत को वापस लाना होगा अगर सेमीफाइनल और आगे का रास्ता तय करना है, तो बहुत जरूरी है भारत के लिए मुकाबला हर लिहाज से। और अब नए ओवर की शुरुआत हो रही है। नंदिनी शर्मा गेंदबाजी के लिए आ रही हैं, 6 मैचों का अनुभव, 6 विकेट ही उनके नाम पर हैं और शिचरणी की जगह उनको मोर्चे पर लगाया गया है। 6 ओवरों में बांग्लादेश ने बनाए हैं 40 रन 1 विकेट के नुकसान पर। फिरदौस 25 रन बनाकर खेल रही है, 23 गेंदों का सामना किया है। स्ट्राइक पर मुस्तारी जिन्होंने 5 गेंदों में 7 रन बनाए। पहली गेंद को सामने की तरफ खेला सीधे बल्ले से और मिड ऑफ से जब तक फील्डर पहुंचे वहां पर शेफाली वर्मा, तब तक 1 रन लेने का मौका था। इस 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाजों ने अपना अपना छोर बदला। स्कोर हो गया 41 एक विकेट के नुकसान पर। 102.1 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली ये गेंद थी, बहुत ज्यादा रफ्तार थी नहीं लेकिन अपनी स्विंग से थोड़ा सा परेशान कर सकती है। हवा भी चल रही है इस समय मैनचेस्टर में। अगली गेंद को जरा ड्राइव किया कवर की तरफ, मिसफील्डिंग हुई है। 1 रन जहां पर नहीं होना चाहिए था वहां पर 1 रन हुआ है और इस 1 रन से स्कोर बढ़कर हो गया 42 एक विकेट के नुकसान पर। फील्डिंग का स्तर भारत का इस पूरे टूर्नामेंट में उतना अच्छा रहा नहीं है।
1: यस एंड टुडे दे बिगन वेल बट one just feels that it's probably been a cascading effect. Since that dropped catch, there have been a few errors creeping into the fielding.
3: The cricket commentary will continue after a short PIPA update. World Football Update from the BBC.
4: Hello, I'm Mike Perkins at the BBC Sports Centre with the latest World Cup news. South Africa is celebrating reaching the knockout stage of a men's World Cup for the first time. Their 1-0 win over South Korea saw them finish second behind co-host Mexico in Group A. South Korea must wait to find out if they'll progress as one of the best third-place sides. Scotland also ended up third after a 3-0 defeat to Brazil in Group C, so must wait to discover their fate. Debutants Curaçao face Ivory Coast. They picked up their first point against Ecuador thanks to goalkeeper Eloy Roy making 15 saves. That's the most saves in a 90-minute clean sheet at a World Cup. They play in one of 3 groups concluding on Thursday. In the other match in Group E, Ecuador must beat Germany to progress. Germany have already secured top spot in Group F. Sweden face Japan with Graham Potter's side looking to shake off their 5-1 defeat to the Netherlands. Sweden have 3 points, so aren't yet sure of going through to the last 32.
5: We've played 2 matches, and one we've won, one we've lost. It's not like everything is completely bad, but obviously we know we also have to improve, especially when we meet a team like Japan. The mood in the group is really, really positive. Everybody, I can tell, is ready to help. I've been really, really proud, I would say, of the players, how they've dealt with the situation and how they've dealt with the last results. And now we're ready to play again.
4: And in Group D, Australia will secure second place if they avoid defeat against Paraguay, while co-host USA are guaranteed top spot and can complete the group stage with a 100% record if they beat Turkey. And for more World Cup news from the BBC, go to bbc.com/football.
3: World Football Update from the BBC.
0: उम्मीदें इस मैच पर टिकी हुई हैं, बांग्लादेश की उम्मीदें इस मैच पर टिकी हुई हैं और ऑस्ट्रेलिया भी कहीं ना कहीं नजर टिकाए हुआ होगा क्योंकि वो 4 मैचों में 4 जीत के बाद सबसे ऊपर जरूर है लेकिन सुरक्षित पूरी तरह से अभी भी नहीं है। अगली गेंद को इस बार पुल करने का प्रयास, उछालते इस गेंद में लेकिन बीट हुई बल्लेबाज। और इसके साथ ही ओवर की समाप्ति, 7 ओवरों के बाद बांग्लादेश का स्कोर 47 एक विकेट के नुकसान पर।
1: 47 for 1 after 7 overs. Tidy start from Bangladesh and this partnership also looking quite good. 39 already realized between Juwari Afardos. Dilara Akhtar, the only batter to be dismissed, was caught by Sri Charani against a score of 4 when the bowler was Renuka. Since then, India have dropped 4 catches, 4 chances, which has probably cost them a few runs. Shobhana Mustari is looking good. She was dropped on 1 as well. And in the course of this innings, she's also become the 3rd Bangladeshi batter to cross the 1,000-run mark in T20Is for women. So a landmark achievement for her and a good decision to send her in, the experience of her at number 3. What's also interesting, Dharmendra, is that this entire Bangladesh 11 and the squad, in fact, is almost exclusively the batters are all right-handed. So that might explain the delayed arrival of Deepti Sharma, who now begins a fresh over, comes in for a first over in the 8th. Deepti Sharma is also chasing a milestone. If she picks up 1 wicket, then she will overtake Jhulan Goswami, the great Jhulan Goswami, as the bowler with the maximum international wickets across all formats. Currently tied with Jhulan Goswami at 355. She's also the highest T20 wicket taker in the women's game with 167. The first ball was played away on the onside. The second one, short of a length, pulled away. There's a fielder in the deep though, Smriti Mandana. And that just results in a single for Mostari, for Firdaus rather. So two singles from the first two balls of Deepthi Sharma in the eighth over of this innings. India desperately looking for some breakthroughs after that early wicket. They've been just pegged back a little.
6: এতক্ষণ আইসিসি ওমেন টি টোয়েন্টি ক্রিকেট টুর্নামেন্টের খেলা দিল্লি কেন্দ্র থেকে রিলে করে শোনানো হলো আকাশবাণী মিলনিয়া। কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রথমে কলকাতা কেন্দ্র থেকে বাংলা সংবাদ এবং পরে আগরতলা কেন্দ্র থেকে স্থানীয় ককবরক এবং বাংলা সংবাদ রিলে করে শোনানো হচ্ছে।

0: এতক্ষণ প্রথমে কলকাতা কেন্দ্র থেকে বাংলা সংবাদ এবং পরে আগরতলা কেন্দ্র থেকে স্থানীয় ককবরক এবং বাংলা সংবাদ রিলে করে শোনানো হলো। আকাশবাণী বিলোনিয়া, কিছুক্ষণের মধ্যেই আইসিসি ওমেন্স টি-20 ক্রিকেট ওয়ার্ল্ড কাপ প্রতিযোগিতার ভারত বনাম বাংলাদেশের মধ্যে খেলার ধারা বিবরণী দিল্লি কেন্দ্র থেকে রিলে করে শোনানো হচ্ছে।
1: Little smile, wry smile from her, a smile from Deepthi as well. This is good to see the match being played in exceptional spirits. Bangladesh have been a very persistent rival for the Indians, even though the head-to-head is skewed in India's favour, but they've given India a few anxious moments across formats in recent years. The next ball punched down the ground and goes straight towards Jemima Rodrigues, who's fielding at long on. That single takes the score along to 101 for 3. It's another single for Nigar Sultana Jyoti, who moves along to 30, and it's also been called a no ball. So overstepping from Deepthi Sharma leads to a free hit with Sharmin Akhtar on strike. 102 for 3 now, 15.1 overs. Just undoing the good job from that first ball which Deepthi had bowled so beautifully. Skips down the wicket, strikes it down the ground, but there is a fielder in the deep. It is Jemima who does quite easy picking up for that particular shot. Would have been better off perhaps trying to make room and looking to go inside out, but just doesn't have that kind of strength at the moment, Sharmin. 103 for 3, 15.2 overs bowled. Deepthi into her third over, no wicket thus far for 11, looking for that elusive 356th international wicket, which will take her one clear of Jhulan. Next ball, back of a length, punched away towards deep mid-wicket, where Smriti Mandana does the cleaning up. Now, just to remind a lot of listeners that in women's cricket, unlike in men's cricket, it's a maximum of 4 fielders outside the inner ring. So that is the maximum that they can have, which means that there are 5 fielders mandatory inside the 30-yard circle at all times, even in these post-power play overs. The next ball worked away on the onside with the turn, and it will be fielded at deep backward square leg, will fetch a single for the skipper, and that will take the score along to 105 for 3. 16th over in progress. Certainly they will be looking to launch in these last 4 overs which are coming up after this, and that is what they are slowly building up towards. The skipper to play a big role in that. Sharmin Akhtar currently on 6, Nigar Sultana Jyoti, the skipper, on strike, as Deepthi changes their angle, comes round the wicket, and yet again played away on the offside, but straight towards Nandini Sharma, who's fielding at point now. No possibility of a run. A very tidy comeback from Deepthi after that no ball. In spite of that, she's hardly given any runs in this over. Just the 4 singles and a no ball combining for 5 runs in this over. Comes in one final time. It's Jyoti who skips down the wicket and works it away towards Jemima at long on to pick up a single. 106 for 3 after 16 overs. 6 runs from that Deepthi Sharma over.
2: Kul milakar, ye over, kahein to Deepthi Sharma ka kaafi कसा हुआ रहा। हालांकि एक नो बॉल थी, फ्री हिट भी थी, लेकिन उसका कुछ खास फायदा मिला नहीं बांग्लादेश की टीम को। आज गेंदबाजी की शुरुआत भारत की तरफ से शेफाली वर्मा ने की थी और उन्होंने कुल मिलाकर 2 ओवर किए हैं 11 रन खर्च करके। कोई सफलता उनको नहीं मिली, लेकिन अच्छी गेंदबाजी उन्होंने भी की। पार्ट टाइम गेंदबाज हैं, हालांकि खुद को नियमित गेंदबाज मानती जरूर हैं, लेकिन बहुत ज्यादा मौके उनको गेंदबाजी के मिलते नहीं। अब तक भारत ने इस मैच में 6 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया है। शिफाली वर्मा, रेणुका सिंह, श्रीचरणी, नंदिनी शर्मा, दीप्ति शर्मा और राधा यादव। नए ओवर की शुरुआत और पहली गेंद पर ही भारत को सफलता मिली है। राधा यादव ने बल्लेबाज को निमंत्रण दिया आगे निकलने का। इस मौके पर कप्तान निगार सुल्ताना क्रीज से बाहर निकली बड़े स्ट्रोक के लिए, पूरी तरह से लाइन को चूकी और विकेट के पीछे ऋचा घोष ने कोई गलती नहीं की। स्टंप बिखेर दिया, गिल्लियां बिखेर दी, फ्लाइट से पूरी तरह से इस मौके पर चकमा खा गई और भारत के लिए 4th सफलता एक अहम मौके पर।
1: Yeah, this was that intent, that aggressive intent shown by the skipper, looking to skip down the wicket, but Radha may have spotted that, just fired it in a little quicker, a little wider, and that's what made the difference. She missed it altogether, sweeping it under the bat, and she goes for 32 from 27. It's been a quality innings, but the first mistake has led to her wicket, and it's a smart bit of keeping and stumping as well from Richa Ghosh. And now that she is gone, a lot of responsibility now on the remaining batters to try and get them to somewhere in the vicinity of 140. Even a 135 from here looks like it could be a good total. But this has probably meant the difference between 140 and 150. Had Nigar Sultana Jyoti been out there, the chances of that extra 15 or 20 runs would always have loomed over the Indians.
2: निश्चित रूप से यहाँ पर एक मौका जरूर इस विकेट के बाद बांग्लादेश ने गंवाया है. कप्तान का आउट होना परेशानी का कारण बन सकता है और वो जो रन है 10 से 15 रन पीछे रह सकती है बांग्लादेश की टीम. और अगली गेंद को इस बार नई बल्लेबाज ने ऑन साइड में खेला एक रन के लिए. शोरना अख्तर नई बल्लेबाज आई है और इस एक रन से अपना खाता खोला. स्कोर बढ़ता हुआ 107 रन चार विकेट के नुकसान पर. शर्मिन के ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी अब आन पड़ी है. इस बार उन्होंने लेग स्टंप की तरफ हटकर थोड़ा सा स्ट्रोक के लिए जगह बनाई थी. खेला इस गेंद को स्वीपर कवर की तरफ. एक रन इस मौके पर उनको मिला है और इसके साथ बढ़ता हुआ स्कोर 108 रन चार विकेट के नुकसान पर. राधा यादव की अच्छी गेंदबाजी अभी तक भारत के लिए सबसे सफल गेंदबाज. हालांकि एक कैच आज भी उनसे छूटा था लेकिन उस दबाव से बाहर निकलते हुए दो सफलताएं अब तक अर्जित की. अगली गेंद को इस बार लॉन्ग ऑन की तरफ खेला. एक रन दूसरे रन के लिए पलटना चाहती थी लेकिन फील्डर तेजी के साथ इस गेंद पर हावी हुई. दूसरे रन की संभावना को तत्काल समाप्त किया. इस एक रन से स्कोर हो गया 109 रन चार विकेट के नुकसान पर. राधा यादव को थोड़ी सी मदद मिली है. जब गेंद को उन्होंने हवा में छोड़ा है फ्लाइट दी है तो टर्न भी थोड़ी बहुत उनको हासिल हुई है. इस बार लगभग फुल टॉस गेंद ड्राइव किया. एक रन और आता हुआ बढ़ता हुआ स्कोर 110 रन चार विकेट के नुकसान पर. इस ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने सफलता अर्जित की थी और अभी तक स्कोर 110 हुआ है. एक गेंद अभी भी इस ओवर की आनी बाकी है. इस गेंद को सुरक्षात्मक तरीके से हल्के हाथों से खेला. एक रन के लिए भागी गेंदबाज खुद पहुंची गेंद तक. थ्रो किया स्टंप्स की तरफ लेकिन स्टंप पर गेंद टकराई नहीं. सुरक्षित अपनी क्रीज में दोनों बल्लेबाज. इसके साथ ही 17वें ओवर की समाप्ति. स्कोर 111 है चार विकेट के नुकसान पर. रन रेट इस समय बांग्लादेश का 6.53 का. और ये जो विकेट गंवाया बांग्लादेश ने पिछले ओवर में कप्तान का ये कुछ रनों में कटौती कर सकता है बांग्लादेश के लिए.
1: इट सर्टनली कुड एब्सोल्युटली बट लेट्स नॉट फॉरगेट शोरना अख्तर इज द प्लेयर इन फॉर्म इन द मैच अगेंस्ट पाकिस्तान. स्कोर्ड 39 नॉट आउट फ्रॉम 22 बॉल्स. जस्ट 19 इयर्स ऑफ एज. प्राइमरीली प्लेज एज अ लेग स्पिनर बट हैज द एबिलिटी टू हिट इट लॉन्ग एंड वाइड. And that's what the Indians must be wary of. And who knew? Radha Yadav, restored to the team today, is currently the best bowler with two wickets against her name. Those wickets coming of Shobana Mustari for 22 and Nigar Sultana Jyoti, the skipper, for 32. One of them caught by Deepti Sharma and the other stumped by Richa Ghosh. So India, in spite of some lapses in the field, now seem to have got their house in order as Deepti Sharma now comes in for her third. For a fourth and final over, the 18th of the innings. Perhaps we'll be looking to finish with seam then, with one over each left for Renuka as well as Nandini after this. This one was played in towards deep mid-wicket, which picks up another single and takes the score with that particular single along to 112 now for those loss of four wickets that they have lost in the past. 112 for 4, 17.1 overs bowled. The maximum that they've ever managed against India was 142, but that was chasing one of those two victories or one of those three victories that they have had against the Indians in this format. That was in the 2018 Women's Asia Cup. Next ball played away on the onside, picks up a single. The boundaries certainly have dried up, almost 4 overs since the last boundary was scored, and that's meant that the Indian discipline has been in evidence, especially from the bowlers, and their spinners in particular doing a very good job. Deepti Sharma into her fourth and final over, none for 16 from her. Radha Yadav 2 for 15 from her 3 overs. And N. Sri Charani 3 tidy overs for 18 runs, no wickets taken. Next ball played away on the onside, but Deepti is very quick across the turf. Very good fielder as it is, but especially of her own bowling. Gets across to it and makes sure that there's no possibility of any runs. If there are no wides or no balls, there are still 15 balls to come. And how well can Bangladesh maximize this? Oh no, in the meantime, another no ball signaled, which will mean that despite a dot ball, it is a free hit now for Shorna Akhtar. And she needs no second invitation, but this will probably just help her free herself up a little bit more. The youngster, the teenager, 19 years of age, takes strike. Skips down the wicket, plays it away on the offside, and it's just got in through the infield, and this is running away for a four after a long time.
3: Ye laga, abha ka choka.
1: India have bowled a few no balls and this is the first one perhaps which has been properly punished.
2: बिल्कुल और खास तौर पर दीप्ति शर्मा का ये दूसरा नो बॉल था और इस मौके पर जरूर फायदा उठाने में बांग्लादेश की बल्लेबाज कामयाब रही हैं.
1: Shorna Akhtar is a danger woman in this situation because she can wield the long handle effectively as she showed. She was able to access the offside with a strong ring of fielders. This time looking to go leg side with the turn and plays it away on the onside. Wants to, but very quick fielding yet again from the Indians. N. Sricharani was very quick to get across from square leg. And that single takes the score along to 119 in the process. 119 for 4 at the moment. And thanks to that no ball, this is turning out to be a remarkably good over from the Bangladeshi perspective because they've already picked up 8 runs and there are still 2 balls, legal balls to come. Deepthi round the wicket, worked away on the onside, almost returning to her on the bounce. And then she whips in a throw at the striker's end, almost as if to tell Sharmeen Akhtar that there's no getting away from me. Let's not think about pinching a single of that one. Last ball of the spell from Deepthi. Remember, poised on 355 international wickets, needs that one wicket to move ahead of Julan Goswami, but looks like the legend will hold on to that record, joint record, for the moment, unless something happens of this last ball. Deepthi comes down the wicket, just past Deepthi, and this has been struck nicely enough, but it won't run away for four because Jemima Rodriguez is very good to clean up and restrict the scoring to just one. 120 for four, 18 overs bowled, just 2 overs to come.
2: तो 2 ओवरों की बल्लेबाजी और बांग्लादेश की टीम को करनी है और इस समय बांग्लादेश की टीम अच्छी स्थिति में दिखाई दे रही है. रनों के लिहाज से अगर बात करें 120 रन बना लिए हैं 4 विकेट के नुकसान पर. दीप्ति शर्मा को इस मैच में कोई भी विकेट नहीं मिला. 4 ओवरों की गेंदबाजी उन्होंने कर ली है जो अधिकतम गेंदबाजी की जा सकती है. 23 रन खर्च किए, कोई सफलता उनके खाते में आई नहीं. इकॉनमी उनकी 5.75 की रही. राधा यादव सबसे सफल गेंदबाज, 3 ओवरों में 15 रन देकर उन्होंने 2 विकेट लिए हैं. लेकिन अब जो ये नया ओवर होगा, 19वां ओवर बांग्लादेश की पारी का, ये जिम्मेदारी किसके कंधे पर होगी? क्या राधा यादव पर दाव लगाएंगी कप्तान हरमनप्रीत कौर? ये देखना दिलचस्प होगा इस समय, क्योंकि अगर हम गेंदबाजों की बात करें तो उसमें रेणुका सिंह ठाकुर का ओवर भी बचा हुआ है और नंदिनी शर्मा का भी ओवर बचा हुआ है. तो इंतजार इस बात का कि गेंदबाजी किसके हाथों में सौंपी जाती है. शर्मिन अख्तर 12 गेंदों में 10 रन बनाकर खेल रही हैं और शोरना अख्तर ने 7 गेंदों में 9 रन बनाए हैं. कुछ ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की आवश्यकता इस समय बांग्लादेश के लिए अगर उनको स्कोर को 230 से 240 के बीच में कहीं पहुंचाना है. 250 का लक्ष्य अब थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है क्योंकि यहां से 2 ओवरों में 30 रन बनाने होंगे अगर 250 तक पहुंचना है और 15 रन प्रति ओवर, थोड़ा सा मुश्किल तो जरूर लग रहा है.
1: Absolutely, it looks like it will probably be in the vicinity of 130-135 at the moment, and that will be a good total considering the strength of Bangladesh lies in its spinners. However, India has a power-packed batting lineup as well, make no mistake. In that top 6 or top 7, there are at least 6 players who have more than 1000 runs in this format.
2: और नए ओवर की शुरुआत, और पहली गेंद पर ही भारत को क्या यहां पर

0: कामयाबी मिली है, अगली गेंद की तैयारी, और इस गेंद को खेला है ऑन साइड में एक रन के लिए 122 पांच विकेट के नुकसान पर। तेजी के साथ ये रन पूरा किया, थोड़ी सी मिसफील्डिंग जरूर हुई थी लेकिन तेजी के साथ रन के लिए भागी 122 सात विकेट के नुकसान पर। 19वें ओवर की ये दूसरी गेंद, हवा में इस गेंद को उठाकर खेला है, फील्डर वहां पर थी लेकिन अनुमान उतना सही था नहीं। एक रन और फिर दूसरे रन के लिए भी तेजी के साथ पलटी, दो रन, और इन दो रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 124 पांच विकेट के नुकसान पर। राधा यादव के हाथ में ही गेंदबाजी है, राधा की अगली गेंद को इस बार खेला है ऑन साइड में, फील्डर पहुंच पाएंगी क्या? नहीं, जी नहीं, इस मौके पर नहीं पहुंच पाए, चार रन आता हुआ।
1: ये लगा आभा का चौका।
2: Yeah, it looks like an interesting decision because from the look of things, Sharmeen Akhtar has been retired out. So that has meant that Ritu Moni has come in and she's been more than effective. 8 of 3 balls. So perfect start for this little cameo from Ritu.
0: जी हाँ, तो एक विकेट हम कह सकते हैं कि बांग्लादेश ने गेंदबाज के जरिए नहीं गंवाया बल्कि रिटायर्ड आउट हुई हैं बल्लेबाज। अगली गेंद और इस बार स्टंप्स पर जाकर सीधी टकराई है गेंद, एक और सफलता इस समय राधा यादव के लिए, भारत के लिए एक और कामयाबी, और बांग्लादेश ने इस बीच अपना छठा विकेट गंवाया।
2: राधा फायरिंग इट इन, शी इज डन दिस वेल, शी इज एक्चुअली स्टक टू दिस फुलर लेंथ, ऑलमोस्ट अ ब्लॉक होल डिलीवरी, एंड रितु मोनी वॉज जस्ट लुकिंग टू मेक सम रूम एंड एक्सेस द ऑफ साइड, बट एज अ रिजल्ट ऑफ द एक्यूरेसी ऑफ द बॉल, इट्स द ओल्ड डिक्टम, यू मिस आई हिट, एंड दैट्स एक्जैक्टली वॉट हैपन्ड, अ लिटिल बिट ऑफ टर्न एंड दैट पुट पेड टू ऑल होप्स ऑफ रितु, बट शी इज डन अ गुड जॉब, शी इज स्कोर्ड 8 of 4 एंड इट्स जस्ट द काइंड ऑफ फिनिशिंग किक विच दिस बांग्लादेश इनिंग्स नीडेड एज द 6 विकेट फॉल्स इवेंचुअली फॉर 128।
0: तो रितु मुनी इस गेंद को यॉर्क करा बैठी और अपना विकेट उन्होंने गंवाया है। बहुत जोरदार वापसी भारत की कुल मिलाकर, हालांकि रन पिछले 5 ओवर में बांग्लादेश ने तेज गति के साथ बनाए हैं, 42 रन बनाए हैं, 3 विकेट भी गंवाए हैं, इस वजह से थोड़ा सा दबाव बढ़ा है बांग्लादेश के ऊपर। क्या लक्ष्य होगा भारत के लिए इस मुकाबले में, यह देखना दिलचस्प होगा। शोरना अख्तर अभी भी मैदान पर मौजूद हैं, 7 गेंदों में 9 रन बनाए हैं, नई बल्लेबाज राबिया आई है मैदान पर, राधा यादव की गेंदबाजी का सामना करेंगी, 3 विकेट ले चुकी हैं राधा यादव। अगली गेंद इस बार स्वीप किया है इस गेंद को बैकवर्ड स्कारले की तरफ, फील्डर पीछे मौजूद हैं, एक रन जरूर मिलेगा और इस एक रन से खाता खोला नई बल्लेबाज राबिया ने, और स्कोर बढ़ता हुआ 129 6 विकेट के नुकसान पर। अच्छी बल्लेबाजी जो एक लक्ष्य माना जा रहा था कि हो सकता है इस मैदान पर कठिन 130 135 के आसपास का, उस तरफ तो बांग्लादेश की टीम पहुंच गई है। उनकी गेंदबाज कितनी प्रभावी रहेंगी भारतीय टीम की मजबूत बल्लेबाजी के खिलाफ, यह देखना होगा। इस बार क्रीज से बाहर निकलकर इस गेंद को हवा में खेला था, मिस फील्डिंग या कहीं की गेंद तक पहुंच नहीं सकी, 4 रन।
1: ये लगा आभा का चौका।
0: मिड ऑफ पर जो खिलाड़ी मौजूद थी, लगभग उनके हाथों में गेंद पहुंच गई थी, डाइव जरूर लगाई इस गेंद के पीछे लेकिन पहुंच नहीं सकी, लगभग उनकी उंगलियों को छूते हुए गेंद पहुंची 4 रन के लिए।
2: And this is why somebody like Shorna Akhtar is so useful for these particular situations, because she can be unpredictable as a batter. We've seen 2 of those boundaries in that similar position, just coming down the wicket and then making sure that she pierces the offside field with a lot of power. And it was that power and the placement which completely foxed Deepti Sharma, who was fielding at that mid-off position, diving away to her left but in vain. So Radha Yadav finishes her 4 overs, outstanding effort from her, 3 for 28 from her 4 overs. The other bowlers to have bowled out Deepti, none for 23 from 4. And apart from that, Nandini, N. Sricharani, Renuka, all with 3 overs against their name, and Shefali Verma with 2. So the big question will be who comes back for that final over. Maybe Sricharani, considering she has been the form bowler. And indeed, the ball has been handed to her, but it also hands the opportunity to the Bangladeshis to perhaps go for a few big shots against spin. It's Rabia, who herself is a leg spinner, now goes for the sweep of the very first ball, nails it straight towards Radha Yadav, fielding at deep backward square leg. 1 of the first over, first ball of the last over. 134 for 6, Rabia on to 2 from 2 balls and brings Shorna Akhtar back on strike, 13 from 8 inclusive of those 2 outstanding boundaries that we saw right through the offside. 6.99 the current run rate, they'll be quite pleased with it, Bangladesh.

0: कप्तान निगार सुल्ताना के 32 रन और ओपनिंग बैटर फिरदौस के 33 रन की बदौलत बांग्लादेश ने भारत को लक्ष्य दिया है 137 रनों का। नमस्कार, मैं हूं मुदिता और मेरे साथ है मेरे को होस्ट दर्पण टिकिया
1: और हमारे साथ एक्सपर्ट्स का एक पैनल मौजूद है। हमारे साथ पूर्व भारतीय क्रिकेटर चेतन शर्मा मौजूद है। चेतन, बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर आपका।
2: धन्यवाद।
1: विजय भैया हमारे साथ मौजूद है जो एक और पूर्व भारतीय क्रिकेटर है और आजकल आपको कोचिंग के रूप में एक बतौर एक कोच T20 सर्किट में बड़े सक्रिय नजर आते हैं, कॉमेंटेटर है, ब्रॉडकास्टर है और आज हमारे एक्सपर्ट पैनल में मौजूद है। विजय बहुत बहुत स्वागत आपका।
3: शुक्रिया।
1: और साथ साथ जाने माने खेल पत्रकार शशांक शेखर भी हमारे साथ मौजूद है। शशांक बहुत बहुत स्वागत।
4: धन्यवाद।
1: सो 136/8 इज व्हाट बांग्लादेश हैव मैनेज्ड। चेतन, सबसे पहले आपके तरफ, योर फर्स्ट रिएक्शंस टू दिस स्कोर एंड हाउ द इनिंग्स पैंड आउट।
2: देखिए, अगर आप बात करें, बीच में एक आधा बॉलर तो ऐसा होता है जो रन ज्यादा लौटाता है। अगर आप बात करें, नंदिनी काफी एक्सपेंसिव आज रही, लेकिन जैसी फील्डिंग भारतीय टीम की थी, अगर आप 136 की बात करें, 137 का टारगेट है, ये कम से कम 115-120 के आसपास का टारगेट होता है अगर सारे कैचेस पकड़े जाते हैं। देखिए, कैचेस विन मैचेस, ये हर समय कहा जाता है, कैचेस ही हैं, विकेट्स गिरेंगी, रनों पे अंकुश लगेगा। तो आज मुझे लगता है कि भारतीय टीम अपनी फील्डिंग से बिल्कुल नाखुश होगी। जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी भारतीय टीम ने कैचेस छोड़े थे, हमने देखा नतीजा क्या हुआ और आज हमने कैचेस छोड़े हैं। और कोई एक दो कैचेस नहीं, मैं कहता हूं पूरा बैग भर के आज कैचेस छोड़े हैं। एक हो मतलब चार गेंदों में आपने तीन कैचेस छोड़ दिए, तो वो कहीं ना ड्रेसिंग रूम में चीजें जाती हैं, वो आपको आपके बैक ऑफ योर माइंड रहती है। जिसने कैच छोड़ा वो अगर बल्लेबाज है तो उसको वो चीजें अफेक्ट करती है। लक्ष्य 136 रन, 137 का टारगेट, भारतीय टीम आराम से इसको पूरा कर ले।
0: जी बिल्कुल, ड्रॉप कैचेस भारतीय टीम के लिए एक बार फिर से चिंता का विषय है। लेकिन विजय, एक जो पॉजिटिव आज देखने को मिला है वो है राधा यादव की वापसी। अपने पहले ही मैच में उन्होंने तीन विकेट, वो भी तीन इंपॉर्टेंट विकेट, पहला शोभना मुस्तारी का, उसके बाद कप्तान निगार सुल्ताना का विकेट और फिर बाद में रितु मोनी का विकेट। शानदार कमबैक,
3: बहुत ही बढ़िया कमबैक। और आई थिंक ये एक ऐसी टीम है जिसके खिलाफ उनका प्रदर्शन हमेशा बहुत बढ़िया रहता है और इसी वजह से शायद जो भारतीय थिंक टैंक है उन्होंने ये सोचा होगा कि आप एक उस खिलाड़ी को जिसका कॉन्फिडेंस एक ऑपोजिशन के खिलाफ बढ़िया रहता है उनको आप ये मौका दें। लेकिन एक और चीज़ की फिर से यहाँ पर पुष्टि हुई है कि एक स्पिनर को खिलाया गया इस मैच में जो इस टूर्नामेंट में उनका पहला मैच है, वो आके अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। आप बॉलिंग कार्ड की तरफ नजर डालेंगे तो दो मीडियम पेसर्स आपके आपको वहां दिखेंगे जिन्होंने अपने चार ओवर पूरे नहीं किए। तो जो चिंता का सबब आपके लिए बना हुआ है, आज वो प्रेशर जो आप हम बात कर रहे हैं वो पहले छह ओवरों में बहुत बढ़िया बैटर्स ने जो थे बांग्लादेश के, उन्होंने भारतीय टीम के ऊपर डाला। मुझे लगता है कि अगर आप मैच शुरू होने से पहले उन्हें इतने रन देते तो शायद वो ले लेते, लेकिन एक सिचुएशन ऐसी थी जहां पर वो ये डिसअपॉइंटेड होंगे कि उन्होंने 150 का आंकड़ा पार नहीं किया।
1: और इसी चीज की हम चर्चा पहले प्रोग्राम में भी कर रहे थे। हम अपने श्रोताओं को बता दें कि 16 खिलाड़ियों का इस्तेमाल भारतीय टीम अभी तक इस टूर्नामेंट में कर चुकी है। 15 का स्क्वाड होता है, श्रियंका पाटिल चोट के चलते बाहर हो गई, 16 खिलाड़ियों का प्रयोग भारतीय टीम कर चुकी है। और शशांक, हमने देखा कि कोई भी ऐसी टीम नहीं है जिसने

0: ने 15 के 15 खिलाड़ी अभी तक इस टूर्नामेंट में इस्तेमाल किए हों, कहीं ना कहीं वो दिखाता है कि शायद अभी भी हम खोज कर रहे हैं उस परफेक्ट कॉम्बिनेशन की।
1: डेफिनेटली बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। इससे ये भी पता चलता है कि प्रिपरेशन के लेवल पे कुछ कमियां रह गई थी, सेलेक्शन और प्रिपरेशन और एक वेल इंटीग्रेटेड विजन के साथ इस टूर्नामेंट में हम शायद नहीं आ पाए, या पहले मैचेस में खिलाड़ियों का प्रदर्शन जो था उम्मीद से नीचे रह गया। तो ये तय बात है कि आप इतने सारे खिलाड़ियों को खिला रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं, फिर वापस ला रहे हैं, मिक्स एंड मैच कर रहे हैं, तो एक तो खिलाड़ियों का आत्मविश्वास भी घटता है, दूसरा कि वो एक जो 11 खिलाड़ियों का कॉम्बिनेशन होता है जो सब एक साथ टीम में मैदान में उतरती हैं और फिर खेलती हैं, वो भी कई बार वो ब्रेक होता है। तो कुल मिलाकर के ये कहीं से भी आदर्श स्थिति नहीं है और चैंपियन टीम्स इस तरह से तो डेफिनेटली नहीं उतरती हैं मैदान में।
2: जी चेतन, आपने बात करी क्योंकि ड्रॉप कैचेस हमारी फील्डिंग की, लेकिन तारीफ करनी होगी बांग्लादेश की कप्तान निगार सुल्ताना की भी। कई सारे रिकॉर्ड्स हैं T20 में उनके नाम, बांग्लादेश के लिए सबसे ज्यादा मैचेस खेलने का रिकॉर्ड उनके नाम है, सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड भी उनके नाम है, और T20 में शतक जड़ने वाली पहली बांग्लादेशी खिलाड़ी भी हैं वो।
3: देखिए, आज 32 रन बनाए और अगर हम उनका स्ट्राइक रेट की बात करें तो 118 के स्ट्राइक रेट से जब आप रन बनाते हैं वहां से आप अनुमान लगा सकते हैं मिडल ऑर्डर की तरफ से रन बने हैं। देखिए, हर समय कहते हैं कि अगर ऊपर से अगर आपको रन ना मिले, जैसे पहली विकेट 8 रन पर गिर गई थी, उसके बाद आपको एक स्टेबिलिटी की जरूरत थी, साझेदारियों की जरूरत थी, साझेदारियों को आप बुनेंगे तभी आप मैच में आगे जा पाएंगे। और आप बांग्लादेश की बैटिंग देखें, नंबर 2, 3, 4 सबने आके रन बनाए हैं, बेशक 33, 22, 32, तो अगर आप उस स्थिति में टीम को लाकर खड़ा कर देते हैं, जैसे विजय ने भी कहा कि 14 रन 15 रन 150 साइकोलॉजिकल आपके मतलब जहन में चीज चलती रहती है कि 150 का टारगेट है, बट 137 जो चेज करना है वो भी चीजें इतनी आसान होगी नहीं। देखिए, बनाना पड़ेगा, उन्होंने रन ऑन बोर्ड लगा दिए हैं, आपको करने पड़ेंगे और चेज हर समय प्रेशर में चीजें आसान नहीं होती। तो लेट्स होप एक अच्छी साझेदारी ऊपर से पन पे अगर आप एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे मिडिल ऑर्डर के लिए, यू विल डेफिनेटली विन दिस गेम।
4: मैं एक बार ये चीज ऐड करना चाहूंगा, आपने बांग्लादेशी कप्तान के बारे में बात करी, कुछ लोग कप्तान होते हैं और कुछ लोग नायक होते हैं, ये उनमें से हैं। इनकी तरफ अगर आप देखेंगे तो इनका रोल सिर्फ वही नहीं है जो फील्ड में नजर आता है, इनका रोल फील्ड के बाहर भी है। कुछ ऐसे खिलाड़ी रहते हैं जो आप जिनको आप आदर्श मानकर वो इंस्पायर करते हैं। तो अगर बांग्लादेश वुमेन क्रिकेट के बारे में आप बात करेंगे तो ये एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने बहुत सारे लोगों को, बहुत सारी यंग लड़कियों को वहां पर इंस्पायर किया है इस गेम को खेलने के लिए। तो इनका जो कद है वो और ज्यादा बड़ा है उनके ड्रेसिंग रूम के अंदर, और वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर भी जब आप बात करते हैं कुछ नायकों की तो इनका वहां जिक्र होता है, ये उस तरीके की खिलाड़ी है।
2: जी, नायकों पर हम फिर से आएंगे, लेकिन उसके पहले हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं। अपना नाम बताएं और आप कहां से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी, अपना सवाल पूछे।
0: जी, तो भारत ने कैच ड्रॉप किए, लगातार ये चर्चा का विषय है। और शशांक, आपकी तरफ आऊंगा मैं, पहले 6 ओवर में हमने देखा 4 कैच ड्रॉप हुए, पाकिस्तान के खिलाफ भी 3 कैच ड्रॉप हुए थे। कैसे देखते हैं आप इसको, और ऐसे में फील्डिंग कोच की भूमिका को कैसे देखते हैं?
1: ये बड़ा ये बड़ा आश्चर्यजनक है कि एक भारत की टीम डेफिनेटली 3-4 जो बड़ी टीम्स हैं महिला क्रिकेट में वर्ल्ड में, उनमें से एक टीम है, इस प्रकार की फील्डिंग का प्रदर्शन जो है, मुझे लगता है कि पहले भी कैचेस छूटते हैं मैचेस में और मिस फील्डिंग्स होती है, लेकिन कंसिस्टेंटली इतना ज़्यादा खराब प्रदर्शन, साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी राधा यादव जो हमारे वन ऑफ द बेस्ट फील्डर्स हैं।

0: दो कैच छोड़े थे और आज भी उन्होंने एक आसान सा कैच छोड़ा, तो और बहुत सारी मिसफील्डिंग्स हुई। तो इससे ये क्यों हो रहा है, ये एक प्रश्नवाचक चिन्ह तो लगता ही है फील्डिंग कोच पे। लेकिन इतने सीनियर प्लेयर्स हैं और अनुभवी खिलाड़ी हैं, बड़े मैचेस का इनको अनुभव है, तो ये और ये एक ऐसी टीम से खेल रही है जहां पे इनके ऊपर बहुत प्रेशर नहीं है, दे आर बिग फेवरेट्स टू विन दिस मैच, और बांग्लादेश को 23 में 20 मैचेस में हराया हुआ है इंडिया ने इसके पहले। तो इससे मुझे लगता है कि एक जिसको डिस्पिरिटेड टीम बोलते हैं ना, डिस्पिरिटेड और ये हारी हुई टीम, जैसे कि इनको लगता है कि अब ये टूर्नामेंट में इनका कोई भविष्य नहीं है, और जो फील्डिंग प्रदर्शन है इस मैच में उनकी बैटिंग पे शायद असर पड़ सकता है, और ये 137 रन जो हैं वो उतने आसान नहीं होंगे। और यही अगर ऐसा ही प्रदर्शन भारत का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रहा तब तो कोई मतलब क्या कहें, आप समझ सकते हैं जो सबसे अच्छी टीम है
1: जी। तो अपने श्रोताओं को बता दें कि बांग्लादेश के द्वारा बनाया गया भारतीय टीम के खिलाफ ये दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है टी20 आईज में, तो 137 की चुनौती है। कुछ पॉजिटिव्स भी हैं डिस्कस करने लायक, विजय फटाफट उन पर नजर डालेंगे। श्री चरणी ने आज एक बार फिर इंप्रेस किया, फिर दो विकेटें ली है, और इसी के साथ टी20 वर्ल्ड कप के एक संस्करण में भारत की तरफ से सबसे ज्यादा विकेटें लेने वाली वो खिलाड़ी बन गई हैं।
2: पहला वर्ल्ड कप खेल रही हैं अपने, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप है उनकी तरफ अगर नजर डालेंगे तो वो कौन सी ओवर डालती हैं, सबसे मुश्किल ओवर आपको डालती हुई नजर आती हैं, पहले 6 ओवर में डालती हैं, और उसके बाद बहुत कम है वर्ल्ड क्रिकेट में आप देखें कि आखिरी ओवरों में टी20 क्रिकेट के अंदर आपको लेफ्ट आर्म स्पिनर गेंदबाजी करते हुए दिखे, और वो भी एक ऐसी खिलाड़ी जो अभी अभी इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर आई है, नंबर वन बॉलर है इस समय टी20 क्रिकेट में। जहां तक वर्ल्ड क्रिकेट के बारे में बात करें, ये सिर्फ स्किल के बारे में नहीं बताता है, ये इस यंगस्टर के माइंडसेट के बारे में भी बताता है कि वो रूप से भी कितनी मजबूत है।
3: जी जितन, अभी बात की विजय ने नायकों की, जैसे आज निगार सुल्ताना की परफॉर्मेंस रही है, और पिछले कुछ मैचेस में हम और खिलाड़ियों को देख चुके हैं। दक्षिण अफ्रीका के लिए मारिजान काप ने वो काम किया, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के लिए एलिस पेरी ने वो काम किया पाकिस्तान के विरुद्ध अपने मैच में। अगर हम बात करें भारतीय टीम की, तो भारत के सबसे अनुभवी प्लेयर हरमनप्रीत कौर, 201वां टी20 उनका ये होगा, उनको स्टार्ट हर बार मिल रहा है, हम देख रहे हैं, लेकिन वो कन्वर्ट नहीं कर पा रही हैं, एंड शी इज नॉट प्लेइंग हर नेचुरल गेम, एक शेल में दिख रही हैं।
4: देखिए कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप कोशिश करते हैं, वो कोशिशें आपकी कामयाब होती नहीं है। हरमनप्रीत मतलब 200 अभी आपने भी कहा 201 का इंटरनेशनल गेम्स खेलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। देखिए वर्ल्ड कप का प्रेशर है, और ये एक प्लेयर आपको मैचेस जिता नहीं पाएगा, वर्ल्ड कप की ट्रॉफी नहीं ला पाएगा। देखिए इट हैज़ टू बी ए कलेक्टिव एफर्ट, स्मृति

0: के बल्लेबाज जब तक एक प्लेटफॉर्म नहीं बनाएंगे ना, आप मैचेस नहीं जीत पाएंगे। आज भी ये अप्लाई करता है भारतीय टीम को, आप जाइए ऊपर से रन्स बनाइए, शेफाली और स्मृति की जैसे हम बात करते हैं ऊपर से अच्छा स्टार्ट दें, देन ऑटोमेटिकली आपके पास जमीमा है, उसके बाद आपके पास हरमनप्रीत है। आप देखिए ऊपर से स्टार्ट मिलेगा हर समय मिडिल ऑर्डर अच्छा प्रदर्शन करेगा, जब ऊपर से स्टार्ट नहीं मिलता ना देन स्ट्रगल शुरू होता है टीम्स का।
1: जी तो अच्छे शुरुआत की हम उम्मीद कर रहे हैं। एंड विजय once again we have to talk about Smriti and Shefali because they are the one who have to set the tone. How do you see this pan out and who do you think is going to be the biggest threat from Bangladesh for these two players?
2: I think if you look at their bowling, they have got opening bowlers. That's one thing. If you want to defend this, you have to take early wickets, especially in first six overs. You have to at least take three wickets to put some sort of a pressure on the Indian side, because the strength is a top order. You put pressure on the top order, then you can challenge this Indian batting lineup. You talked about both the openers, completely different right-hand, left-hand combination. We all know how they go about the business in first six overs. So it'll be very interesting to see the contest in first six overs especially.
3: जी इसी में आगे विजय में पूछना चाहूंगी कि बांग्लादेश की टीम में कोई ऑफ स्पिनर नहीं है, स्मृति इसका फायदा उठाना चाहेंगी।
2: सिर्फ ये नहीं है कि दूसरी टीम में लेफ्ट हैंडर है तो आपको ऑफ स्पिनर कराना चाहिए, वो ऑफ स्पिनर उस तरीके का भी होना चाहिए कि आपका वो काम कर सके। बहुत मैचअप्स के बारे में बात करते हैं कि आप अगर लेफ्ट हैंडर है उसके सामने आप ऑफ स्पिनर अगर आपके पास हो, लेकिन अगर उस तरीके का नहीं है तो फिर हर टीम के पास जरूरी नहीं है कि हर तरीके का खिलाड़ी हो।
1: जी तो इस वक्त मैदान पर हम देख रहे हैं कि टीमें आ चुकी हैं और हम भी आपको बहुत जल्द लेके चलेंगे अपने कमेंट्री बॉक्स की तरफ, और हम उम्मीद करते हैं कि जब मुकाबला खत्म होने के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होगी तो हम एक अच्छे समाचार के साथ आपको मिलेंगे। और इसी के साथ मैं दर्पण ठीक है, मेरे साथ मुदिता, हम शुक्रिया अदा करते हैं चेतन शर्मा का, विजय धैया का और शशांक शेखर का जो हमारे साथ जुड़े इस प्रोग्राम में। वी विल मीट यू अगेन आफ्टर द मैच एंड्स, फॉर नाउ इट इज ओवर टू आवर कमेंटेटर्स।

0: In fact, in this top six, there are, or top seven, there are six batters who have more than 1,000 runs. And in the entire Bangladesh lineup, we had just the second player who was able to get her way across to 1,000 runs when in the first innings. Outside off stump, and it has been dropped this time by Nigar Sultana Jyoti. Oh, it's a case of benevolence towards those who were very generous with their own drop catches. But what a chance that was, Dharmendra, because it took the outside edge and it should have been taken by Jyoti.
1: बिल्कुल पकड़ा जाना चाहिए था ये कैच. आसान सा ही एक मौका कहा जा सकता है विकेट कीपर के लिए, और निगार सुल्ताना ने इस कैच को छोड़ा कप्तान ने. बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है ये बांग्लादेश के लिए, क्योंकि शेफाली वर्मा की बल्लेबाजी पूरी दुनिया जानती है कि इस तरह की बल्लेबाजी के लिए वो जानी जाती हैं.
0: And an early wicket would have put a severe amount of pressure on their Indian middle order, which has not quite been at its best thus far in this tournament. Exposing the likes of Yastika early would have been a dream come true, as the next ball is just sprayed down the leg side. Shefali lets that go. It's called wide as well by umpire Kim Cotton, and it takes the score along to six. So that life coming for Shefali at four. And she was playing for that little in-swing, but the ball just holding its shape, not moving as much as she anticipated, which is why it took the outside edge and just went at a good length as well, good height for Nigar Sultana Jyoti, perhaps just moving a touch late. Maybe she also didn't anticipate that ball to come through to her. The next ball outside off stump played inside out, and there is no fielder. It will go away for four towards extra cover.
2: Ye laga abha ka choka.
0: Rollicking start for India. Five balls in into the chase, and already two boundaries right off the blade of Shefali Verma, and a lifeline as well dropped by the keeper and the skipper, Nigar Sultana Jyoti. Maroofa Akhtar, the unfortunate bowler who's suffering on all of those occasions, those two boundaries as well as the dropped catch. One wide and one single of the very first ball faced by Smriti Mandana. All action stations at Old Trafford as India look to wind up what will be their third victory should they get there in this campaign, with an all-important fixture coming up against Australia on Sunday, all to play for at Lord's. Maroofa comes in one more time. This time it's a lot straighter. It's been drilled towards mid-on, but before the fielder can go across, they will cut through for a single, even though there is a direct hit. Shefali Verma is comfortably home. 11 without loss after an action-packed first over.
1: जी हाँ, मारूफा अख्तर के पहले ओवर में सब कुछ हुआ. अतिरिक्त के रन आए वाइड के रूप में, कैच भी छूटा, दो बड़े स्ट्रोक्स भी आए भारत के लिए, और एक मौका थोड़ा सा रन आउट के रूप में भी आया. हालांकि वो संभावना काफी दूर थी. तो सब कुछ पहले ओवर में घटित हुआ है, और पहला ओवर भारत के लिहाज से काफी अच्छा रहा है. 11 रन भारत के खाते में आए हैं, और शेफाली वर्मा का कैच भी छूटा है. 137 रन बनाने हैं भारत को इस मुकाबले को जीतने के लिए. बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 136 रन बनाए 8 विकेट के नुकसान पर, और एक बार फिर से भारत की तरफ से अक्षी चढ़नी ने काफी अच्छी गेंदबाजी की. दो विकेट उन्होंने ली, और इस वर्ल्ड कप में, इस विश्व कप में अभी तक वो 12 विकेट ले चुकी हैं, सबसे सफल गेंदबाज इस विश्व कप में. अक्षी चढ़नी ने अपनी गेंदबाजी से काफी ज्यादा प्रभावित किया है. काफी युवा गेंदबाज हैं, बहुत लंबा करियर उनका भारत के लिए है, और जिस तरह की गेंदबाजी वो कर रही हैं, निश्चित रूप से भारत के लिए बहुत कुछ उनको भविष्य में करना है. साजिदा नई गेंदबाज, और स्ट्राइक पर शेफाली. पहली गेंद लेग स्टंप पर, जिसको सीधे बल्ले से अपने सामने की तरफ खेला, मिड ऑन पर गेंद को फील्ड किया गया. कोई रन नहीं मिलेगा इस नए ओवर की, और कह सकते हैं कि भारत के दूसरे ओवर की शुरुआत हुई है डॉट बॉल से. लक्ष्य 137 रन का. अगली गेंद के साथ शांजिदा तैयार, और इस गेंद को लॉक किया लॉन्ग ऑन की तरफ. हवा में गेंद जरूर है, लेकिन फील्डर पीछे कोई नहीं, और गेंद बाउंड्री के बाहर जाकर गिरी है इस मौके पर 6 रन के लिए.
2: ये लगा आभा का छक्का.
1: शेफाली वर्मा मैदान पर रहेंगी तो इस तरह के स्ट्रोक्स आते रहेंगे.
0: एब्सोल्युटली. एंड जस्ट अ कॉन्फर्मेशन फ्रॉम वेंकट बाल रेड्डी, फर्स्ट सिक्स ऑफ दिस मैच, एंड इट कम्स इन द इंडियन इनिंग्स इन द वेरी सेकंड ओवर. And it's the left-arm spinner, Shanjita Akhtar Meghla, who was looking to perhaps work with that favorable matchup. But Shefali Verma doesn't really believe in matchups, does she? If the ball is there to be hit, she will smack it down the ground.
1: Ji haan, koi fark nahi padta Shefali ko, matchup ho ya kuch bhi ho, jab unke paale mein gend aayegi to wo is tarah ke strokes lagayengi. Ye unhone sanket de diya agli gend, aur is baar phir se crease se bahar nikalna cha rahi thi. Halanki chaturai se gend ki disha mein parivartan kiya. इस गेंद को खेला है कवर की तरफ, एक रन दूसरे रन के लिए पलटी है।

0: हैं और दो रन फिर से पूरे किए हैं। बहुत तेज रफ्तार से बल्लेबाजी कर रही हैं और ऐसा लग रहा है कि जब तक शेफाली मैदान पर रहेगी भारत की ये रणनीति रहेगी कि जल्दी से जल्दी इस मैच को समाप्त किया जाए।
1: एब्सोल्युटली एंड ऑल्सो लिटिल मिसफील्ड फ्रॉम रबिया खान सो दैट विल नॉट प्लीज द स्किपर टू मच। शी हरसेल्फ हैज ड्रॉप्ड अ कैच। बांग्लादेश नीड टू लिफ्ट देयर स्टैंडर्ड्स।
0: चौथी गेंद इस ओवर की, इस बार सीधे बल्ले से सामने की तरफ खेला है फील्डर, वहां पर कोई भी नहीं, चैलेंज और आता हुआ भारत के लिए।
2: ये लगा आभा का चौका।
0: इस ओवर में करारा प्रहार, पहली गेंद डॉट लेकिन उसके बाद राहत की बात नहीं गेंदबाज के लिए। दूसरी गेंद पर छक्का, तीसरी गेंद पर दो रन और इस चौथी गेंद पर चार रन, यानी कुल मिलाकर 12 रन पिछली तीन गेंदों पर भारत के लिए आ चुके हैं। अब थोड़ी सी बातचीत इस समय गेंदबाज के साथ। 23 रन हो गया भारत का स्कोर बगैर किसी नुकसान के। एक मौका शेफाली वर्मा को जरूर पिछले ओवर में मिला और वो भारी साबित हो सकता है बांग्लादेश के लिए, इसका संकेत दिया है शेफाली ने मैदान पर रही तो। 137 रन का लक्ष्य काफी छोटा साबित हो सकता है। अगली गेंद इस बार ड्राइव किया लेकिन सीधा शॉट एक्स्ट्रा कवर पर, कोई रन इस मौके पर नहीं मिलेगा। शेफाली वर्मा जिन्होंने गेंदबाजी की भी शुरुआत की थी भारत के लिए, बल्लेबाजी की शुरुआत भी करने के लिए आई हैं अपनी साथी खिलाड़ी स्मृति मंधाना के साथ। अगली गेंद और इस बार इस गेंद को हल्के हाथों से फिर से खेला, मिसफील्डिंग जरूर हुई लेकिन कोई रन नहीं, ओवर की समाप्ति हुई। दो ओवरों के बाद भारत का स्कोर 23 रन बगैर किसी नुकसान के।
1: 21 of 11 balls for Shefali Verma and Smriti Mandhana has just faced that very first ball of this entire innings which she was able

0: ball driven on the up, and this time the catch has been taken. India suffered their first blow. Smriti Mandhana will have to go back. There might be a boundary check for this, but Rabia Khan, from the look of things, has pulled off an absolute blinder for Maruf Akhtar.
1: बहुत बड़ा नुकसान ये भारत के लिए. स्मृति मानधना चल पड़ी हैं पवेलियन की तरफ और भारत को ये संभवतः पहला झटका लगा है. हालांकि अभी अंपायर उस पर निगाह जरूर डालेंगी कि कैच पूरी तरह से सफाई से पकड़ा गया है या नहीं, लेकिन स्मृति मानधना चल पड़ी हैं ड्रेसिंग रूम की तरफ. अंपायर ने उन्हें रुकने का इशारा किया है, वो अब रुकी हैं और अब तीसरे अंपायर द्वारा यह फैसला दिया जाएगा कि कैच सफाई से पकड़ा गया है या नहीं. स्मृति मानधना ने इस गेंद को ड्राइव करने का प्रयास किया था, हवा में थी थोड़ी देर के लिए गेंद और बहुत अच्छी फील्डिंग इस मौके पर.
0: एब्सोल्युटली दैट बाउंड्री आल्सो रमेश परब आवर स्टैटिस्टिशियन इन्फॉर्म्स अस ब्रिंग्स अप 4500 रन्स फॉर स्मृति मानधना, बट द क्वेश्चन इज विल शी ऐड 4502 बिकॉज़ शी इज गॉन अक्रॉस टू 4501 इन द प्रोसेस. Just outside off, it was driven on the up and Rabia Khan did ever so well. And most importantly, it does look like she's clung on. Absolutely no problems with it. She was at cover, it was traveling fast, but she was very decisive in moving across to it and making sure that she got her fingers right underneath the ball. And that's why Smriti Mandhana, you know as a batter often, when you see something being pulled off, you are aware of exactly what has happened. And that's why Smriti Mandhana's first instinct was actually to walk off towards the dugout. But just as a formality, the on-field umpire Kim Cotton went across to Anna Harris, who's in the TV umpire's chair, and Anna Harris is about to adjudicate on this soon. But India, from the look of things, have lost their first wicket. Is it a glimmer of hope? Because whatever happens, the only way that Bangladesh can come back into this contest is by picking wickets. Ideally, they would have wanted the wicket of Shefali, but for the moment, if they are able to get Smriti Mandhana out as well, that will do their cause a world of good. Just looking over those replays, the first point of contact seems absolutely fine. And to give the fielder some benefit of doubt, it does look like from every angle that she has gotten her fingers across. Whether that's also hit the grass at some stage or not is probably just a small point of contention. But then the TV umpire has to go by whatever is the visual evidence. And we will wait for that evidence, and that evidence is OUT. So the third over concludes. Maruf Akhtar, who was unlucky in the first over, but this time, thanks to an outstanding catch by Rabia, she has struck, and Smriti Mandhana has to go. India's top scorer in this tournament, 159 runs before this, but only 8 today.
1: जी हाँ, आज स्मृति मानधना का बल्ला उतना चला नहीं. उम्मीद थी उनसे बड़ी पारी की, अच्छी लय में लग रही थी, लेकिन बहुत ही बेहतरीन कैच लपका गया. एक बार ये ऐसा लगा था कि कहीं कैच लपकने के बाद जब वो जमीन से उठने की कोशिश कर रही थी, उस गेंद को ऊपर उठाने की कोशिश कर रही थी, क्या वो गेंद जमीन को छू रही थी. लेकिन तीसरे अंपायर ने इस बात की वहां पर तस्दीक कर दी, इस बात की पुष्टि कर दी कि वो गेंद बिल्कुल सफाई से पकड़ी गई थी. और पहले विकेट का पतन भारत के लिए बहुत बड़ा झटका भारतीय टीम को. स्मृति मानधना के रूप में इनफॉर्म बल्लेबाज, और आज उनको 8 रन बनाकर वापस पवेलियन में लौटना पड़ा है. लक्ष्य बहुत बड़ा नहीं है भारत के लिए. अगर वो कैच शेफाली का लपका गया होता तो और भी मुश्किलें भारत की बढ़ सकती थी इस मुकाबले में. इस ओवर की ये पहली गेंद, और इस गेंद को खेला है 4 रन के लिए.
2: ये लगा आभा का चौका.
1: इस बार इसको लॉन्ग ऑफ की तरफ खेला, बड़ा और करारा प्रहार इस मौके पर. हालांकि एक बार ये ऐसा लगा कि गेंद में उतनी ज्यादा रफ्तार है नहीं, फील्डर पीछे कोई ज्यादा थी नहीं. बहुत बढ़िया प्लेसमेंट और बहुत बढ़िया टाइमिंग के साथ लगाया गया स्ट्रोक 4 रन के लिए. पारी बहुत अच्छी अभी तक रही है शेफाली की, और इस ओवर की शुरुआत उन्होंने 4 रन से की है. इस ओवर की दूसरी गेंद, इस बार बल्ले का मुंह खोलना चाहती थी, धीमी रफ्तार की गेंद थी, रफ्तार से चकमा खा गई. बल्ला अड़ाना चाह रही थी, लेकिन रफ्तार से चकमा खाने के बाद बीट हुई पूरी तरह से इस गेंद पर.
0: ऑल्सो धर्मेंद्र, द न्यू बैटर इन इज यास्तिका भाटिया. वी हैव सीन हर जस्ट स्ट्रगल अ लिटिल बिट विद सम ऑफ हर आउटफील्डिंग, एंड इवन हर रनिंग बिटवीन द विकेट्स कैन बी अ लिटिल डॉजी. आई होप इट डजंट लीड टू अ रन आउट बिटवीन दीज टू. दे शुड जस्ट डील इन बाउंड्रीज.
1: रितु की अगली गेंद इस ओवर की, और इस बार सीधे बल्ले से खेला बॉलर की तरफ वापस. निराश अपने इस स्ट्रोक से इस मौके पर शेफाली वर्मा. उन्हें लग रहा था कि इस गेंद पर कुछ रन आने चाहिए थे. उनको लगा कि अगर और ज्यादा थोड़ा पावर लगाती इस स्ट्रोक के पीछे तो 4 रन भी निकल सकता था, लेकिन कोई रन नहीं इस तीसरी गेंद.

0: और चौथी गेंद के साथ तैयार रितु मोनी। और इस बार ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, जिसको खेला है खूबसूरत तरीके से पॉइंट बाउंड्री की तरफ, फील्डर वहां पर भाग रही, गेंद की रफ्तार खुद ब खुद धीमी हो गई है, एक रन और फिर दूसरे रन के लिए पलटी है। दो रन के साथ शिफाली वर्मा पहुंच गई 28 पर भारत के स्कोर में और दो रनों का इजाफा। बढ़िया कैच पकड़ा था उस मौके पर, बहुत ही पूर्वानुमान सही था। हालांकि एक बार ये ऐसा लगा कि शायद एक मौका मिल सकता है स्मृति को, लेकिन तारीफ करनी होगी फील्डिंग की। 137 बनाना है भारत को, 37 रन बन गए हैं। इस बीच में एक रन और आता हुआ, इस एक रन से स्कोर बढ़ता हुआ 38 एक विकेट के नुकसान पर। इस ओवर में कुल मिलाकर अभी तक 7 रन आ चुके हैं रितु मोनी का। ये थोड़ा सा महंगा ओवर, पहला ओवर है उनका, और इस ओवर में अभी तक उन्होंने 7 रन खर्च किए हैं। यस्तिका भाटिया पहली बार स्ट्राइक पर, और जैसा हमारे साथी देवायन कह रहे थे कि उनकी फिटनेस को लेकर थोड़ा सा सवाल जरूर है। फील्डिंग करते हुए थोड़ी परेशान दिखी थी, उस रफ्तार से भाग नहीं पा रही थी जब एक गेंद का उन्होंने पीछा किया था। गेंद की रफ्तार उनसे ज्यादा तेज निकली, उन्होंने पीछा करने की कोशिश की, लेकिन पूरी तरह से फिट वहां पर दिखी नहीं। इस ओवर की अंतिम गेंद का सामना करेंगी, और इस बार इस गेंद को उन्होंने सुरक्षात्मक तरीके से ऑन साइड में खेलकर एक रन तो लिया ही, टाइमिंग बहुत अच्छी है, प्लेसमेंट अच्छा और 4 रन।
1: ये लगा आभा का चौका,
0: और इस चौके के साथ ओवर की समाप्ति हुई है। 4 ओवरों के बाद भारत का स्कोर 42 रन एक विकेट के नुकसान पर।
2: So after 4 overs, India find themselves 2 runs ahead of what Bangladesh had managed in their entire power play. 40-1 was the score after 6 overs when Bangladesh were batting, but India have gotten off to a really rapid start, especially with Shefali Verma going great guns. She's on 29, and we just saw Yastika Bhatia with the very first ball that she faced, just punching it down the ground and picking up a 4. Yastika Bhatia, one does have absolutely no doubt about her ability to find the boundaries, which is why she's perhaps the ideal top order player to maximize those opportunities during the power play. It's once the power play eases and the field opens up, that's when she tends to have a few problems in terms of rotation of the strike and just finding those boundaries on a more regular basis. However, this is a solid foundation for India, not a massive total to chase. And interestingly, Nigar Sultana Jyoti continuing with Maroofa Akhtar. So the in many respects, the only genuine pace bowler in this side, continuing with her third over inside the power play. 4 overs bowled, 42-1. Shefali Verma on strike. Maroofa comes in just outside off stump. Driven successfully through covers for yet another 4.
1: Ye laga aabha ka chauka.
2: That is just quality, that's strong wrists, it's good placement, and it's very good positioning of the body in terms of what she's doing. Just looking to access the ball, walk towards it, and then converting all of those into lengths that she wants to hit, and picking up another 4. Takes the Indian score along to 46-1, and Shefali herself motoring along 33 from just 18 balls. And this is quite an exhibition of good power hitting. 5 fours and 1 6 in her innings thus far. 7 fours and 1 6 in the overall Indian innings thus far. As she shapes up to play once again, and this time punched towards the offside. And it's picked up at cover. No possibility of a run. Maroofa comes back with a dot ball, but slightly expensive in her third over. 2.2 overs bowled, 1 for 23. A solitary wicket of Smriti Mandana going to Maroofa Akhtar. The catch well taken by Rabia Khan at covers. But since then, there's nothing to cheer about, because these two batters are looking to put the pressure right back. That last over from Ritu Moni, the first of her innings, costing her 11 runs. And that has meant that India have just gotten away to a blistering start and brought the required run rate significantly down. It's just in the vicinity of about 6 runs and over at the moment. As the next ball is worked away on the onside, and it's fielded at deep mid-wicket, comes back to Maroofa on the bounce, and it brings Yastika on strike for the very first time. 47-1, 4.3 overs completed. India only chasing 137 to a record what will be their third victory of this campaign in 4 matches, with one match to come against the mighty Australians, multiple holders of the T20 World Cup crown. And if they are able to somehow ease to a victory in that, then that definitely brightens their chances of making it to the semi-finals. 2 groups of 6 teams each, 12 teams in all, with the top 2 from both groups progressing to the semi-finals. India were eliminated ahead of the semi-final stage in the T20 World Cup 2 years ago. Outside of stump, And Yastika gets an outside edge and it will run away to third for four.
1: ये लगा आभा का चौका.
2: Didn't intend to hit it that fine, Dharmendra, but a good shot to bring up the Indian 50 as well.
0: जी हाँ, run किसी भी तरह से आए, run आने चाहिए इस मौके पर. जहां खेलना चाहती थी स्ट्रोक वहां तो नहीं खेल पाए, लेकिन बल्ले का बाहरी किनारा लेकर गेंद गई चार रन के लिए. ये बहुत उपयोगी चार रन भारत के लिए.
2: Yastika is batting at the moment at a strike rate of 400, so no worries about what she needs to do in terms of her running around, because she's absolutely bossing the opposition at the moment with the bat. Outside off stump, the first dot ball that she's faced, and it's driven towards cover. So Maroofa again going for a few runs in this over, 9 runs of this, 1 for 28 her figures, 2.5 overs, and India coasting along quite nicely, 51 for 1, well ahead of where comparatively Bangladesh were, having registered 40 for 1 from their first 6 overs themselves. So a much more rapid start for the Indians. They've gotten across to that 50 in just 28 balls, says Venkat Bal Reddy. 46 balls were taken by the Bangladeshis. The next ball driven back. Was it a chance? Did Maroofa grasp yet another attempt? Only time will tell, but it finishes with a dot ball. 5 overs bowled, 51 for 1. And judging by her body language, Dharmendra, that does look like that's another chance which has gone.
0: Ji haan, lag to aisa hi raha hai ki shayad wahan par follow-through mein ek mauka tha गेंदबाज के लिए Maroofa के लिए, लेकिन गेंद तक वो पहुंच नहीं सकी. और अगर ये विकेट भारत का गिरता तो जिस गति से रन बन रहे हैं, रनों की रफ्तार है, उस पर थोड़ा सा ब्रेक जरूर लगता, क्योंकि बांग्लादेश ने जहां 44 गेंदों में 50 रन बनाए थे, वहीं भारत ने उसके मुकाबले सिर्फ 28 गेंदों में 50 रन बना लिए हैं. बहुत तेज रफ्तार से इस समय भारत की तरफ से रन बन रहा है. खास बात यह है कि शेफाली वर्मा मैदान पर हैं, जो बहुत तेज बल्लेबाजी करती हैं, और पूरे मैच के दौरान जो एकमात्र छक्का लगा है वो शेफाली वर्मा के बल्ले से आया है, और बहुत बड़ा छक्का उन्होंने लगाया था, करीब 70 मीटर के आसपास का वो छक्का था. तो वो जब तक मैदान पर रहेंगी, तेज गति से रन आते रहेंगे. 5 ओवरों के बाद 51 है भारत का स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर. और नए ओवर की शुरुआत, पहली गेंद बैकफुट पर जाकर इस गेंद को पुल किया है, और डीप मिड विकेट पर इस गेंद को फील्ड किया जा रहा है. तब तक शेफाली ने 1 रन लेकर अपना छोर बदल लिया, 35 पर पहुंच गई, और भारत का स्कोर हो गया 52 रन 1 विकेट के नुकसान पर. शांजिदा इस समय गेंदबाजी कर रही हैं, और जो सफलता मिली है बांग्लादेश को वो स्मृति मानधना का विकेट मिला है, बहुत बड़ा विकेट निश्चित रूप से. यस्तिका इस समय स्ट्राइक पर 4 गेंदों में 8 रन बनाकर खेल रही हैं. एक चौका अब तक उनकी इस पारी में आया है. इस गेंद को इस बार क्रीज से बाहर निकलकर उन्होंने खेला है लॉन्ग ऑन की तरफ, 1 रन उनको भी मिलेगा, और इस तरह से स्कोर अब बढ़कर 53 1 विकेट के नुकसान पर. बांग्लादेश और भारत की अंक तालिका की स्थिति को अगर देखते हैं तो अभी दोनों टीमें बराबरी पर हैं. दोनों के कुल मिलाकर 4-4 अंक हैं. दोनों ने 1-1 मैच गंवाया है. भारत ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपना मुकाबला गंवाया, जबकि बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना मैच गंवाया था. इस बीच में एक और गेंद जिस पर कोई रन नहीं आया. भारत ने पाकिस्तान को हराया था 64 रन से, नीदरलैंड्स को हराया था 95 रन से, दक्षिण अफ्रीका से 6 विकेट से हार मिली थी. अगली गेंद को इस बार लॉब किया है लॉन्ग ऑफ की तरफ, और गेंद 4 या 6 रन अंपायर के इशारे का इंतजार, और अब इशारा आता हुआ 4 रन का.
1: ये लगा आभा का चौका.
0: बहुत बढ़िया स्ट्रोक इस मौके पर, पूर्वानुमान बिल्कुल सही था शेफाली वर्मा का. क्रीज से बाहर थोड़ा सा अपने कदमों को निकाला, गेंद की फ्लाइट तक पहुंची, और फिर खेल दिया अपने सीधे बल्ले से ठीक सामने की तरफ. शेफाली वर्मा का एक और शानदार चौका, ये उनकी पारी का 6 चौका, और भारत का स्कोर बढ़ता हुआ 57 रन 1 विकेट के नुकसान पर. 4 गेंदें अभी तक इस ओवर में हुई हैं शांजिदा के, 2 गेंदें अभी भी बची हुई हैं, कुल मिलाकर 6 रन उन्होंने खर्च किए हैं. अगली गेंद ओवर द विकेट, फिर से लॉब किया इस गेंद को उसी दिशा में, फिर से 4 रन.
1: ये लगा आभा का चौका.
0: 2 लगातार चौके देबायन.
2: Absolutely, and taking Shanjida Akhtar Meghla specially to the cleaners. Even her first over was quite expensive, 12 of it, and now 2 successive boundaries, making this a good over as well, maximizing the power play. And yet again, Dharmendra, if you notice, straight bat shots. She's not going for anything fancy, just playing with the turn and playing with the angles.
0: बिल्कुल सीधे बल्ले से लगातार

0: literally one boundary strike away from getting through to her 50. A 6 will do just fine if she can get there. The Indians at the moment are looking quite relaxed in their dugout. And lots of smiles coming around, especially from Radha Yadav, who's made a successful return to the World Cup squad in this match. And I just wonder if India have finally found their perfect 11 going forward in this tournament, with one more match in the league stages against Australia to come. Next ball driven, but there's a sweeper cover in place and the throw comes in quickly and it restricts the run scoring to just one. 65 for one, 6.4 overs bowled. Two singles of this over after two dot balls. Much better pickings from Ritu Moni, who's come back for her second over, the first over producing 11 runs. Still remains to be seen what are the other bowling options and how do they use them. This time it's a lot fuller, straighter, driven down the ground, but good bit of fielding by Maruf Akhtar. Keeps the scoring down to just one. Exceptional, because when she hit it, Yastika Bhatia may have been forgiven for thinking that here are four runs for the taking. It was a crisp drive right down the wicket, but just not able to beat the fielder at long on, diving away to her right, Marufa Akhtar. Three singles of this over, 66 for one, seventh over in progress. One ball left to come as Ritu Moni comes in yet again. Shefali backs away, whacks it towards sweeper cover, picks up a single. Four singles of this over, four runs of it, 67 for one, India after seven.
1: 137 run ka lakshya aur 67 run uske jawab mein Bharat ne bana liye hain. कुल मिलाकर अभी तक सात ओवरों की समाप्ति के बाद लक्ष्य बिल्कुल आसान सा भारत के लिए दिखाई दे रहा है. लय में दिखाई दे रही हैं समय शेफाली वर्मा, जिन्होंने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की है अब तक, और शेफाली 47 रन बनाकर खेल रही हैं. अर्धशतक से सिर्फ तीन रन दूर हैं. और दूसरी तरफ उनकी साथी खिलाड़ी यस्तिका भाटिया भी उनका पूरा साथ निभा रही हैं. यस्तिका की कोशिश यही है कि स्ट्राइक रोटेट किया जाए और शेफाली को ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक दी जाए. बहुत ही अच्छी लय में दिखाई दे रही हैं इस समय शेफाली. 27 गेंदों में 47 रन बनाए हैं, सात चौके, एक छक्का लगाया है. 174.07 की स्ट्राइक रेट से उनके बल्ले से अभी तक रन आए. दूसरी तरफ यस्तिका भाटिया, जिन्होंने 9 गेंदों में 11 रन बनाए हैं, दो चौके उनकी भी पारी में हैं. पिछले पांच ओवर्स में भारत ने 45 रन बनाए हैं. नए ओवर की शुरुआत और इस पहली गेंद पर एक रन आता हुआ, इससे स्कोर बढ़ता हुआ 68 रन एक विकेट के नुकसान पर. अब 69 रन चाहिए भारत को 77 गेंदों में ये मैच जीतने के लिए, यानी 6 रन प्रति ओवर से भी कम की औसत से भारत को रन बनाने हैं. यस्तिका भाटिया इस समय स्ट्राइक पर 48 पर हैं. शेफाली वर्मा नॉन स्ट्राइकर एंड पर. अगली गेंद को इस बार खेल दिया है लॉन्ग ऑन की तरफ यस्तिका ने, एक रन के लिए. 69 हुआ भारत का स्कोर एक विकेट पर. और अब स्ट्राइक पर आ गई एक बार फिर से शेफाली वर्मा. अर्धशतक से सिर्फ दो रन दूर हैं. 76 गेंदों में भारत को चाहिए 68 रन. धीरे धीरे भारत लक्ष्य की तरफ बढ़ता हुआ. राबिया इस समय गेंदबाजी कर रही हैं और उनके सामने शेफाली. इस बार कट किया बल्कि कवर की तरफ खेला इस गेंद को. फील्डर भाग रही है, कोई फायदा नहीं, 4 रन.
2: ये लगा आभा का चौका.
1: एक बार ये ऐसा लगा कि वो कट करने जा रही है गेंद को, लेकिन अंतिम समय में उन्होंने बल्ले का पूरा मुंह खोला और कवर की तरफ इस गेंद को खेल दिया 4 रन के लिए. इसके साथ ही अर्धशतक पूरा हुआ. 29 गेंदों में 52 रन उन्होंने पूरे कर लिए शेफाली वर्मा ने, और शानदार अर्धशतक दिवायन शेफाली के बल्ले से.
0: एब्सोल्युटली, एंड द वन हु विल बी फीलिंग द पिंच रियली, टू प्लेयर्स इन पर्टिकुलर, मारूफ अख्तर एंड मोर इम्पोर्टेंटली निगार सुल्ताना ज्योति, बिकॉज शी वॉज ऑन 4 व्हेन शी वॉज ड्रॉप्ड. इट कुड हैव बीन अ कंप्लीटली डिफरेंट गेम.
1: गेंद इस बार बिट हुई है पूरी तरह से. शेफाली कट करना चाह रही थी अंतिम समय, लेट कट करने का प्रयास था उनका, लेकिन पूरी तरह से बीट हुई है. और शेफाली केवल बल्ले से निकलने वाला ये 50 से अधिक का 18वां स्कोर, अगर अभी तक T20 इंटरनेशनल में उनके प्रदर्शन की बात करती हैं. अगली गेंद को इस बार खेला कवर में, इस बार कोई रन नहीं मिलेगा. 8वां ओवर चल रहा है भारत का और 73 रन बना लिए एक विकेट के नुकसान पर. कुल मिलाकर इस ओवर में 6 रन आए, एक गेंद अभी भी बची हुई है. और राबिया के सामने शेफाली वर्मा, बार हल्के हाथों से खेला मिड ऑफ की तरफ, कोई रन नहीं. ओवर की समाप्ति 8 ओवर के बाद भारत का स्कोर 73 एक विकेट के नुकसान पर. शेफाली वर्मा 52 पर, और दूसरी तरफ यास्तिका भाटिया 12 रन बनाकर खेल रही हैं.

0: 3 विकेट भारत ने गंवाया है। आउट होने वाली बल्लेबाज शेफाली वर्मा, जिन्होंने अर्धशतक जरूर बनाया, 34 गेंदों में 53 रन बनाकर आउट हुई और 76 जब भारत का स्कोर था तब भारत ने वो दूसरा विकेट गंवाया और अच्छा खासा ओवर समाप्त हुआ नाहिदा अख्तर का, जिसमें उन्होंने सिर्फ 3 रन खर्च किए और शेफाली वर्मा जैसा महत्वपूर्ण विकेट लेने में कामयाब रही हैं। रन रेट भी थोड़ा सा भारत के नीचे आया है विकेट गंवाने के बाद। अस्तिका भाटिया और ऋचा घोष की जोड़ी मैदान पर है। ऋचा घोष को, जैसा देवायन ने बताया, कि संभवतः इसी सोच के साथ मैदान पर भेजा गया है कि भारत जल्दी से जल्दी इस मुकाबले को समाप्त करना चाहता है ताकि नेट रन रेट और बेहतर हो सके। भारत का नेट रन रेट के मामले में अभी भारतीय टीम दूसरे स्थान पर है ऑस्ट्रेलिया के बाद, दक्षिण अफ्रीका उससे नीचे तीसरे स्थान पर है। इसी वजह से अंक तालिका में अंक बराबर होने के बाद भी जो है वो भारतीय टीम आगे है।
1: One more catch drop because this was played straight back at Rabia but just not able to hold on. Yastika Bhatia living dangerously.
0: जी हाँ, एक और मौका भारत के विकेट का था। बांग्लादेश की गेंदबाज राबिया के पास फॉलो थ्रू में एक आसान सा मौका आया था। यास्तिका ने सीधे सामने की तरफ सीधे बल्ले से खेला था, आसान सा कैच हो सकता था लेकिन ये मौका हाथ से जाता हुआ। दो कैचेस तो अभी तक बांग्लादेश ने भी कम से कम टपकाए। इस बार इस गेंद को पैडल स्वीप कर दिया है विकेट के पीछे की तरफ और ये 4 रन।
2: ये लगा आभा का चौका।
0: बिल्कुल आसान सी ये गेंद थी यास्तिका के लिए, दिशा से भटकी हुई गेंदबाजी, बढ़िया ओवर की शुरुआत की थी, फॉलो थ्रू में एक मौका आया था और इस बार लेग स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर गेंद। आसानी से इस गेंद को देखा, छोटी गेंद भी थी और पूरा फायदा उठाया, खेल दिया इस गेंद को 4 रन के लिए। इस चौके के साथ अब भारत का स्कोर बढ़ता हुआ 80 दो विकेट के नुकसान पर। दो विकेट भारत ने दोनों सलामी बल्लेबाजों के गंवाए हैं। पहले स्मृति मानधना का विकेट गंवाया और उसके बाद शेफाली वर्मा आउट होने वाली बल्लेबाज थी। ऋचा घोष ने अभी तक कोई रन नहीं बनाया है, दो गेंदों का सामना किया जरूर है लेकिन बहुत ज्यादा वो समय दूर नहीं है जब उनके बल्ले से बड़े स्ट्रोक्स देखने को मिल सकते हैं। 57 रन अब चाहिए भारत को, 64 गेंदों का सामना करना है। 10वां ओवर चल रहा है भारतीय पारी का। अगली गेंद इस बार कट किया इस गेंद को और तेज गति से गेंद जा रही है बाउंड्री की तरफ, पीछे भाग रही है तो फील्डर क्या रोक पाएंगी। गेंद की रफ्तार खुद ब खुद कम हो गई है और डाइव लगाते हुए इस गेंद को रोका गया है। 2 रन और फिर क्या ये तीसरे रन के लिए पलटेंगी। जी हाँ, तीसरा रन भी पूरा कर लिया आसानी के साथ, एक रन जरूर इस मौके पर बचाया फील्डर ने। 3 रन और आता हुआ यास्तिका के बल्ले से, 83 हो गया भारत का स्कोर दो विकेट के नुकसान पर। यास्तिका भाटिया पहुंच गई 15 गेंदों में 21 रन पर। उनकी पारी में अभी तक 3 चौके आए हैं। आज फील्डिंग दोनों ही तरफ से उतनी अच्छी हुई नहीं है, भारत को भी सोचना होगा अपनी फील्डिंग पर ऑस्ट्रेलिया जैसे महत्वपूर्ण मैच से पहले, क्योंकि उस मैच में एक भी मौका गंवाना यानी पूरे मैच का परिणाम बदलने के समान हो सकता है। अगली गेंद इस ओवर की 4th गेंद और इस गेंद को इस बार खेला है पॉइंट की तरफ, डाइव लगाकर रोकने का प्रयास और गेंद को रोक लिया गया। रन इस मौके पर कोई भी नहीं बनेगा। इस ओवर में अभी तक 7 रन आए हैं, 4 गेंदें हुई हैं, 2 गेंदें अभी भी राबिया की बची हुई हैं। ऋचा घोष स्ट्राइक पर हैं, 3 गेंदें खेल चुकी हैं। ऋचा के बल्ले से अभी तक कोई रन नहीं आया है। यास्तिका दूसरे छोर से वो काम कर रही है जिस भूमिका के लिए ऋचा को मैदान पर बुलाया गया है। 15 गेंदों में 21 रन बनाए हैं यास्तिका ने। रिक्वायर्ड रन रेट भारत के लिए 5.22 का और वर्तमान रन रेट 8.58 का। अंतिम गेंद इस ओवर की और इसको खेला है ऑन साइड में 1 रन के लिए और फिर दूसरे रन के लिए पलटने का प्रयास लेकिन दूसरा रन यहां पर है नहीं। इसके साथ ही 1 रन और जुड़ता हुआ भारत के खाते में, बढ़ता हुआ स्कोर 84 दो विकेट के नुकसान पर। कुल मिलाकर इस ओवर में अभी तक 8 रन। जिस गति से भारत रन बनाता चला जा रहा है उसको अभी तक लगातार कायम रखने में कामयाबी। इस बार क्रीज से बाहर निकलकर खेलने का प्रयास, खेला इस गेंद को लॉन्ग ऑफ की तरफ, 1 रन और आता हुआ ओवर की समाप्ति। राबिया के इस ओवर में कुल मिलाकर 9 रन आए और भारत का स्कोर हो गया 10 ओवर के बाद 85 रन दो विकेट के नुकसान पर।
1: Much more comfortably placed than what Bangladesh were at this stage. 52 now required from 60. It does look like a mere formality, but they are still offering chances. And you never know, Bangladesh, if they can convert some of those, something could still...

0: 7 ओवर्स बोल्ड 94 फॉर 2 इंडिया।
1: तो ये ओवर काफी कुछ घटनाओं भरा रहा। एक ऐसा मौका भी आया जब ऋचा घोष को अंपायर ने आउट करार दिया, उन्होंने रिव्यू लिया और उस रिव्यू में ये साफ तौर पर सामने आया कि इंपैक्ट जो था गेंद का वो ऑफ स्टंप के बाहर था और ऋचा घोष बच गई। हालांकि अंपायर का फैसला बांग्लादेश के पक्ष में जरूर गया था, लेकिन इंपैक्ट की वजह से ऋचा घोष मैदान पर अभी भी मौजूद हैं और भारत का स्कोर 94 रन 2 विकेट के नुकसान पर 11 ओवर्स के बाद। रन रेट अभी भी भारत का 8.54 का, रिक्वायर्ड रन रेट 5 से भी नीचे आता हुआ 4.77 का, और अंतिम जो 5 ओवर रहे हैं भारत के लिए उसमें 31 रन आए हैं, 1 विकेट का नुकसान हुआ है और वो विकेट था शेफाली वर्मा का। 2 विकेट पर 94 रन बनाए हैं। नए ओवर की शुरुआत, पहली गेंद और इस गेंद को लॉक किया है सीधे फील्डर के हाथों में, ये गेंद जाकर समाई है। ये नुकसान भारत के लिए बहुत बड़ा, यस्तिका भाटिया का विकेट भारत ने इस मौके पर गंवाया है। क्रीज से बाहर निकलकर इस गेंद को मिड ऑफ के ऊपर से खेलने का प्रयास था, रितु मोनी ने चतुराई भांप ली थी बल्लेबाज की, गेंद की लंबाई को थोड़ा छोटा कर दिया, गेंद तक पहुंच नहीं पाई बल्लेबाज और सीधे एक आसान सा कैच पकड़ा गया मिड ऑफ पर। इस तरह से भारत के लिए 3rd विकेट का नुकसान 94 पर, और यस्तिका भाटिया इस समय मैदान से बाहर जा रही हैं। 18 गेंदों में 23 रन उन्होंने बनाए, 3 चौके लगाए, लेकिन भारत के लिए एक बढ़िया पारी खेल रही थी। उनके विकेट के पतन से निश्चित रूप से जो रनों की गति है उस पर असर पड़ सकता है, और भारत का जो लक्ष्य है इस समय कि न सिर्फ मैच को जीता जाए बल्कि रन रेट, नेट रन रेट जो है उसको और बेहतर किया जाए, उस पर थोड़ा सा विराम लग सकता है।
0: एब्सोल्युटली, यस्तिका भाटिया अगेन जस्ट प्रॉमिसिंग अ लॉट बट डिलीवरिंग नॉट इनफ। 8 of 2 एट वन स्टेज, सो कॉन्सिक्वेंटली शी फेस्ड अनदर 16 बॉल्स एंड शी वाज ओनली एबल टू ऐड 15 रन्स टू दैट, एंड दैट सम्स अप सम ऑफ द इश्यूज दैट शी हैज हैड इन हर करियर इन T20 क्रिकेट। इट ब्रिंग्स इन जेमिमा रॉड्रिग्स दो, and I just think even though she's coming at number 5, she's probably best suited to bat at number 3. If you recall in the 50 over World Cup as well, India played its best cricket when Jemmy Rodrigues came in at number 3.
1: aur uski wajah shayad ye ho sakti hai piche bhejne ki ki is tournament mein unki form utni achhi rahi nahi hai, is baar gend ko drive kiya unhone long off boundary ki taraf, ek run ke liye khata khola जेमिमा रॉड्रिग्स ने और इस एक रन से भारत का स्कोर बढ़ता हुआ 95 रन 3 विकेट के नुकसान पर। सफलता निश्चित रूप से बांग्लादेश की उम्मीदों को बढ़ा रही है, 3 विकेट उन्होंने लिया है इस मैच में। संभावनाएं उनके लिए तभी बनती हैं जब वो लगातार विकेट लेते रहें और आश्चर्यजनक कोई परिणाम उनके पक्ष में। ऐसे गेंद को कट करने का प्रयास किया था ऋचा ने, लेकिन गेंद बल्ले से काफी ज्यादा दूर थी, थोड़ी सी नीची भी रही और पूरी तरह से चकमा खा गई ऋचा घोष। 10 गेंदों में 9 रन बनाकर खेल रही हैं, एक बार फिर से अंपायर से स्टांस ले रही हैं अपना और अब खेलने के लिए तैयार हो रही हैं। लेग स्टंप का स्टांस उन्होंने लिया है, जगह चाहती हैं ऑफ स्टंप के बाहर कि मिले उनको और कोई बड़ा स्ट्रोक वो लगा सकें। उनकी बल्लेबाजी की शैली भी यही है, बड़े स्ट्रोक्स लगाती हैं, तेजी से रन बनाती हैं और अब अगली गेंद का सामना करेंगी रितु मोनी की अगली गेंद, और इस बार इस गेंद को खेल दिया है ऑन साइड में मिड विकेट बाउंड्री की तरफ, 1 रन आसानी से फील्डर पीछे मौजूद हैं। इस 1 रन से स्कोर अब भारत का हो गया है 96 3 विकेट के नुकसान पर, जो भारत ने 3 विकेट गंवाए। दोनों सलामी बल्लेबाज स्मृति मानधना, शेफाली वर्मा और अभी अभी यस्तिका भाटिया का विकेट भी भारत ने गंवाया। एक आसान सा कैच लपका गया था मिड ऑन पर यस्तिका का। अगली गेंद, और इस बार इस गेंद को कट किया है खूबसूरत तरीके से, लेकिन पॉइंट पर मुस्तैद फील्डर डाइव लगाते हुए इस गेंद को रोका। निश्चित रूप से कुछ रन बचाने में कामयाबी मिली है इस बार। 96 अभी भी भारत का स्कोर, 3 विकेट के नुकसान पर। भारतीय खेमा थोड़ा सा निश्चिंत क्योंकि उनको ये तो लग रहा है कि जीत तो उनके पाले में आने वाली है, लेकिन कितनी जल्दी आएगी इसकी भी एक संभावना भारतीय टीम तलाश रही है। अंतिम गेंद इस ओवर की, 49 गेंदों में भारत को चाहिए 41 रन। रितु मोनी की ये गेंद और इसको ऑन साइड में खेला है मिड विकेट पर, जब तक गेंद को फील्ड किया जाए। 1 रन के साथ ओवर की समाप्ति हुई, 12वां ओवर समाप्त हुआ और स्कोर भारत का 97 रन 3 विकेट के नुकसान पर।
0: Yeah, 40 to win from 8 overs, so exactly 5 runs per over required, but quiet overs will perhaps just put a little bit of pressure on the opposition. We saw that happen in the previous over where Ritu Moni gave just 3 runs and picked

0: rivalry between her and the Bangladesh skipper Nigar Sultana Jyoti, and surely Jyoti will be making herself as audible as possible, just indicating to the bowler that she wants her to attack the stumps. This time it's on the stumps, but it's driven down the ground. Harmanpreet retains strike with a single. She moves along to 2, and after 13 overs, India are at 101 for 4.
1: तो 13 ओवर्स के बाद भारत ने बना लिए हैं 101 रन 4 विकेट के नुकसान पर. कप्तान हरमनप्रीत कौर मैदान पर आई हैं जिमिमा रॉड्रिग्स का साथ निभाने के लिए. जिमिमा रॉड्रिग्स ने 5 गेंदों में 4 रन बनाए हैं और हरमनप्रीत ने 3 गेंदों में 2 रन बनाए हैं. मान्यता प्राप्त भारतीय बल्लेबाजों की अंतिम साझेदारी. इसके बाद दीप्ति शर्मा बल्लेबाजी के लिए ज़रूर आएंगी. वो भी बहुत अच्छे रन बनाती हैं, अच्छी बल्लेबाज मानी जाती हैं. बहुत मौकों पर उन्होंने भारत के लिए अहम पारियां खेली हैं. राधा यादव भी भारत की बल्लेबाजी में एक अहम नाम है. उन्होंने भी, आपको याद होगा कि जो पिछला विश्व कप खेला गया था उसमें कई भारत को मैच जिताने वाली पारियां खेली थी. फिलहाल स्ट्राइक पर हरमनप्रीत कौर. 42 गेंदों में 36 रन की आवश्यकता भारत को इस मुकाबले को जीतकर 2 अंक अर्जित करने के लिए. और इस नए ओवर की पहली गेंद जिसको कट किया, लेकिन पॉइंट पर थोड़ी सी मिसफील्डिंग के बावजूद 1 रन जरूर लेने में कामयाब दोनों बल्लेबाज. और इस 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 102 रन 4 विकेट के नुकसान पर 14वें ओवर की शुरुआत हुई है. बांग्लादेश को अपना अंतिम मैच लॉर्ड्स में खेलना है दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 28 जून को, और उसी दिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत को अपना मुकाबला खेलना है. अगली गेंद, इस बार इस गेंद को कलाइयों के सहारे मोड़ दिया है ऑन साइड में. जब तक मिड विकेट की फील्डर आ गया है, गेंद को उठाकर वापस करें. 1 रन और जुड़ता हुआ भारत के खाते में. बढ़ता हुआ स्कोर 103 रन 4 विकेट के नुकसान पर. भारत ने पिछला विकेट 98 के स्कोर पर ऋचा घोष का गंवाया था, और उसके बाद से यह साझेदारी भारतीय पारी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है. इस बार स्वीप करने का प्रयास, बल्ले पर पूरी तरह से गेंद आई नहीं, जड़ पर टकराई. 1 रन आउट का मौका, लेकिन मौका हाथ से जाता हुआ बांग्लादेश के दोनों बल्लेबाज एक ही छोर पर खड़ी हो गई थी, और वापसी की कोई संभावना दूर दूर तक दिख नहीं रही थी. थ्रो आया और थ्रो पकड़ा नहीं जा सका. गेंदबाज ने उस थ्रो को पकड़ा नहीं, और फिर वापस जेमिमा लौट आई अपनी क्रीज में. ये किस्मत यहां पर जेमिमा के साथ.
0: कॉमेडी ऑफ एरर्स, कॉमेडी ऑफ एरर्स एवरीवेयर. फर्स्ट हरमनप्रीत लुकिंग फॉर द स्वीप. जेमिमा वाज वेरी क्विक टू रिस्पॉन्ड, ऑलमोस्ट रीच द अदर एंड, देन हैड टू पुट द स्किड्स ऑन एंड कम ऑल द वे बैक. एंड इट वाज अ पुअर थ्रो टू बी फेयर, एंड नाहिदा जस्ट कुडंट गेट इनफ कंट्रोल ओवर दैट. हैड इट बीन ऑन द स्टंप्स, दैट वुड हैव बीन अ फिफ्थ विकेट फॉर बांग्लादेश.
1: अगली गेंद, इस ओवर की चौथी गेंद, और इस बार इस गेंद को सीधे बल्ले से सामने खेला लॉन्ग ऑन की तरफ. 1 रन के लिए कप्तान हरमनप्रीत ने. यह विकेट अगर भारत ने रन आउट के रूप में गवाया होता तो निश्चित रूप से बांग्लादेश की वापसी जोरदार तरीके से इस मुकाबले में हो सकती थी, लेकिन ये एक आसान सा मौका बांग्लादेश के हाथों से फिसला है. भारत के लिए राहत की बात कि अभी भी जेमिमा मैदान पर है और स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हो रही है. इस बार फुल टॉस गेंद, इसको खेलना चाहती थी ऑफ साइड में, हालांकि चढ़ में गेंद थी, बिल्कुल ब्लॉक होल में. यॉर्कर गेंद एक तरह से हो गई थी जेमिमा के लिए. किसी तरह से अपने विकेटों से दूर ढकेला इस गेंद को. रन कोई नहीं मिलेगा. 104 अभी भी स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर. रिक्वायर्ड रन रेट 5.35 का. अगली गेंद, इस बार रिवर्स स्वीप करने का प्रयास. गेंद की लाइन को चुकी है, एक अपील हुई है विकेट कीपर की तरफ से, और क्या ये तीसरे अंपायर को फैसला रेफर किया जाएगा, इस बात का इंतजार. हालांकि जेमिमा के शारीरिक भाषा से ऐसा लग रहा है कि वो बिल्कुल आश्वस्त हैं कि क्रीज में अपने मौजूद थे.
0: Yes, but another tidy over, Dharmendra. So exactly what we were discussing about 3-4 overs ago, that you have a few tidy overs and you suddenly push that required run rate up to the vicinity of 6. And now from 6 overs, India need 33. And you have two players who are high quality, high pedigree, but just short on runs in this World Cup campaign. And it's being reflected in the way that they're batting. Harmanpreet Kaur, her batting ability or her batting form has been a topic of discussion. 36, 12 and 24 thus far in this World Cup. Jemima Rodrigues 1, 19 and 12. and they are batting like they are under pressure. That run out chance also created because they

0: Being that gamble for Sanjeeda Akhtar later in this innings. Sanjeeda comes in once again. Jemima walks across the stumps, accesses it outside off stump, and will pick up four more, making this a massive over.
1: Ye laga, abha ka choka.
0: 15 runs of this over. India finish it at 119 for 4, and now the finish line is definitely inside, Dharmendra.
2: Ji haan, ab to bilkul aasan sa dikh raha hai lakshya Bharat ke liye, khas taur par pichle over mein jo 15 run aaye, isse भारतीय टीम बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ चली है और जेमिमा रॉड्रिग्स जिनको फॉर्म की तलाश थी उन्होंने एक तरह से वापसी की, आत्मविश्वास को अपने वापस संजोया है और भारत का स्कोर पहुंचा दिया 119 रन चार विकेट के नुकसान पर। अब 30 गेंदों में भारत को चाहिए 18 रन, अभी भी 6 विकेट सुरक्षित हैं। रिक्वायर्ड रन रेट 3.60 का और स्ट्राइक पर अब कप्तान हरमनप्रीत कौर, रितु मोनी गेंदबाज के तौर पर आई है एक बार फिर से आक्रमण के लिए। बांग्लादेश की टीम चाह रही है कि साझेदारी को तोड़कर थोड़ा सा वापस लौटा जा सके इस मैच में। उम्मीदें लगभग समाप्त होती हुई सी बांग्लादेश के लिए। ये पहली गेंद और इसको एक रन के लिए खेल दिया, फिर से एक बार विकेटों के बीच में खराब दौड़ दोनों खिलाड़ियों के बीच में, आपस में टकराते टकराते दोनों बची हैं, निगाह बिल्कुल एक दूसरे पर नहीं गेंद पर दोनों की निगाह, और वहां पर टक्कर होते होते बची है। ये तीसरा मौका है जब रन लेने के दौरान दोनों के बीच तालमेल की काफी कमी दिखाई है देवायन।
0: एब्सोल्युटली, एंड टू सीनियर प्लेयर्स एंड हरमनप्रीत इन पर्टिकुलर जस्ट लुकिंग सो ऑफ कलर, शी इज गोइंग फॉर रिस्की सिंगल्स, शी इज रनिंग अ लिटिल ऑल ओवर द प्लेस, बट इट्स एन इंपॉर्टेंट इनिंग्स फॉर हर। इफ शी स्टेज नॉट आउट देन इट विल डू हर कॉन्फिडेंस अ लॉट ऑफ गुड।
2: अगली गेंद और इस बार सीधे बल्ले से सामने की तरफ, गेंदबाज के सिर के ऊपर से उठाकर खेला है गेंद को, मिसफील्डिंग चालन।
1: ये लगा आभा का चौका,
2: सीधे बल्ले से खेला था इस मौके पर जेमिमा ने, और जेमिमा ने यह ठान लिया है कि अब कुछ भी हो बड़े स्ट्रोक्स लगाने ही है, जल्दी से जल्दी मैच को समाप्त करना है। इस बार लगभग ओवर पिच गेंद थी, गेंदबाज के सिर के ऊपर से उठाकर खेला, रोका जा सकता था इस गेंद को लेकिन थोड़ी सी गेंद घूम गई पड़ने के बाद और गेंदबाज काफी निराश थी। इस चौके के साथ भारत का स्कोर बढ़ता हुआ 128 चार विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद इस बार फिर से उठाकर खेलने का प्रयास और इस गेंद को फिर से चार रन के लिए खेला है।
1: ये लगा आभा का चौका,
2: फिर से सीधे बल्ले से खेला गया स्ट्रोक सामने की तरफ लगभग उसी दिशा में और ये चौका एक और आता हुआ जेमिमा के बल्ले से। स्कोर भारत का बढ़ता हुआ 128 चार विकेट के नुकसान पर। अब सिर्फ 9 रन चाहिए, 27 गेंदें बची हुई हैं। महंगा ओवर एक और चलता हुआ इस समय रितु मोनी का। रितु मोनी को एक सफलता जरूर मिली है लेकिन इस ओवर में अभी तक दो शानदार चौके जेमिमा ने जड़ने में कामयाबी हासिल की है दबाव गेंदबाज के ऊपर। कुल मिलाकर इस ओवर में अभी तक 9 रन आ चुके हैं और अब अगली गेंद खेलने के लिए तैयार जेमिमा। बहुत लाजवाब बल्लेबाजी इस समय जेमिमा की तरफ से। दोनों के बीच अभी तक 19 गेंदों में 30 रन की साझेदारी, बहुत तेज तर्रार साझेदारी।
0: एब्सोल्युटली, एंड 24 ऑफ द लास्ट 9 बॉल्स, बट दैट फर्स्ट रन ऑफ दैट 9 बॉल्स कुड हैव रिजल्टेड इन अ रन आउट।
2: अगली गेंद को इस बार उठाकर खेलने का प्रयास, हवा में गेंद और ये कैच लपका गया। जेमिमा का विकेट आखिरकार भारत ने गंवाया है। खेलना चाहती थी ऑन साइड में, बल्ले का बाहरी किनारा लिया गेंद ने, पॉइंट पर गई गेंद और एक आसान सा कैच। इस तरह से जेमिमा की एक तेज तर्रार पारी का समापन हुआ है। जेमिमा रॉड्रिग्स कुल मिलाकर 15 गेंदों में 26 रन बनाकर आउट हुई हैं, 3 चौके और 1 छक्का उनकी इस पारी में। लग रहा था कि उन्होंने जो निराशा का दौर था उससे पार पा लिया है लेकिन उनकी कोशिश थी कि जल्दी से जल्दी मैच जीत कर भारत को नेट रन रेट में और बेहतर स्थिति में लाया जा सके, उसी कोशिश में उन्होंने अपना विकेट गंवाया है। हालांकि भारत के सामने अभी भी कोई खास परेशानी नहीं, 26 गेंदों में अब सिर्फ 9 रन चाहिए, 128 पर भारत ने पांचवां विकेट गंवाया है।
0: एब्सोल्युटली, अनसेल्फिश बैटिंग फ्रॉम जेमिमा, गोइंग फॉर द बिग हिट एंड इट लुक्ड इनिशियली दैट शी हैड एब्सोल्युटली मिडल्ड इट बट वेंट ऑफ द लीडिंग एज एंड वाज ग्लीफुली एक्सेप्टेड एट बैकवर्ड पॉइंट इनसाइड द सर्कल बाय मारूफा अख्तर। And that brings the all-rounder Deepti. Didn't quite get that 356th international wicket today with the ball. It was more than handy. 4 overs, none for 23 and now has a chance to put the finishing touches. But what Jemima, especially in that last short burst across the last two overs, has done has made this a much, much more favorable equation. Had Harmanpreet's wicket fallen when she went for

0: कामयाब रही है.
1: It was a rapid start, specially one provided by Shefali Verma. The first wicket partnership producing 31. Smriti Mandana was first to go. She was caught by Rabia Khan of the bowling of Marufa Akhtar for 8. Second to go, Shefali Verma, after completing 53 from 34 balls. She was stumped by Jyoti of the bowling of Nahida Akhtar, who was introduced as the fifth bowler by skipper Nigar Sultana Jyoti. Yastika Bhatia was caught by Rabea of the bowling of Ritu Moni for 23. That was 94 for 3. Richa Ghosh was LBW to Rabea Khan for 10. And the score then was 98 for 4. And Jemima Rodrigues was the fifth out after an explosive little innings, 26 from 15 balls. And of course, Harmanpreet Kaur and Deepti Sharma, the two not out batters at the end. So, two wickets for Ritu and one wicket for Nahida, one wicket for Marufa Akhtar, and one wicket for the leg spinner Rabia Khan. India win this match by 5 wickets and move along to 6 points in this World T20 as well. And now we'll take you through to the post match show. Kaun Banega Player of the Match?
2: महीने का आखिरी रविवार जब बजते हैं सुबह के 11, एक साथ होता है पूरा देश सुनने मन की बात.
3: मेरे प्यारे देशवासियों नमस्कार, मन की बात में आप सबका स्वागत है.
2: यह होती है मैं नहीं हम की बात, सामूहिकता की शक्ति के साथ मोदी जी के साथ देश का संवाद और जन जन से सीधा जुड़ाव. साथ आते हैं करोड़ों दिल और होती है देश के छोटे कस्बों गांव में उभरते इनोवेटिव आइडियाज की बात. अपनी सेवा से समाज बदलने में जुटे साइलेंट हीरोज की बात. भाषा और परंपरा, विज्ञान और विरासत की बात. विदेश में भारतीय संस्कृति की बात. अन्नदाता की मेहनत, नारी शक्ति की लगन, खेल का जज्बा, युवाओं की आकांक्षा, भारतीय श्वान से लेकर पेड़ और प्रकृति की बात, योग और आयुर्वेद से आरोग्य की बात, स्वच्छता से लेकर हर घर तिरंगा की बात. आत्मनिर्भर बनते, विकसित होते विश्व बंधु भारत की बात, मन की बात, जिसमें है एक भाव, नेशन फर्स्ट, जहां हर कहानी बनती है किसी और के लिए हौसला. बात देश की, सबकी मन की.
4: मेरे लिए मन की बात ये एक कार्यक्रम नहीं है, मेरे लिए एक आस्था, पूजा, व्रत है.
2: तभी तो रहता है इंतजार आए महीने का आखिरी रविवार और देश कहे चलो सुने मन की बात. आकाशवाणी और
5: এতক্ষণ দিল্লি কেন্দ্র থেকে আইসিসি ওমেন টি-20 ক্রিকেট বিশ্বকাপ প্রতিযোগিতার ভারত বনাম বাংলাদেশের মধ্যে খেলার ধারা বিবরণী রিলে করে শোনানো হল. আকাশবাণী বিলনিয়া এখন শুনবেন বাংলা আধুনিক গান শিল্পী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়.